FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी बिलासपुर है। आज रविवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 12 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 होने वाले हैं। हमारा आज का प्रसारण अब प्रारंभ होता है।

FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी बिलासपुर है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के समक्ष अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे।

0: उत्तर प्रदेश सरकार एक विशाल अभियान में आज 35 करोड़ पौधे लगाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किस्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। इसके अतिरिक्त 83 करोड़ रुपए से अधिक की 16 नई लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2026 के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों से संबंधित कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में FSSAI ने कहा है कि स्विगी को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है और ऐसा न करने पर उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। उपभोक्ता शिकायतों में स्विगी इंस्टामार्ट पर उत्पादों के निर्धारित अवधि समाप्त होने, खराब, सड़े, दूषित और अन्य प्रकार के असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति का आरोप लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोप की आलोचना की है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का यह बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट कल वियतनाम के फुकवोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों से 10 तमिलनाडु से और 3 आंध्र प्रदेश से जबकि 2 केरल से थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जलडमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी सेना ने कहा है कि ये हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। और खेलों में इंग्लैंड ने कल रात साउथैम्प्टन में 5वें और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से जीत ली है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा के मियामी स्टेडियम में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया। महिला डबल्स के फाइनल में आज गुओ हान्यो और लुइसा स्टेफेनी की जोड़ी का मुकाबला क्रिस्टीना माल्डिनोविच और ग्रेबेलिया डाब्रोवस्की की जोड़ी से होगा। यह मैच शाम 5:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचार अभी हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे थे। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बिलासपुर है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आइए सबसे पहले करें देश वंदना समूह स्वर में।

मीराबाई रचित भजन आपने सुना, आवाज़ एम एस सुब्बलक्ष्मी की थी। अब आइए सुनते हैं कबीर भजन वाणी जयराम की आवाज़ में।

0: दास पवन शर्मा के गाए इस भक्ति रचना के साथ ही आज की आराधना अब हम यहीं संपन्न करते हैं। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 6:30 हुए हैं। अब लीजिए खेती की बात में सुनिए फसलवार बायो फर्टिलाइजर के उपयोग। इस विषय पर जानकारी वाचन स्वर चित्रलेखा तिवारी का है।
1: किसान संगी हुआ राम राम जय जोहार। संगी हुआ खेती के बात माँ आज विषय लेके आए हैं फसलवार बायो फर्टिलाइजर के उपयोग। जैसे कि सब जाना था आज के समय माँ खेती के लागत तो बढ़ा जावा थे, फिर जमीन के उर्वरता धीरे धीरे घटा जावा थे।

0: थे। अइसन मा बायो फर्टिलाइजर मतलब जीवाणु खाद किसान मन बर एक बढ़िया विकल्प आय। ए लागत कम करथे, जमीन के सेहत सुधरथे और फसल के उपज बढ़ाए म तको मदद करथे। त चलो जानिन के अलग अलग फसल म कौन बायो फर्टिलाइजर के उपयोग करे जाना चाहिए। त किसान भाई बहनी मन सबले पहली जान लेवा के बायो फर्टिलाइजर ह जिंदा लाभदायक सूक्ष्म जीव होते। ए मन माटी म जाके पौधा ला पोषक तत्व उपलब्ध कराते। ये रासायनिक खातू के पूरा विकल्प नो है, फिर ओकर जरूरत ला जरूर कम करते। अब बात करें फसलवार उपयोग के। धान है जैसे कि छत्तीसगढ़ के मुख्य फसल है, तो धान बर एजोस्पिरिलम और PSP यानी फास्फेट घुलनशील जीवाणु के उपयोग बहुत लाभदायक माने जाते। धान के बीज ला बुआई के पहली बायो फर्टिलाइजर ले उपचार कर लेवा और रोपा लगावत घानी तको जड़ ला उपचार करे जा सकत है। एखर ले जड़ मजबूत होते और पौधा हरियर रहते, उत्पादन तको बाढ़ते। गहूँ की बात करबो तो गहूँ में एजोटोबैक्टर और PSP के उपयोग करना चाहिए। बीज उपचार करके बुआई करे ले नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ते और पौधा के बढ़वार तको अच्छा होते और दाना भराव में फायदा मिलते। चना राहेर मूंग उरीद और दूसर दलहन फसल के बात करबो तो दलहनी फसल में राइजोबियम के उपयोग सबले जरूरी है। राइजोबियम पौधा के जड़ में गांठ बना के हवा ले नाइट्रोजन पकड़ते और पौधा ला उपलब्ध करवाते। एकर ले यूरिया के जरूरत कम होते और उपज में बढ़ोतरी तको होते। ध्यान रखो संगवारी हुआ, हर दलहन फसल पर अलग अलग राइजोबियम कल्चर होते। सही फसल पर सही कल्चर के उपयोग करना चाहिए। अब सोयाबीन के बात करबो तो सोयाबीन में विशेष प्रकार के राइजोबियम और PSB के उपयोग लाभदायक होते। बीज उपचार करके बुआई करे ले जड़ में ज्यादा गांठ बनते और पौधा मजबूत होते। मक्का ज्वार और बाजरा ए फसल पर एजोटोबैक्टर या एजोस्पिरिलम और PSB के उपयोग करे जा सकत है। ये जीवाणु पौधा के बढ़वार बढ़ाते और पोषक तत्व के उपलब्धता में सुधार करते। अब गन्ना बोने वाला हमार किसान भाई मन ला बता दी कि गन्ना में एसिटोबैक्टर और PSB के उपयोग अच्छा परिणाम देवा थे और सेट उपचार या जमीन में उपयोग करे ले गन्ना के बढ़वार और उत्पादन में भी लाभ मिला थे। साग भाजी लगैया हमार किसान संगवारी मतलब बता दी, पताल मिर्चा भाटा गोभी रमकेरिया और दूसर साग भाजी के फसल में एजोटोबैक्टर PSB और पोटास घुलनशील जीवाणु के उपयोग करे जा सकत है। रोपा लगाए के पहली ओकर जड़ ला उपचार करके पौधा लगावा। ओकर से का होते, पौधा ह जड़ में जल्दी जमते और बढ़वार भी बढ़िया होते। अब फलदार पौधा जोन लगाए हैं जैसे कि आमा बिही लिमाऊ पपीता या दूसर फलदार पौधा, ओमा बायो फर्टिलाइजर ला गोबर खातु के संग मिला के पौधा के चारों कोती डालना लाभदायक होते। एखर ले जड़ विकास अच्छा होते और फल उत्पादन में भी सुधार होते। तो बायो फर्टिलाइजर के उपयोग करे के तरीका बता दी। पहली तरीका बीज उपचार, 1 किलो बीज पर जरूरत अनुसार बायो फर्टिलाइजर बीज ला अच्छा से लपेट देवा और छांव में सुखा के फिर बुआई करो। दूसरा तरीका है जड़ उपचार, सब्जी और धान के रोपा के जड़ ला बायो फर्टिलाइजर घोले में 20 से 30 मिनट डुबो के रोपना चाहिए। तीसरा तरीका है माटी में उपयोग, तो बायो फर्टिलाइजर ला सरे गोबर खातू या कंपोस्ट संग मिला के खेत में समान रूप से डाला। उपयोग करत बखत सावधानी के बात करबो तो बायो फर्टिलाइजर ला घाम में बिल्कुल मत रखो, हमेशा ठंडा और छांव वाला जगह में रखाओ। एक्सपायरी डेट जरूर देखाओ डारे के पहली और रासायनिक दवाई संग सीधा मिला के उपयोग बिल्कुल मत कराओ। अब बीज उपचार करे के बाद बीज ला छांव में सुखावाओ और भरोसेमंद संस्था ले बने बायो फर्टिलाइजर खरीदाओ। ये तो हो गए आप ला का सावधानी रखना है। बायो फर्टिलाइजर के फायदा बता दी, खेती के लागत कम होते, जमीन की उर्वरता बढ़ते, लाभदायक सूक्ष्म जीव के संख्या बढ़ते और रासायनिक खातु के जरूरत कम होते। अब पर्यावरण भी सुरक्षित रहते, लंबा समय तक जमीन उपजाऊ बने रहते। एखर से तीर अब समय आ गए रासायनिक खातु के संग संग बायो फर्टिलाइजर के भी घलो सही उपयोग करे जाए। खेती के बात में आज अतके संगवारी हुआ, नवा विषय के संग हम फिर कल उपस्थित होबो। तब तक के लिए राम राम, जय जोहार।
1: खेती की बात में अभी आपने सुनी जानकारी। फसल वार बायो फर्टिलाइजर।

सैनिटाइजर के उपयोग इस विषय पर वाचन स्वर चित्रलेखा तिवारी का था। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। अब प्रस्तुत है रामचरित मानस गान। मुख्य गायन स्वर ए हरिहरन का है और संगीत संयोजन है सतीश भाटिया का।

बड़ी चतुराई से मंत्रानी रानी कैकेयी के मन में कौशल्या तथा राम के प्रति ऐसे विष का बीज डाल दिया जिसके प्रभाव में सूर्यकुल के सुख समृद्धि हर्ष और उल्लास सबको एक बार की सुखा डालने की क्षमता थी। सौत की ईर्ष्या की सैकड़ों उल्टी सीधी मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर मंथरा ने कैके को पूरी तरह अपने वश में कर लिया। कहती है, हे रानी, अपना मित्र या शत्रु तो पशु भी पहचान लेते हैं, परंतु तुम्हें तो अपने हित अहित की पहचान नहीं है। एक पखवाड़े से राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही हैं और तुम्हें इसकी सूचना आज मुझसे मिली है। हे स्वामिनी, अब तुम्हारी स्थिति वही होगी जो दूध में पड़ी मक्खी की होती है। यदि पुत्र सहित राजा की चाकरी करोगी तब तो यहां रह पाओगी, अन्यथा तुम्हें भी दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया जाएगा। अपने अनिश्चित भविष्य की आशंका से रानी कैकेयी कांप जाती है। अब उन्हें ये भान होता है कि पिछले कई दिनों से उनकी दाहिनी आंख भड़कती रही है और रातों को बुरे बुरे सपने आते रहे हैं। वो मन में ठान लेती हैं कि मायके जाकर शेष जीवन बिता देंगी, किंतु जीते जी सौत की चाकरी नहीं करेंगी।

0: हम जीवन के नाम से पुकारते हैं, क्या कोई उद्देश्य है? अथवा क्या मानव जीवन प्रवाह पतित तिनके की नाई है, जो पानी के थपेड़े खाता हुआ निरुद्देश्य इधर उधर अटकता भटकता एक दिन काल सागर में जाकर मिल जाता है? ये मानव मन में उठने वाले बुनियादी प्रश्न हैं, जिनका उत्तर मनुष्य चाहता है। यदि जीवन समझ में आए तो जीवन का उद्देश्य भी समझ में आएगा, और जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति ही जीवन की सार्थकता होगी। पियरे टेलार डे शार्डा नामक फ्रेंच विद्वान ने अपने द फिनोमिनॉन ऑफ मैन नामक ग्रंथ में मनुष्य के जीवन को समझने के लिए पशु और मनुष्य के अंतर को समझना चाहा है। वे वैज्ञानिक थे, इसलिए वैज्ञानिक प्रणाली से वे पशु और मनुष्य के अंतर को जानना चाहते थे। प्रयोगों से उन्होंने देखा कि जहां तक चमड़ी, रक्त, मैदा, हड्डी, मांस आदि का प्रश्न है, पशु और मनुष्य में कोई भेद नहीं है। पर उन्हें एक अंतर यह दिखा कि मनुष्य के भेजे में कुछ जीवाणु कोष ऐसे हैं जो सक्रिय हैं, जबकि पशु के भेजे में वे जीवाणु कोष सक्रिय नहीं हैं। जानने की प्रक्रिया मनुष्य और पशु दोनों में समान है, पर मनुष्य के भेजे में जीवाणु कोष की सक्रियता के कारण मनुष्य और पशु में जो अंतर पड़ता है, उसे उन्होंने यूं व्यक्त किया है, एन एनिमल नोज एंड ए मैन नोज, बट एन एनिमल डज नॉट नो दैट ही नोज व्हाइल ए मैन नोज दैट ही नोज। अर्थात पशु भी जानता है और मनुष्य भी जानता है, पर पशु यह नहीं जानता कि वह जानता है, जबकि मनुष्य यह जानता है कि वह जानता है। तात्पर्य कि पशु को अपने ज्ञान का बोध नहीं होता, जबकि मनुष्य को अपने ज्ञान का बोध होता है। मनुष्य जानता है कि वह जान रहा है, इसलिए मनुष्य अपनी चित्त वृत्तियों को सुशृंखल बना ले सकता है और उनकी सार्थकता के संबंध में प्रश्न कर सकता है। शार्ना यह विश्लेषण करके अंत में पशु और मनुष्य का अंतर स्थापित करते हुए कहते हैं कि पशु कभी भी अपने आप से यह नहीं पूछता कि मेरे जीवन का क्या प्रयोजन है, जबकि मनुष्य कभी न कभी अपने आप से यह अवश्य पूछता है कि मेरे जीवन का क्या प्रयोजन है। पशु और मनुष्य के इस अंतर को एक संस्कृत सुभाषित में प्रकारांतर से रखते हुए कहा गया है, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम एको ही तेषां धर्मो विशेषः तेनैव हीनाः पशुभिः समानाः। अर्थात जहां तक भोजन, निद्रा, भय और प्रजनन की वृत्तियों का प्रश्न है, ये जैसे मनुष्य में है वैसे ही पशु में भी। मनुष्य में एक धर्म की वृत्ति अधिक होती है। मनुष्य यदि उससे हीन हो तो यथार्थतः वह पशु के ही समान है। इस विवेचन से स्पष्ट है कि मनुष्य जीवन की विशेषता धर्म में है। अब प्रश्न उठता है कि यह धर्म क्या है? स्वामी विवेकानंद की धर्म संबंधी व्याख्या मननीय है। वे कहते हैं, रिलीजियन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिविनिटी ऑलरेडी इन मैन। अर्थात मनुष्य में पहले से विद्यमान दिव्यत्व की अभिव्यक्ति को धर्म कहते हैं। स्वामी जी का एक दूसरा उद्धरण भी इस संदर्भ में विचारणीय है, जहां उन्होंने कहा है, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन बाय कंट्रोलिंग नेचर एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अर्थात प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है, बाह्य एवं अंतः प्रकृति को वशीभूत करके आत्मा के इस ब्रह्म भाव को व्यक्त करना ही जीवन का चरम लक्ष्य है। अब हम समझ पाएंगे कि जीवन को सार्थक कैसे किया जाए। हम जितनी मात्रा में अपने इस अंतस्थ दिव्यत्व या ब्रह्म भाव को अभिव्यक्त करने में समर्थ होंगे, हमारा जीवन उतनी ही मात्रा में सार्थक होगा। इसके लिए सबसे सक्षम उपाय है दूसरों का दुख दर्द अनुभव कर दूसरों के लिए जीने की चेष्टा करना। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, जो अपने लिए जीता है उसमें कोई विशेषता नहीं, क्योंकि पशु भी तो अपने लिए जीते हैं। वास्तव में वे ही जीवित हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। अतएव निष्कर्ष यह निकला कि जो जितनी मात्रा में दूसरों के लिए जीता है, उसका जीवन उतनी ही मात्रा में सार्थक होता है।
1: जीवन की सार्थकता। अभी आप सुन रहे थे इस विषय पर चिंतन।

रामचरितमानस गान अभी आपने सुना। मुख्य गायन स्वर ए हरिहरन और उत्तरा केलकर के थे और संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। अब लीजिए सुनिए चिंतन। विषय है जीवन की सार्थकता। आलेख और वाचन स्वामी आत्मानंद जी का।

बहुधा हमारे मन में प्रश्न उठता है कि यह जीवन क्या है। मनुष्य सोचता है कि जिस दिन उसने जन्म लिया और जिस दिन मृत्यु के कराल गाल में समा जाएगा, इस बीच की अवधि का जिसे

आलेख और वाचन स्वामी आत्मानंद जी का था। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बिलासपुर है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

आज सुबह ये कार्यक्रम हम प्रस्तुत करेंगे सुबह 7:05 पर, सदाबहार नगमे सुबह 7:40 पर, नए तराने सुबह 10:30 पर और माटी के स्वर कार्यक्रम आप सुनिएगा सुबह 8:30 पर। आओ बच्चों कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 10:00। इसमें सामयिक चर्चा का विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस और प्रायोजित कार्यक्रम में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पौड़ी मोहनदा रतनपुर के बच्चों की प्रस्तुति आप सुनेंगे। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे सुबह 9:00 से 9:55 तक, फिर दिन के 11:00 से शाम के 5:00 तक और फिर रात के 9:15 से रात के 11:00 तक। ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम का समय होगा शाम 5:35 और शाम के 6:20। चित्रपट संगीत शाम 5:05 पर, रजनीगंधा रात 8:15 पर और सुगम संगीत सुनिएगा रात 8:00। कलाकार होंगे हरिहरन। शाम 7:20 पर ग्राम सभा में बेरा के गोठ का विषय होगा जल संग्रहण, भविष्य के आधार और साथ ही सुनिएगा फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आप मन के गीत। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का समय होगा शाम 5:00। आज सुबह 7:30 पर सेहत की बात डॉक्टर के साथ में सुनिएगा। वर्तमान समय में सर्पदंश की घटनाएं, कारण, बचाव और सुरक्षा, इस विषय पर जन स्वास्थ्य सहयोग केंद्र गनियारी के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर गजानन से मोहम्मद रफीक की बातचीत, रिकॉर्डिंग और संपादन अद्वैत भारत का। शाम 6:05 पर जिले की चिट्ठी और शाम 6:30 पर कानून की बात आकाशवाणी रायपुर से हम रिले करेंगे। कानून की बात में आज जिला न्यायालय दुर्ग के अधिवक्ता श्री गौरव सतपथी जानकारी देंगे। विषय होगा स्थायी लोक अदालत के प्रभावी संचालन तथा उनकी सुलह करने व निर्णय की भूमिका। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। FM बैंड 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे।

0: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
1: प्रधानमंत्री मोदी सस्नेह स्वागताय न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमन्त्रिणं क्रिस्टोफर लक्सन इत्येतं प्रति कृतज्ञतां प्रकटितवान्। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः उक्तवान् यत् भारतं पारंपरिक रक्षा सामर्थ्यस्य उन्नत प्रौद्योगिकीनां च सुदृढीकरणेन दृढं आत्मनिर्भरं भविष्यस्य आह्वानेभ्यश्च अनुकूलं रक्षाबलं निर्माति। असौ एतत् विशाखापत्तनम नगरे भारतीय नौसेनायाः पूर्वी नौसेनादले प्रोजेक्ट 17A इत्येतस्य अन्तर्गते स्वदेशे निर्मितस्य षष्ठयुद्धपोतस्य INS महेन्द्रगिरिः इत्येतस्य समावेशन समारोहं सम्बोधयन् अवदत्। रक्षामंत्री अवदत् यत् INS महेन्द्रगिरिः इत्येतस्य नौसेनायां सम्मेलनम् भारतस्य सामुद्रिक सामर्थ्यस्य स्वदेशी रक्षा क्षमतायाश्च सुदृढीकरण दिशि अन्यत् महत्वपूर्णं सोपानमस्ति। पश्चिम बंगाल प्रशासनेन राज्याय UCC इति समान नागरिक संहितायाः प्रारूप विधेयकस्य परीक्षार्थं नव सदस्यात्मिका समितिः निर्मिता। अस्मिन् विषये अधिसूचना पूर्वमेव प्रकाशिता अस्ति। सेवा निवृत्त न्यायमूर्तिः रंजना प्रकाश देसाई समितेः अध्यक्षत्वेन नियुक्ता। मेघालयस्य पूर्व राज्यपालः तथागत रॉयः अपि समितेः सदस्येषु अन्यतमः अस्ति। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरणेन खाद्य सुरक्षा मानकाधिनियमस्य 2000 इत्यस्य उल्लंघन सम्बद्धानां बहूनां उपभोक्तृ परिवादानां अनन्तरं स्विगी इंस्टामार्ट इत्यस्मै नव अधिसूचनाः प्रेषिताः। फीफा विश्व चषक प्रतिस्पर्धायां अद्य प्रातः फ्लोरिडा इत्यत्र मियामी क्रीडा प्रांगणे इंग्लैंड देशेन नॉर्वे देशं 2-1 इत्यंकांतरालेन पराजित्य उपांत्य चक्रे प्रविष्टम्। वियतनाम देशस्य प्रधानमंत्री ले मिन हुन इत्येषः फूक्वक द्वीपस्य समीपे जाता स्पीड बोट इत्येतस्याः दुर्घटनायाः अन्वेषणाय आदेशं प्रदत्तवान्। अस्याम् दुर्घटनायां 15 भारतीय पर्यटकाः निधनमुपगताः इति वार्ताः।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के समक्ष अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार एक व्यापक अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधरोपण महायज्ञ का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। उधर गृहमंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। गृहमंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधरोपण अभियान की शुरुआत भी करेंगे। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं

0: मासिक किश्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रूपये से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री लगभग 239 करोड़ रुपए की 40 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। इसके अलावा 83 करोड़ रुपए से अधिक की 16 नई लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों से संबंधित कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। उपभोक्ता शिकायतों में स्विगी इंस्टामार्ट पर उत्पादों की निर्धारित अवधि समाप्त होने, खराब, सड़े, दूषित और अन्य प्रकार के असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति का आरोप लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोप की आलोचना की है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का ये बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फुकोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। ये हादसा उस समय हुआ जब 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फुकोक द्वीप के पास रट नगोआई टापू के निकट अचानक ऊंची लहरों की चपेट में आकर पलट गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जलडमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमरीका के कंसास में क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अर्जेंटीना मुकाबले में 1-0 से आगे है। एक अन्य क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। उधर लंदन में कल रात विम्बलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचार अभी हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 7:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आज सुबह।

0: आज सुबह
1: कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन।

मित्रों नमस्कार। अब आ गई है हवाओं में ठंडक और मौसम हो रहा है खुशगवार। नई आशाएं लेकर नई ऋतु आ गई है। मित्रों आशाएं

कितना सकारात्मक शब्द है ये। यूं तो ये हर दिन हमारे जीवन से आंख में चोली खेलता है, लेकिन सोचिए एक पूरा दिन इसके नाम हो जाए तो। जी हाँ, आज यानी 12 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा औपचारिक रूप से नामित किया गया ताकि संघर्ष, विभाजन और वैश्विक चुनौतियों के बीच आशा की परिवर्तनकारी शक्ति को बढ़ावा दिया जा सके। इसके मुख्य उद्देश्यों में यह भी है कि ऐसे वातावरण का निर्माण हो सके कि व्यक्तियों, समुदायों और राष्ट्रों में आशा पनप सके और एकजुटता भी बनी रहे। आशा को बढ़ावा देने से मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा, जलवायु इन जैसे विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। पूरी दुनिया भर के लोगों में सामाजिक जागरूकता अभियान, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चर्चाओं और सेमिनारों और दयालु प्रवृत्ति और सहभागिता के विकास के लिए कार्यक्रम किए जाते हैं आज के दिन, ताकि आशा के माध्यम से विश्वास जगे और जीवन आनंदित रहे।

0: मित्रों, आज एक और दिन मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2023 में की गई, जिसका उद्देश्य था रेत और धूल भरी आंधी का मुकाबला करना, यानी तूफानों का प्रभाव मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले खतरनाक प्रभावों के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना। धूल भरी आंधियां जब चलती हैं तो हवा में उड़ने वाले सूक्ष्म धूल कण सांस संबंधी बीमारियां पैदा करते हैं। पर्यावरण, कृषि और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए हम सभी जानते हैं कि पौधारोपण अति आवश्यक है। शहरी हो या ग्रामीण क्षेत्र, सभी हरे भरे हों, साथ ही वनों की रक्षा भी अति आवश्यक है, क्योंकि पेड़ों के कारण स्वच्छ वातावरण के साथ साथ भूमि के कटाव को रोकने में मदद मिलती है, और जब साफ हवा और अनुकूल वातावरण मिले तो जीव जंतुओं का आवास भी सुरक्षित रहता है। हम सभी की यही कोशिश हो कि जल संरक्षण और पौध संरक्षण हमारी प्राथमिकता रहे, साथ ही पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम भी संतुलित रहे। मित्रों, इन दिनों बारिश का मौसम है, सांप अक्सर हमें नजर आ जाते हैं और हम डर भी जाते हैं, लेकिन ये भी हमें याद रखना होगा कि सांप और पर्यावरण का गहरा और महत्वपूर्ण संबंध है। पारिस्थितिक तंत्र के प्रमुख अंग हैं ये, जो खाद्य श्रृंखला को भी संतुलित रखते हैं। आहार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है ये, और साथ ही पर्यावरण में होने वाले बदलावों और प्रदूषण के प्रति भी संवेदनशील होते हैं। यदि किसी क्षेत्र में सांपों की संख्या कम हो रही है तो ये दर्शाता है कि वहां पर्यावरण में असंतुलन, कीटनाशकों का अधिक प्रयोग या फिर प्राकृतिक आवास का विनाश हो रहा है। पर्यावरण और जैव विविधता को बचाने के लिए सांपों का संरक्षण आवश्यक है, और आसपास यदि कोई सांप दिखे तो उसे मारने के बजाय वन विभाग या फिर स्थायी वन्य जीव बचाव दल को सूचित करना आवश्यक है। और यदि सर्पदंश की स्थिति आ ही जाए तो क्या करना है, इस बारे में जानकारी आप सुन पाएंगे आज प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ में। जैसे कि हमने आपको बताया है, एक बार फिर आपको याद दिला देते हैं, वर्तमान समय में सर्पदंश की घटनाएं, कारण, बचाव और सुरक्षा, इस विषय पर जन स्वास्थ्य सहयोग गनियारी के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर गजानन से मोहम्मद रफीक की बातचीत आप सुनेंगे आज सुबह 7:30 पर। रिकॉर्डिंग और संपादन अद्वैत भारत का, तो याद रखिएगा, जरूर सुनिए।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
0: मित्रों, आज है 12 जुलाई और आज जयंती है फिल्म निर्देशक विमल रॉय की। विशेष रूप से वो अपनी यथार्थवादी और समाजवादी फिल्मों के लिए, जैसे कि आपको याद होगा, दो बीघा जमीन, परिणीता, विराज बहू।

0: देवदास, मधुमती, सुजाता, परख और बंदिनी जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। सिनेमा से इतालवी और यथार्थवादी सिनेमा से प्रेरित होकर उन्होंने कई फिल्में बनाईं और जो आज भी हमें याद हैं और दिल पे गहरी छाप छोड़ती हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी वो नवाजे गए। 2 बीघा जमीन के लिए 1953 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार मिला उन्हें। कई पुरस्कार पाए थे इस फिल्म ने और परिणीता, बिराज बहू और मधुमती, सुजाता, बंदिनी, परख, इन सभी फिल्मों के लिए भी उन्होंने अवार्ड जीते। उनकी फिल्म का गीत हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं आज के ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर।
1: नमस्कार, प्रस्तुत है आकाशवाणी बिलासपुर की दैनिक प्रस्तुति ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर। मैं हूं उमाशंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर शहर में आज प्रतियोगी परीक्षा का महाकुंभ होने जा रहा है। लोक सेवा आयोग रायपुर के द्वारा सूबेदार, उपनिरीक्षक, प्लाटून कमांडर की प्रारंभिक परीक्षा शहर के 37 परीक्षा केंद्रों में प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा में कुल 13,716 परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं। सभी प्रतिभागियों को बिलासपुर पुलिस की शुभकामनाएं। साथ ही सभी परीक्षार्थियों से अपील है, ये वर्षा ऋतु है इसलिए कभी भी कहीं भी वर्षा हो सकती है, जिससे कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित होता है। इसके अलावा इस समय शहर की प्राय सभी सड़कों में यातायात की अधिकता है। इस कारण भी कभी कभी एकाएक किसी भी कारण से आवागमन की गति बहुत कम हो जाती है अथवा कुछ देर के लिए यातायात रुक भी जाता है। इसलिए अपने घरों से कुछ जल्दी परीक्षा के लिए निकलिए ताकि परीक्षा में विलम्ब से पहुंचने की दुविधा ना रहे। इसी प्रकार परीक्षा की समाप्ति पर भी एक साथ विभिन्न वाहनों से एकाएक इतने लोगों के सड़कों पर आ जाने से भी सुगम यातायात प्रभावित होता है। ऐसी स्थिति में धैर्य से काम लेवें, विभिन्न चौक चौराहों में यातायात व्यवस्था संभाल रहे, यातायात के जवानों के संकेतों का पालन करें। ध्यान रहे, आपकी थोड़ी भी लापरवाही या जल्दबाजी बड़े जाम की स्थिति निर्मित कर सकती है, तब परेशानी अधिक होगी। मित्रों, मालवाहक वाहन छोटे हों या बड़े, सभी की अपनी एक मानक आकृति होती है और इसी आकृति के अनुरूप उसकी माल परिवहन की क्षमता तय होती है। नियमानुसार इन वाहनों में क्षमता के अनुरूप ही माल परिवहन किया जाना चाहिए, किंतु तमाम वाहन वाले वाहन की आकृति में अनधिकृत रूप से छेड़छाड़ कर इसके आकार को बढ़ाकर क्षमता से अधिक माल भर कर चलते हैं। याद रखें, ऐसा करने से हानि अधिक, लाभ कम होता है। ईंधन की खपत अधिक होती है, इंजन पर अधिक भार पड़ने से वाहन जल्दी खराब होता है, चालक का वाहन में पर्याप्त नियंत्रण नहीं होने से दुर्घटना की स्थिति बनती है और मोटर व्हीकल एक्ट में यह प्रतिबंधित है, इसमें बड़े जुर्माने का प्रावधान है, अतः ऐसी गलती कभी न करें। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें ताकि आपकी यात्रा शुभ हो।
0: ये थे ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर उमाशंकर पांडे जी से, और जैसे कि हमने वादा किया था, विमल रॉय जी की फिल्म का गीत आपको सुनवाएंगे, तो आइए सुनते हैं बंदिनी फिल्म का गीत।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
2: देश के युवाओं ने ठाना है भारत को आयुष्मान बनाना है। आज ही पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाकर उन्हें दे नए साल का उपहार। 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मिला 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का अधिकार। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

और एक और कलाकार को आइए याद करें जिनकी पुण्यतिथि है राजेंद्र कुमार जी। हाँ, हम सभी जुबली कुमार के नाम से जानते हैं उनको। पद्मश्री से भी नवाजे गए थे 1969 में। कई हिट फिल्में उन्होंने दी हैं, धूल का फूल, दिल एक मंदिर, मेरे महबूब, संगम, आरजू, सूरज, तलाश, फिल्म फेयर पुरस्कारों से भी नवाजे।

गए वो दिलेक मंदिर और आए मिलन की बेला और आरजू के लिए, और चलते चलते उनकी फिल्म गीत का ये गीत आइए सुनते हैं।

सर्वे जना सुजना भवन्तु, सर्वे सुजना सुखिनो भवन्तु। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज सुबह कार्यक्रम से हमें दीजिए विदा। नमस्कार।

0: आज सुबह आज सुबह ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 7:30 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ। आज इसमें वर्तमान समय में सर्पदंश की घटनाएं, कारण, बचाव और सुरक्षा, इस विषय पर जन स्वास्थ्य सहयोग गनियारी के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर गजानन से मोहम्मद रफीक की बातचीत। आइए सुनते हैं, रिकॉर्डिंग और संपादन अद्वैत भारत का।
1: बरसात का समय है और इस समय हम अक्सर सुनते हैं कि गांव में, शहरों में सांप काटने की घटनाएं होती हैं। तो अभी हम आज यहां जन स्वास्थ्य सहयोग गनियारी में उपस्थित हैं। यहां पर हमारे सामने हैं डॉक्टर गजानन जी, आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार। सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बरसात के समय में सांप काटने की घटनाएं होती हैं, सबसे पहले तो ये सांप जो है सिर्फ खतरा ही नहीं है, वो प्रकृति का हिस्सा भी है।
2: जी बिल्कुल, ये पृथ्वी तो सभी जीवों के लिए बनी हुई है। कभी भी कोई भी सांप जानबूझकर इंसान को काटता नहीं है, काटना उसके बचाव का एक हिस्सा है। और जानबूझ के वो इंसानों के घरों के आसपास आना भी नहीं चाहता, ना घरों के अंदर आना चाहता है। लेकिन जो उसका खाना है, चूहे, वो आमतौर पे बारिश के दिनों में खेत खलिहान से निकल के घर के अंदर चले जाते हैं, तो उनके पीछे पीछे सांप आ जाता है।

0: डॉक्टर साहब, जैसे कि आपके अस्पताल में जो सांप काटने की घटनाएं आती हैं, जो मरीज आते हैं, तो विषैले सांप काटने से ज्यादातर नुकसान होता है, या जिनको सांप काटा है उनके साथ और भी कोई समस्या होती है, जैसे नशा की है या लापरवाही हो गई है?
1: प्रतिदिन हमारे पास कम से कम एक मरीज सांप काटने के परेशानी लेकर आता है। कई बार मरीज को पक्का पता होता है कि सांप काट लिया है, तो फिर वो सीधा बोलते हैं कि सांप काटा है। कई लोग सांप को पकड़ के भी लाते हैं, तो फिर हमें ये पहचानना आसान होता है कि वो जहरीला है या बिना जहरीला है। और मैंने देखा है छत्तीसगढ़ में लोगों का सांप का जो समझ है वो अच्छा है और लोग पहचानते हैं,
0: जी
1: तो ज्यादातर सांप जो है वो बिना जहरीले होते हैं।
0: जी
1: जहरीले प्रकार के मुख्य चार ही प्रकार के सांप हमें देखने को मिलते
0: जी
1: हैं, तो जिसमें डोमी यानी कोबरा जो है एक, या नाग हम जिसको बोलते हैं, ये एक मुख्य सांप है
0: जी
1: छत्तीसगढ़ी में। मतलब इसको दो प्रकार का डोमी बोला जाता है, कि एक तो है वो गेहुआ डोमी और एक होता है जो काला डोमी। तो काला डोमी को नाग बोलते हैं और गेहुआ डोमी को गेहुआ बोला जाता है। तो उसका कलर जो है वो ब्राउन कलर होता है, तो इसलिए उसको गेहुआ बोला जाता है। लेकिन अगर हम देखें जहर के मामले में, दोनों कोबरा ही है, कलर
0: जी
1: उनका अलग अलग होता है। और दोनों ये जो सांप होते हैं ये न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। न्यूरोटॉक्सिक यानी कि ये नस के ऊपर असर करते हैं, नसों को पैरालाइज करते हैं, तो
0: जी
1: शरीर के सिर से लेके नीचे पैर तक एक एक नसें जो है वो काम करना बंद कर देती है। तो शुरू में आप मरीज ठीक से खोल नहीं पाता, फिर जुबान तोतलाना, फिर उसके बाद सांस लेने में दिक्कत, ऐसे करके धीरे धीरे ऊपर से नीचे नीचे ये पैरालिसिस बढ़ता है। जो दूसरा आमतौर पे सांप जो जहरीला है वो है करेत। एक होता है घोड़ा करेत, एक होता है डंडा करेत।
0: जी
1: तो जो घोड़ा करेत है वो जहरीला है, जिसको हम कॉमन करेत बोलते हैं इंग्लिश में। जो डंडा करेत को सामान्य भाषा में सामान्य कोइराला बोलते हैं। तो
0: अच्छा
1: इसका डंडा मतलब इसका शरीर गोल होता है, और जो घोड़ा करेत है इसका शरीर त्रिकोणी होता है, और जो सामान्य कोइराला है डंडा करेत वो घरों के आसपास पाया जाता है, वो जहरीला नहीं है,
0: अच्छा
1: उसके काटने से कोई भी परेशानी नहीं होती है। दोनों ये जो घोड़ा करेत और डंडा करेत की निशानी ये है कि इसमें सांप के ऊपर दो दो की जोड़ी में पट्टियां होती है, सिर से लेके पूंछ तक।
0: अच्छा
1: तो जो घोड़ा करेत में है ये पूरी होती है, और जो डंडा करेत है सामान्य कोइराला है, इसमें पूंछ में ये पट्टियां नहीं होती है। लेकिन अगर डाउट है तो हमारा सलाह हमेशा ये होता है, सांप काटने के बाद तुरंत अस्पताल जाए। फिर तीसरा जो प्रकार का जहरीला सांप होता है, वाइपर जो होता है वो वैस्कुलर टॉक्सिक होता है, मतलब वो खून को पतला करता है, खून को गलाता है, खून मांस को सड़ाता है। तो वाइपर जब काटता है तो वाइपर काटने से खून गाढ़ा नहीं होता, मतलब खून जो है जमता नहीं है,
0: जी
1: तो खून बहने की वजह से फिर उसमें मृत्यु हो जाती है। तो वाइपर में भी अलग अलग प्रकार के वाइपर है, रसेल वाइपर है या अलग प्रकार के वाइपर है। तो ऐसे चार जो हम बोलते हैं चार प्रमुख जहरीले सांप है।
0: जी
1: इसके अलावा ज्यादातर जो बाकी सांप है ये बिना जहरीले प्रकार के होते हैं। तो बिना जहरीले सांपों में भी हम देखते हैं मरीज परेशान होके आते हैं, डर जाते हैं,
0: जी
1: और उनमें कई बार अगर पहले से किसी को बीपी शुगर की बीमारी है तो डरने के वजह से उनमें हार्ट अटैक की समस्या भी देखने को मिलती है। तो फिर हमारी यही सलाह रहती है कि अगर किसी भी आपको या आपके परिजन को किसी को भी अगर सांप काटता है तो डरे नहीं, तो सांप चाहे जहरीला हो या बिना जहरीला हो। और जहरीला सांप होने के बावजूद कई बार ऐसे भी हम देखते हैं जिसको हम ड्राई बाइट बोलते हैं, यानी कि सांप काटता तो है लेकिन वो जहर नहीं छोड़ता, तो ऐसे भी केसेस हमको मिलते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर 100 लोगों को सांप काटता है तो उसमें 4 या 5 को ही जहर चढ़ता है, उनको हमें इलाज देते हैं, लेकिन अस्पताल में सभी को जाना है, क्योंकि वो 5 कौन है 100 में से वो हमें नहीं पता चल सकता। और हम उपचार में देरी करें तो फिर इसमें मृत्यु होती है, दुर्घटनाएं होती है, बहुत सारी गलतफहमियां अंधविश्वास भी इससे जुड़े हुए हैं। अगर सांप काटता है तो नजदीकी अस्पताल में जाए, चिकित्सकीय परामर्श ले, तो जहां से फिर वो जहरीला है जहरीला नहीं है, जहरीला है तो भी क्या उसने जहर अंदर छोड़ा है या ड्राई बाइट है, ये सब जानकारी जो डॉक्टर्स है वो लेके फिर उसका इलाज वो शुरू करते हैं।
0: डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि अंधविश्वास, आपने बताया कि सांप को काटने से, तो आपका जो कार्यक्षेत्र है, जो 72 गांव यहाँ पे आपके हैं, जो पूरे आदिवासी क्षेत्र हैं, तो यहाँ सांप काटने को लेकर कुछ अंधविश्वास आपको दिखाई देता है?
1: जी, मतलब लोगों में ये प्रचलन है कि अगर सांप काटता है घर के अंदर और फिर अगर उसको उस मरीज को दरवाजे से लांग के लेकर जाते हैं तो उसका मृत्यु निश्चित है, मतलब वो उस दरवाजे से वापिस नहीं आता। तो कई बार ये देखने को मिलता है कि लोग फिर उसके लिए छप्पर तोड़ते हैं और छप्पर तोड़ के मरीज को बाहर निकालने का प्रचलन दिखता है। तो इसमें होता यह है कि छप्पर तोड़ने में और मरीज को अस्पताल तक पहुंचाने में देरी हो जाती है, और कई बार इस

0: देरी की वजह से फिर मृत्यु हो जाती है। दूसरा है कि कुछ कुछ लोगों को लगता है कि सांप काटने के बाद सांप का जहर चढ़ने को हम मंत्र से रोक सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि 100 लोगों को अगर सांप काटता है उसमें 4 या 5 जहरीला है, उसमें जहर चढ़ता है, बाकी लोगों को नहीं चढ़ता। तो मतलब मेरे जानकारी में तो ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि अगर जहरीले सांप ने जहर छोड़ा है तो फिर उसका असर दिखेगा। तो हमारे पास ऐसे भी मरीज हमने देखे हैं जो कई बार जाते हैं कुछ बाबाओं के पास और फिर वहां से देरी भी हो गई है, हमने देखा है कि कुछ रास्ते में ही खत्म हो गए हैं, कुछ हमारे पास आते हैं उसके बाद हमें इलाज देना पड़ा और उसके बाद 2-3-4 दिन मरीज को भर्ती हुए हैं, उसके बाद मुश्किल से ठीक हो गए। तो फिर मैं ये कुछ दावे के साथ कह सकता हूँ कि मंत्र से सांप के जहर को चढ़ना हम नहीं रोक सकते। ये भी एक गाँव में भ्रांति है कि कुछ लोग बिना जहरीले सांप को भी मंत्र से जहर में बदल देते हैं और जहर चढ़ाते हैं। तो फिर मैं बोलूंगा ये भी संभव नहीं है। अगर सांप जहरीला है तो अगर उसने सांप का जहर उसने अपने खून के अंदर छोड़ा है तो फिर वो अपना असर दिखाएगा। अगर वो सांप हो सकता है जहरीला नहीं है तो फिर वो ठीक हो गया और लोगों के मन में ये विश्वास आ गया कि ये तो जहर नहीं चढ़ा, देखो सांप काटा था। तो फिर इसलिए मतलब ये कुछ आम भ्रांतियां देखने को मिलती है। फिर कुछ लोग चूस के सांप का जहर निकाल सकते हैं, ये भी एक भ्रांति है। तो चूसने से सांप का जहर नहीं निकलता है, तो सांप जहां पे कटता है हमारा ये सलाह रहता है कि उस जगह को हम हिलने डुलने ना दे। जैसे फ्रैक्चर होने के बाद हम पैर को या हाथ को जहां पे भी फ्रैक्चर होता है उसको बांध देते हैं दोनों तरफ से ताकि वो हिले डुले नहीं, वैसे ही सांप जहां काटता है उस वाले हिस्से को हमें बांध देना है। और क्योंकि जो जहर फैलता है वो खून से ही पूरा शरीर में फैलता है, तो अगर वहां पे अगर हम उस हिस्से को हिलने डुलने नहीं लेते तो फिर उसको खून जो जहर है उसको एक ही जगह रहेगा, वो दिमाग तक नहीं पहुंचेगा या बाकी जगह तक नहीं पहुंचेगा, तो फिर उसमें हमें अस्पताल जाने तक का समय मिल जाता है। तो बांधना जरूर चाहिए लेकिन बहुत कस के नहीं बांधना चाहिए, ऐसे बांधना चाहिए कि उसके नीचे हमारा एक उंगली घुस सके, क्योंकि बहुत कस के बांधने से खून का बहाव उस वाले अंग को रुक जाता है और कई बार बिना जहरीला सांप होता है और डर में कस के बांधने से आगे वाले हिस्से को काटने की नौबत भी आ जाती है, उसमें गैंग्रीन हो जाता है, वो हिस्सा गल सकता है। और अगर किसी ने बांधा है तो हमारा सलाह रहता है कि उसको खोलना या ढीला करना अस्पताल में ही करें, क्योंकि कई बार जहरीला सांप होता है और ढीला करने से जहर फैलने से फिर दिक्कतें हो सकती है। और यहाँ पे एक ये भी देखने को मिलता है कि अगर सांप काटने के बाद सांप को मारते हैं तो फिर उस वो व्यक्ति भी मर जाता है, तो ऐसी भी एक विश्वास हमें देखने को मिलता है। तो ये आदिवासी समुदायों में ज्यादा है। ये अच्छी बात है कि हम सांप को नहीं मारना चाहिए, मतलब वो जानबूझ के नहीं काटता है और सांप अलग अलग रूप से किसानों की और पर्यावरण की मदद करता है, तो हम उसको पकड़ के कहीं छोड़ दे ये अच्छी बात है, तो उसको नहीं मारना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि अगर कोई सांप मार दिया तो उस व्यक्ति को हम अस्पताल ना ले जाए, अब सांप तो मर गया तो ये व्यक्ति भी नहीं बचेगा, ये भी एक भ्रांति है।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि एक तो जो अंधविश्वास है और हमने फिल्मों में भी देखा, जो उसका आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि खून चूसना और ये भी नहीं करना, और ये काटने वाला भी क्या है, कोई ब्लड ब्लेड से काटने वाला ये भी नहीं करना चाहिए,
0: नहीं करना चाहिए जी।
1: डॉक्टर साहब, जैसे ये समय है बरसात का समय, ये समय आपने बताया कि इस समय पे सांप ज्यादा निकलते हैं, तो हमको कैसे अपनी सुरक्षा करनी चाहिए जिसमें सांप भी सुरक्षित रहे और इंसान भी सुरक्षित रहे, तो इसमें क्या हमको सावधानी रखनी चाहिए?
0: जी जी बिल्कुल। जैसे एक तौर पे चूहे या सांप जो है ईंधन जो लकड़ी जलाऊ लकड़ी घर के बाजू में रखते हैं उसी में वो आके छुप जाता है, क्योंकि वहां चूहे आते हैं उसके बाद सांप आ जाता है। तो फिर हमें ये देखना चाहिए कि जो जलाऊ लकड़ी है वो हम घर के घर से सट के बिल्कुल ना रखे, उसको थोड़ा सा अलग एक अन्य छोटा सा छप्पर बना ले जो आंगन के थोड़ा सा अलग हो, जहाँ पे छोटे बच्चे ना जाए और बड़े लोग ना जाए, तो ये हम ध्यान दें। दूसरा है कि हमें मतलब जूते का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसी जगह जब भी जाते हैं या रात को निकलते हैं तो हाथ में एक डंडी हो और टॉर्च लाइट हो, ये हम जब रखते हैं तो सांप की संवेदना वाइब्रेशन की होती है, उसको लहरें ज़्यादा पता चलती है। तो जैसे अगर हम रात को कहीं जा रहे हैं और हम लकड़ी को ठोक ठोक के चलते हैं तो सांप को पता चलता है कि कोई व्यक्ति आ रहा है, तो वो रास्ते से हट जाता है। जहाँ पे भी हमें पैर रखना है वो जगह हम देखें, अपने नजर में रखें, वहाँ पे लाइट डालें और वहाँ पे ही पैर रखें, ताकि जाने अनजाने में हमारा पैर जो है सांप पे नहीं पड़ता और फिर वहां सर्पदंश की घटनाएं नहीं होती है। फिर घर के अंदर, मतलब ये घर के बाहरी वाली बातें हो गई, और फिर जैसे लकड़ी लेते हैं तो भी हम एक तो उजाले में लें, और फिर लकड़ी में जहां पे भी हम हाथ लगा रहे हैं वो चीज भी हम टॉर्च लगा ले या उजाले

में देखें कि बिना देखे कहीं पे भी हाथ ना घुसाए, क्योंकि जैसे हम हाथ डालते हैं सांप को लगता है कि कोई चूहा वगैरह आ गया तो उसको खाने के लिए वो झपटता है। आपने पेपर में भी पढ़ा होगा अभी कि एक पूरे फैमिली को, या अभी एक न्यूज में आया था कि एक हॉस्टल में लगभग 12-13 बच्चों को सांप ने काट लिया। बच्चे सोए थे तो सांप चला गया और उसने बहुत लोगों को काटा, लगभग 13 लोगों को काटा, 4 की मौत हो गई और बाकी लोग इलाज होके ठीक हो गए। सांप को अंधेरे में कुछ दिखता नहीं है, जब भी कोई व्यक्ति सोया है और उसके हाथ पैर की हलचल हो

0: मौत हो गई और बाकी लोग इलाज होके ठीक हो गए। सांप को अंधेरे में कुछ दिखता नहीं है। जब भी कोई व्यक्ति सोया है और उसके हाथ पैर की हलचल होती है तो सांप को खतरा महसूस होता है। और जो करेत करके, खास करके जो सांप है, वो करेत रात को घूमने वाला है, वो निशाचर है, वो दिन में नहीं घूमता है। तो उसकी जो काटने की घटनाएं हैं ये रात को होती है। तो इससे कैसे बचा जाए, तो इसके लिए हम बोलते हैं कि मच्छरदानी बहुत अच्छा विकल्प है। तो जैसे हम देखते हैं कि बारिश के समय में मच्छर भी ज़्यादा होते हैं, और ये
1: बिल्कुल
0: मलेरिया, डेंगी, चिकनगुनिया, किलनी बुखार, ये अलग अलग प्रकार की परेशानियां भी देखते हैं। तो ये मच्छरदानी सांपदानी जैसे भी काम करती है। तो
1: जी
0: अगर आप मच्छरदानी लगा के सोते हैं तो सांप मच्छरदानी के अंदर नहीं घुस सकता, वो बाजू से निकल जाएगा। तो फिर व्यक्ति या परिवार जो है ये सुरक्षित रहता है। और एक चीज जो छूट गई बताने में, कि जैसे हमारा घर का दरवाजा होता है
1: हाँ
0: उसको थोड़ा सा हम ऊंचा बना ले जमीन से, ताकि
1: अच्छा
0: सांप जो है ज्यादातर सीधा चलना पसंद करता है, उसके बीच में कहीं पे भी थोड़ा सा ऊंचा चीज आ जाता है तो वो मुड़ जाता है। और घर के अंदर कोई बन बड़ा है या घर के खिड़की के बाजू में कोई पेड़ का टहनी है तो
1: जी
0: उसको भी हम काट के सफाई रख सकते हैं घर के आजू बाजू में, थोड़ा 1-1.5 फीट, ताकि फिर सांप जो है उस तरफ से अंदर ना घुसे।
1: तो डॉक्टर साहब आपने बहुत सारी बातें बताई। सांप हमारे जो प्रकृति के मित्र हैं, जो सर्पदंश से जो घटनाएं होती हैं, लोगों की जो भ्रांतियां हैं, उस पर आपने विस्तार से बातचीत की और उसके बचाव पर आपने बहुत सारी बातें कही हैं कि ये सांप के काटने से हम कैसे बच सकते हैं। तो आज आपने अपना कीमती समय दिया,
0: जी
1: आपका बहुत बहुत
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ। इसमें वर्तमान समय में सर्पदंश की घटनाएं, कारण, बचाव और सुरक्षा, इस विषय पर जन स्वास्थ्य सहयोग कन्यारी के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर गजानन से मोहम्मद रफी की बातचीत आपने सुनी। रिकॉर्डिंग और संपादन अद्वैत भारत का था। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी बिलासपुर है। और अब आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गीत आप तक पहुंच रहा है जंजीर फिल्म से।

जी हाँ, यारों के यार प्राण साहब, आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें याद कर रहे हैं। भारतीय सिनेमा में खलनायक की भूमिकाओं के साथ साथ चरित्र अभिनेता के रूप में भी अपना नाम इन्होंने दर्ज करवाया है। कई फिल्में इनकी, उन सब का जिक्र अभी करना संभव नहीं। हाँ, मुख्य बात ये बता दें कि पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया गया 2001 में, और 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो भारत सरकार द्वारा आजीवन उपलब्धि के लिए सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार। और फिल्म फेयर पुरस्कारों की बात करें तो उपकार, आंसू बन गए फूल, बेईमान, इन फिल्मों के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में सम्मानित किया गया था। चलिए सुनते हैं उनकी फिल्मों से लिए गए एक दो गीत।

0: फिर से?
1: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
1: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
1: अरे
2: काट दिया।
3: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
3: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
7: मित्रों आइए याद करते हैं आज एक और अभिनेत्री को जिनकी जयंती है, जो 70 और 80 के दशक में इन्होंने फिल्मों में भी अभिनय किया था और साथ में ये पार्श्व गायिका भी रही थी। ये हैं सुलक्षणा पंडित। तो चलते चलते उनकी फिल्म थोड़ी सी बेवफाई फिल्म में उन्होंने पार्श्व गायिका के रूप में अनवर के साथ जो गीत गाया है उसे आइए सुनते हैं। खयाम का संगीत है, गीतकार हैं नक्श लायलपुरी।

0: एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 8 बजे हैं। अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 3 देशों की यात्रा संपन्न। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ विस्तृत वार्ता के बाद स्वदेश रवाना। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए। दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमरीका ने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में

थोड़ी सी बेवफाई। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना सुलक्षणा पंडित और अनवर की आवाजों में। इसी के साथ अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं।

0: साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए। ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले चार दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया और लिंडा नोसकोवा ने कैरोलिना मुकोवा को हराकर अपना पहला विंबलडन टेनिस खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। इस दौरान श्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ व्यापक बातचीत की। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। इस दौरान रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और डेयरी तथा पशुपालन सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ऑकलैंड में सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय मूल के 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। श्री मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को विश्वसनीय मित्र बताते हुए न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की भी उन्होंने प्रशंसा की। श्री मोदी ने श्री लक्सन के शानदार आतिथ्य के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। श्री मोदी ने 40 वर्ष बाद भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा के बारे में कहा कि अगली यात्रा में इतना समय नहीं लगेगा।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के दौरान भारत ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, नवाचार, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया है। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गृहमंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधारोपण अभियान की शुरुआत भी करेंगे।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने संसदीय क्षेत्र को देश में सबसे हरा भरा बनाने के लिए महत्वाकांक्षी गांधीनगर हरियाली लोकसभा अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके तहत इस साल गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में 1.25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इस अभियान के तहत वन विभाग अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में वन कवच मॉडल के माध्यम से लगभग 60 लाख स्वदेशी पौधे लगाएगा, जो त्वरित पर्यावरण सुधार के लिए जापानी मियावाकी पद्धति का गुजराती स्वदेशी संस्करण है। अपने दौरे के आखिरी दिन श्री शाह कल गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट ग्रुप बैठक और पहली अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषक अपराध प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे देहगांव में नवनिर्मित एपीएमसी सब्जी मंडी का भी लोकार्पण करेंगे। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: उत्तर प्रदेश सरकार व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। एक रिपोर्ट।
3: 27 विभागों के समन्वय से चलाए जाने वाले इस विशाल वृक्षारोपण अभियान में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग सर्वाधिक 15 करोड़ 50 लाख पौधारोपण करेगा। ग्राम्य विकास विभाग 10 करोड़, कृषि विभाग 3 करोड़ 25 लाख, उद्यान

0: वन विभाग 1,50,00,000 और पंचायती राज विभाग 1,22,00,000 पौधे लगाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे भी 5,50,000 पौधे लगेंगे। महाअभियान 2026 में इस वर्ष समरस वन, समृद्धि वन, कृषि वन, ऊर्जा वन, कपि वन समेत अनेक नवीन वन तैयार किए जाएंगे। महर्षि चरक औषधि वन की शुरुआत 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस पर की गई है। इस अभियान का प्रमुख हिस्सा मिशन छाया, अविरल धारा पौधारोपण, सहजन भंडारा और आम भंडारा भी होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में अपनी 2 दिवसीय परामर्श प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संवैधानिक विशेषज्ञों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और मीडिया से विचार विमर्श किया। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: पहले दिन समिति ने गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, संवैधानिक विशेषज्ञों, राज्य निर्वाचन आयोग तथा गोवा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। दूसरे और अंतिम दिन कल समिति ने गोवा विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर गणेश गांवकर, विपक्ष के नेता यूरिया लेमाव तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायकों से चर्चा की। इससे पहले समिति के अध्यक्ष और सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से सुशासन को बढ़ावा मिलेगा, चुनावी खर्च कम होगा और बार बार होने वाले चुनावों से होने वाले प्रशासनिक व्यवधान में कमी आएगी। समिति अब अपने राष्ट्रव्यापी परामर्श अभियान के अगले चरण में लखनऊ का दौरा करेगी। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फुकवोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। ये हादसा उस समय हुआ जब 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फुकवोक द्वीप के पास रटनगोवाई टापू के निकट अचानक ऊंची लहरों की चपेट में आकर पलट गई। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका की सेना ने कहा है कि हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए हैं। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। ईरान की नौसेना ने कहा कि इस इलाके में अमेरिका का दखल खत्म होने तक किसी भी जहाज को इस रास्ते से निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नौसेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य की इस घटना को लेकर अमेरिका की किसी भी कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ईरान से सार्वजनिक रूप से होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर हमला नहीं करने का आश्वासन चाहता है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तनाव के बावजूद ईरान के साथ बातचीत जारी रहेगी। ईरान ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य उसके नियंत्रण में ही रहेगा और इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को शुल्क देना होगा। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही के लिए 2 अलग अलग रास्तों का प्रस्ताव दिया है, लेकिन ईरान ने इस तरह के प्रस्ताव को पहले ही खारिज कर दिया था। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका एस जानकी अम्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ मुकेश कुमार बल।
4: फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इंग्लैंड

0: के जूड बेलिंगहम ने अतिरिक्त समय में 2 गोल करके इंग्लैंड को जीत दिलाई। इंग्लैंड तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस बीच पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यैनिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार आज रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। महिला डबल्स के फाइनल में आज 10वीं वरीयता प्राप्त गुओ हान्यू और क्रिस्टीना म्लाडेनोविच की जोड़ी का मुकाबला दूसरी वरीयता प्राप्त गैब्रियला डब्रोवस्की और लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे से शुरू होगा। और इंग्लैंड ने कल रात साउथहैम्पटन में 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली है।
1: और अभी अभी प्राप्त समाचार के अनुसार अमेरिका के कंसास में जारी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड 1-1 गोल से बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। इनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा शामिल हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाई है। नवभारत टाइम्स ने प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को प्राथमिकता देते हुए लिखा है, आतंकवाद पर बनाएंगे ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम के बीच सहमति। पंजाब केसरी ने INS महेंद्रगिरी के जलावतरण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को प्रमुखता दी है, भविष्य के युद्ध सिर्फ AI से नहीं सैनिकों के दम पर जीते जाएंगे। जनसत्ता ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान दिया है, चढ़ावा चोरी कलंक, व्यवस्था में जल्द सुधार। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर बरसात में बेहाल होते शहरों पर विश्लेषण दिया है, हर बरसात में देश के शहरों में लोग जलभराव और उससे जुड़ी समस्याओं से जूझते हैं, इसके बाद भी नगर निकायों का काम करने का तौर तरीका नहीं बदला है। अखबार ने लिखा है कि अब यह जरूरी हो गया है कि संसद में एक विशेष सत्र बुलाकर बिगड़ते शहरीकरण को संवारने के लिए कोई सार्थक बहस की जाए। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रीय राजधानी के मौसम का मिजाज दिया है, कमजोर पड़ा मॉनसून, अब 1 हफ्ते झेलनी पड़ेगी गर्मी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 3 देशों की यात्रा सम्पन्न। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए, दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए। ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. Prime Minister Narendra Modi concludes his 3-nation tour of Indonesia, Australia and New Zealand. Departs for India after holding extensive talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. Vietnam government orders probe into speedboat tragedy that killed 15 Indian tourists. US launches new round of strikes against Iran after IRGC forces attack container ship transiting Strait of Hormuz. Iranian Navy closes the vital sea corridor until further notice. IMD forecasts heavy rainfall across northern and eastern parts of the country for next 4 days. England beats Norway 2-1 to reach FIFA World Cup semi-finals. And Linda Noskova beats Karolina Muchova to win first Wimbledon tennis title. Prime Minister Narendra Modi has concluded his three-nation tour of Indonesia.

माटी के स्वर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। और कार्यक्रम का पहला गीत पहुंच रहा है आप तक, आप सभी की पसंद पे। श्री श्रृंगी ऋषि सिहावा पर्वत अंचल

बेलर गांव से हैं मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु, अंकित देवांगन। ओवरेठी पारा भाटापारा से हैं अनीता साहू, वीणा साहू, नेहा साहू, मोनिशा साहू। रमज़ान खान सिकंदर, अशरफ खान, नासिर खान, अयाज अलफैज खान, हज़ीरुन्निशा, सादिया खान, आप सभी शांतिनगर भाटापारा से। बिल्हा से शेख नासिर और महजबीन बानो। नेहरू वार्ड भाटापारा से हैं प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत साहू, राघवेंद्र साहू। मोहन पारा अकलतरा से अभिनव साहू, अभिषेक साहू और उमा देवी साहू। ग्राम पंचायत बठेना से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा। चटौधर सारा गांव से हैं सुजान वर्मा, सोहोद्रा वर्मा, आयुषी और कृत वर्मा। शिवाजी चौक राजिम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा से हैं दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा, दिव्यांश, आरोही और लबी श्रीवास्तव। आप सभी की पसंद पे आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गाना। आवाजें हैं ध्रुवा राम मरकाम और दुखिया भाई दुखिया बाई मरकाम की।

महिला सभा हेतु अब एक सूचना सुनिए। कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण हर महीने के दूसरे मंगलवार को होता है। इस माह इसका प्रसारण 14 जुलाई 2026 मंगलवार को शाम 5:35 से किया जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग 13 जुलाई दिन सोमवार को दोपहर 3 बजे से 3:30 के बीच की जाएगी। आप हमें फोन करके डॉक्टर से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे कार्यक्रम के विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर सृष्टि चतुर्वेदी गुप्ता। आपसे चर्चा का विषय होगा मानसून में महिलाओं की सेहत, संक्रमण से सुरक्षा। आप हमें फोन कर सकते हैं इन नंबरों पर 2665 और 3100 266592 और 310026। इससे पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752077752 अवश्य लगाएं। आपके फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई।

एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बिलासपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम माटी के स्वर। और अब आइए सुनते हैं अगला गीत इन सभी श्रोताओं की पसंद पर। ग्राम गतौरा अटल बाजार चौक से हैं सूरज कुमार राठौर, सीमा राठौर, आर्यन कुमार राठौर, अमन कुमार राठौर, चिकू राठौर, हिमांशु राठौर, राजू राठौर और सोनू राठौर। कटघरी अकलतरा से नंदनी, चांदनी, करण, किरण, फुग्गी, डुग्गू, गप्पी, ममता, निधि, देवांश। और अकलतरी से हैं फिरोज कुमार, रमेश कुमार, चंद्राम कश्यप, राम प्यारी, बीना कश्यप, श्वेता, गरिमा, पंखुड़ी कश्यप, राजवीर कश्यप और लक्ष्य बाबू। और यहीं से हैं चुन्नीलाल, सुरेश, मुकेश, मुखीराम, महेश, डॉक्टर लक्ष्मी कुमार, पिंटू महाराज, वाल्मीकि, गोलू और राकेश। ग्राम बंगला मटिया बालोद से हैं शिव कुमार अंगारे, अंजनी, त्रैंबिका, लीना, अंशुमाला और आशुतोष अंगारे। डांडी लोहारा बालोद से हैं देवशंकर तामुरिया, अजय, तुषार तामुरिया, डॉली, बेबी पूजा तामुरिया, प्रभा देवी तामुरिया। और ग्राम बनबघेरा से हैं जो राजनंदगांव से ये पत्र आया है योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश और कुमारी अंजलि सारवा का। आप सभी की पसंद पे अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। आवाजें हैं नरेंद्र यादव, कांति मरकाम और सुशीला सोनवानी के।

और आइए अब कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं इन सभी श्रोताओं की पसंद पे। भरी टोला डोंडी बालोद से हैं नमित कुमार गौतम, पीहू नीतू और मुरली गौतम। इंदिरा नगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम, आसिफ नईम राजा। नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज़, लूतरा कमरिया से। दत्रेंगी भाटापारा से हैं नोखेलाल वर्मा, हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा और पुष्पेंद्र मणि वर्मा।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: माटी के स्वर कार्यक्रम का ये अंतिम गीत आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पे। भाटापारा से दान सिंह रावत, दानू, पद्मिनी रावत, शुभम, सौरभ रावत, नीरज रावत, पेंशन बाड़ा रायपुर से हैं रोमनाथ यादव, वंदना यादव, सूर्य प्रकाश, शीला, कनक, गुनगुन, बेबी अदिति और तन्मय यादव। पूड़ी लाफा से विद्यानंद साहू, त्रिवेणी साहू, रानी, बबली, सुमन, मंटू, मिष्टि, सृष्टि, दृष्टि, गन्नू, गणेश, कान्हा, कृष्णा, अंशु और सोहू। ग्राम रसेड़ा अकलतरा से हैं मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी साहू, योगेश कुमार साहू, कीर्ति कुमार साहू, संध्या साहू और डिकेश कुमार साहू। साथ में हैं वासु, डॉली और पूर्वेश साहू। ग्राम महम्मदपुर भक्तिन बाजार अकलतरा से रमेश कैवर्त, राजकुमारी और आरती कैवर्त। और ग्राम बुड़गहन से हैं रामदुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकला प्रजापति और शशिकांता प्रजापति। आइए आप सभी की पसंद पे सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गाना दुखी राम मरकाम और अनीता भानु की आवाज़ों में।

इस गीत के साथ ही आज का माटी के स्वर कार्यक्रम अब हम यहीं समाप्त करते हैं। दीजिए अनुमति, नमस्कार। माटी के स्वर, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। FM बैंड 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 9 बजे हैं। अब विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हम रिले करेंगे सुबह के 9:55 तक।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम चित्रलोक में। लीजिए अब सुनिए श्रेया घोषाल और जावेद बशीर की आवाजों में प्रसून जोशी का लिखा और शंकर एहसान लॉय का संगीतबद्ध किया गाना, फिल्म का नाम भाग मिल्खा भाग।

डे ऑफ होप यानी अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस। आशा हमें सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, आशा अंधकार में एक दीपक के समान हमारा जीवन पथ आलोकित करती है। आज चारों ओर तनाव है, भागदौड़ है, प्रतिस्पर्धा है, ऐसे में आशा हमारा संबल बन जाती है। एक आशावान व्यक्ति अपनी सकारात्मक ऊर्जा से सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि पूरे समाज और देश का भी भला करता है।

0: थे के सली मर्चेंट और साथियों की आवाज़ों में इकबाल फिल्म का गाना। इरफान सिद्दकी ने लिखा इसे और संगीत से संवारा था सलीम सुलेमान ने। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। वक्त हो गया एक छोटे से अंतराल का, तुरंत हाजिर होते हैं।

0: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए हैप्पी फिर भाग जाएगी फिल्म का ये गाना।
1: कित चलिए हंज बैठे याद आनिया

दोस्तों आज है इंटरनेशनल डे ऑफ कॉम्बैटिंग सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स यानी रेत और धूल भरी आंधी से निपटने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2023 से मनाना शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य पर्यावरण पर रेत और धूल भरी आंधियों के असर के प्रति जागरूकता फैलाना है। इस चुनौती से निपटने के लिए वृक्षारोपण, भूमि संरक्षण, जल संरक्षण आदि आवश्यक हैं। इस वर्ष की थीम है स्रोत से प्रभाव तक, रेत एवं धूल भरी आंधियों से भूमि और जीवन की रक्षा। यहाँ दोस्तों तो चलिए चित्रलोक कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए देहाती डिस्को फिल्म का ये गाना

अभी आप सुन रहे थे दिव्या कुमार की आवाज में देहाती डिस्को फिल्म का गाना। गीतकार थे प्रणव वत्स और संगीतकार थे गणेश आचार्य। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश अमर आरशी बादशाह और नेहा कक्कड़ की आवाजों में गीतकार हैं अमरिक सिंह और कुमार, और संगीतकार हैं जसलीन रॉयल। फिल्म का नाम बार बार देखो और उसका ये डांस नंबर।

करे जब देखे हमें झूठी लायर। काला काला चश्मा जचता तेरे मुखड़े पे जैसे काला दिल जचता है तेरे चिन पे। अपनी अदाओं से ज्यादा नहीं तो 10-12 लड़के तो मार ही देती होगी तू।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

फिल्में बॉक्स ऑफिस से चाहती हैं प्यार का आसरा, लेकिन सभी फिल्मों के खाते में सफलता के सिक्के नहीं खनकते। आज जिस तरह से बॉक्स ऑफिस से फिल्में धराशायी हो रही हैं और त्राहिमाम त्राहिमाम की गूंज सुनाई दे रही है, तो कौन विश्वास करेगा कि एक जमाने में उन्होंने सम्मोहित कर रखा था दर्शकों को, जो हैं हमारे आज के फनकार। बूझिए तो भला,

अब तो पहचान गए होंगे, हमारे आज के फनकार हैं जुबली कुमार यानी अभिनेता राजेंद्र कुमार। इतनी सुनहरी है राजेंद्र कुमार की दास्तां कि आपकी इस रेडियो सखी का एक मन तो ये हुआ कि बस एक लाइन से फिल्मों के नाम गिनाएं और सुनवाते जाएं उनकी फिल्मों के सुरीले।

दोस्तों, मैंने कहा कि आपकी रेडियो सखी का मन तो ये हुआ कि फिल्मों के नाम बताएं और गीत बजाते जाए, पर भला ये सदाबहार अभिनेता राजेंद्र कुमार की दास्तां कहाँ रहती। तो फिर सुनिए, राजेंद्र कुमार तुली जन्मे तो 20 जुलाई 1929 को थे सियालकोट में, जो अब सरहद के उस पार है। फिल्मों से उनका नाता जुड़ा विभाजन के बाद, जब परिवार आया मुंबई और जब राजेंद्र कुमार निर्देशक H.S. रवैल के सहायक बन गए। शुरुआत केदार शर्मा की फिल्म जोगन के छोटे से रोल से हुई, पर सही मायनों में तूफान और दिया बतौर नायक उनकी पहली फिल्म थी।

0: और तूफान की।
1: सचमुच राजेंद्र कुमार का करियर दिए और तूफान की लड़ाई की तरह थी। फिल्म जोगन से जो दिया जला, उसे सितारा बनने में कुछ ज्यादा वक्त नहीं लगा। सन 1957 में राजेंद्र कुमार महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में नजर आए।

0: दुख भरे दिन बीतरे भैया अब सुख आयो रे
1: जीवन में नया लायो रे
0: होए होए दुख भरे दिन बीतरे भैया बीतरे भैया।
2: अपने जमाने के तमाम चर्चित अभिनेत्रियों के पीछे लहराते हुए गीत गाने का मौका मिला था इस अलबेले नायक राजेंद्र कुमार को। आइए हम भी भीगें प्यार की इन मस्त फुहारों में और चले उस फ्लैशबैक पर जहां हैं अभिनेता राजेंद्र कुमार के साथ अलग अलग तारिकाएं। फिल्म संगम, राजेंद्र कुमार और बैजंती माला।

0: दोस्तों बात चल रही है राजेंद्र कुमार की उस मोहब्बत भरी छेड़छाड़ की जो उन्होंने रजत पट पर की थी अपनी नामचीन अभिनेत्रियों के साथ। फिल्म आरजू, राजेंद्र कुमार और साधना।
1: वो नाजुक लबों से

0: सदाबहार गानों का जिक्र चल रहा है तो आपको ये बता दें कि अभिनेता राजेंद्र कुमार ने सन 1963 और 1966 के बीच लगातार 6 हिट गोल्डन जुबली फिल्में दी थी और इस दौरान उनकी कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई थी। इसे कहते हैं किस्मत।
1: सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे इस दिल दीवाने पे

0: कुल मिलाकर अपनी फिल्मी यात्रा में राजेंद्र कुमार एक ऐसे आधार स्तंभ बन गए जिसे डिगाना आसान नहीं था। एक लंबे समय तक मेलोड्रामा यानी अति नाटकीयता, त्रासदी और आंसू बहाव फिल्मों का दौर जारी रहा, जिनका संगीत ऊंचे पायदानों पर टिका रहा। बीच बीच में बाद के दौर की कुछ फिल्में फ्लॉप भी हुईं। विडंबना देखिए कि सदाबहार अभिनेता राजेंद्र कुमार के सिंहासन को जिस रोमांटिक आंधी ने हिलाया, उसका नाम था राजेश खन्ना, जिन्होंने बाद के दिनों में राजेंद्र कुमार का बंगला भी खरीद लिया।
1: हुस्न वाले

0: कुमार कहते हैं,
1: एक दिन राजेंद्र कुमार जी का बर्थडे था और मैं उनके घर गया तो उनकी वाइफ मुझे जानती थी, बोली भाई साहब आइए आप बैठिए मैं उनको खबर करती हूँ। तो उनको खबर किया तो वो कहने लगे सावन जी को यही भेज दो। तो पीछे मैं गया जहाँ वो बैठे हुए थे तो वहाँ राज कपूर साहब बैठे थे उनके साथ। तो मैंने देखा इतने बड़े आदमी का बर्थडे है, कोई है नहीं, और चंद बुके पड़े थे फ्लावर्स के भी। तो मैंने इधर उधर देखा, मैंने अपना बुके दिया और उनको विश किया कि भैया हैप्पी बर्थडे आपको, तो मैं आपके लिए उन्होंने कहा एक और गिफ्ट लाया हूँ और वो है कि एक पिक्चर आप मेरी कर रहे हैं। जबकि वो चार साल से घर बैठे थे, कोई फिल्म नहीं थी उनके पास, जुबली स्टार थे। तो सबसे पहले राज कपूर साहब खड़े हो और उन्होंने मुझे गले लगा लिया कि भाई तुमने आज मेरे दोस्त को ऐसा बर्थडे गिफ्ट दिया है जो मैं नहीं दे सका, मेरी हिम्मत नहीं है इस वक्त इनके साथ फिल्म बनाने की, अगर तुम बना रहे हो तो मेरी दुआ है तुम्हारी फिल्म गोल्डन जुबली होगी। तो मैंने उनसे फिर कहा कि राज साहब आप मेरी पिक्चर का क्लैप दीजिए। उन्होंने कहा कि क्लैप नहीं दूंगा, मैं सिल्वर जुबली की ट्रॉफी बांटने आऊंगा इस फिल्म की। और उनकी मुबारक जुबान जो है ना अल्लाह ने कबूल की और पिक्चर सुपर हिट हुई और वही ट्रॉफी बांट के गए मेरी इस फिल्म की।

गीतकार और निर्देशक सावन कुमार की यादों में राजेंद्र कुमार आज भी बसे हैं। साजन बिना सुहागन फिल्म की एक घटना को याद करते हुए सावन

0: पवन कुमार साहब, अभिनेता राजेंद्र कुमार को आप किस रूप में याद करना पसंद करते हैं, किस रूप में वो आपको याद आते हैं?
1: वो खाली एक अभिनेता ही नहीं थे, बड़े अच्छे इंसान थे और मेरे लिए तो बड़े भाई की तरह थे। उन्होंने मेरे को बहुत गाइड किया, अपने एक्सपीरियंस, अपनी बातें बता बता के सारी चीजें। मैंने अपने आप को बड़ा एजुकेट किया इस तरह से। ऐसे कई बार राज साहब से बातें होती थी तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता था। पर राजेंद्र कुमार जी के साथ मैंने 3 फिल्में बनाई और हमने वो 3 फिल्में इतना अच्छा लगा उनके साथ काम करते हुए। अच्छा लगा नहीं को किसी बहुत बड़े स्टार के साथ काम कर रहा हूँ या बहुत बड़े आदमी के साथ काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा। और हर वक्त वो एक फिलोसोफर, गाइड और फ्रेंड, अच्छे दोस्त की तरह हमेशा साथ रहे मेरे।
0: साजन बिना सुहागन, साजन की सहेली और ओ बेवफा, ये फिल्में थी ना? हम ये जानना चाहते हैं कि शूटिंग के दौरान या फिर जब वो डांस करते थे या डायलॉग डिलीवरी होती थी तो उस वक्त वो कैसे होते थे, मतलब बड़े संजीदा होते थे या हंसमुख?
1: बिल्कुल संजीदा इंसान नहीं थे वो, बिल्कुल हंसमुख और कॉमेडियन कैरेक्टर थे लाइफ के अंदर।
0: अच्छा।
1: हमेशा हंसते रहना और हंसी मजाक करते रहना, मैंने कभी उनको जिंदगी में सीरियस होते देखा ही नहीं।
0: संवाद अदायकी की बात,
1: हाँ, वो एक कैरेक्टर है ना जो प्ले करते हैं फिर वो। वो जिस तरह का कैरेक्टर था, वो फिल्मों में काफी संजीदगी के रोल किए हैं उन्होंने और साजन बिना सुहागन में भी उनका बड़ा संजीदा रोल था। तो वो तो एक एक्टर की क्वालिटी है ना, उसको किस तरह से परफॉर्म करता है वो। बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। और उनके साथ एक और बात थी खास की, नूतन जी भी सुपरस्टार थी और वो भी सुपरस्टार थे, कभी दोनों ने साथ नहीं काम किया था। तो वो पहली फिल्म थी जब नूतन जी भी एक्चुअली रिटायर हो चुकी थी फिल्मों से, तो मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की थी कि आप ये फिल्म कीजिए। तो जब वो सुपरस्टार थे दोनों ने साथ काम नहीं किया, जब वो स्टार नहीं रहे थे दोनों, फिर एक पिक्चर में साथ काम किया, फिर वो पिक्चर गोल्डन जुबली हुई।
0: पहले राजेंद्र कुमार एक सदाबहार नायक रहे, फिर चरित्र अभिनेता बने, फिर 80 के दशक में बने प्रोड्यूसर और अपने बेटे कुमार गौरव को फिल्म संसार में उतारा। फिल्म थी लव स्टोरी।

मिलाकर भारतीय फिल्मों के अति भावुक ढांचे में से राजेंद्र कुमार के रूप में एक ऐसा नायक निकल कर आया था जिसने अपनी फिल्मों के जरिए हमें हंसाया और रुलाया।

0: शायद उनके साथ दर्शकों ने अपने रुमाल ज्यादा भिगोए, पर ये भी जिंदगी।
1: विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी हम रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 9:55 हुए हैं। अब प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। कल से शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र। रायपुर में कल से शुरू हुई 25वीं छत्तीसगढ़ राज्य शूटिंग मीट। और जशपुर जिले के तपकरा क्षेत्र में हाईवार कार के बीच हुई भिड़ंत में 2 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र कल 13 जुलाई से शुरू होगा। 17 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान वित्तीय कार्य के साथ अन्य शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे। इस बीच मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत की अध्यक्षता में आज रायपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे और जनभागीदारी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन में परिवर्तित करने का आह्वान करेंगे। इस कार्यक्रम में देश के लगभग सभी राज्यों से ऐसे वृक्ष मित्र पहुंचेंगे जिन्होंने वृक्षारोपण, जल संरक्षण और पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। केंद्रीय मंत्री वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी आज रायपुर में मानसून के दौरान प्रमुख औद्योगिक इकाइयों द्वारा संचालित और प्रस्तावित वृक्षारोपण गतिविधियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान वृक्षारोपण कार्यक्रमों की प्रगति, उनके क्रियान्वयन, पौधों के संरक्षण और रखरखाव के साथ ही निगरानी व्यवस्था तथा उद्योगवार एक्शन प्लान की समीक्षा की जाएगी। राजधानी रायपुर के माना कैंप स्थित शूटिंग रेंज में कल 25वीं छत्तीसगढ़ राज्य शूटिंग मीट का शुभारंभ किया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश राइफल एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेश भर के निशानेबाज हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला शामिल हुए। विशिष्ट अतिथि के रूप में विंग कमांडर विवेक कुमार साहू शामिल हुए। इस राज्य शूटिंग मीट में पुरुष और महिला वर्ग के साथ अलग अलग आयु समूहों में मुकाबले आयोजित किए जा रहे हैं। जशपुर में तपकरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत उड़ीसा कुनकुरी मार्ग में लवाकेरा के पास शनिवार को एक तेज रफ्तार हाईवा और कार के बीच आमने सामने से भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मौसम विभाग ने आज प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम बिहार और उसके आसपास के क्षेत्रों में ऊपरी हवा का एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके असर से अगले 4 दिनों तक उत्तर छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने 13 जुलाई से पूरे प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में वृद्धि होने की संभावना जताई है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग और प्लाटून कमांडर की भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा आज सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए रायपुर जिले में 22 केंद्र बनाए गए हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में भिलाई नगर के बीच स्थित खुर्सीपार

0: रेलवे संपार फाटक पर मरम्मत कार्य किया जाएगा। इसके चलते 14 जुलाई की सुबह 8 बजे से 24 जुलाई की रात 8 बजे तक इस फाटक पर सड़क यातायात पूरी तरह बंद रहेगा। राज्य शासन ने नगरीय प्रशासन और विकास विभाग में 122 अधिकारियों कर्मचारियों की नई पदस्थापना की है। इनमें 66 अभियंता और 56 विभिन्न पदों पर कार्यरत कर्मचारी शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कल से शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र। रायपुर में कल से शुरू हुई 25वीं छत्तीसगढ़ राज्य शूटिंग मीट और जशपुर जिले के तपकरा क्षेत्र में हाईवा और कार के बीच हुई भिड़ंत में 2 लोगों की मौत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप 11:55 पर सुन सकते हैं। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से अभी हम रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 10 बजे हैं। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम आओ बच्चों। प्रस्तुति है गीता की।

बच्चों जय हिंद। आप सभी नन्हे मुन्ने बच्चों को गीता दीदी का ढेर सारा प्यार और दुलार। बच्चों, सफलता और विफलता जिंदगी की दो पहलू हैं। जिंदगी हमें बेहतर इंसान बनने के कई मौके देती है। बच्चों, देखा जाए तो समस्याएं आपकी तरक्की के मार्ग की रुकावट नहीं है, बल्कि पहली सीढ़ी है। जीवन में ऐसे अनेक क्षण आते हैं जब परिस्थितियाँ कठिन लगती हैं, कभी असफलता निराश करती हैं तो कभी चुनौतियाँ और हमारा आत्मविश्वास डगमगा देती हैं। लेकिन बच्चों, इन्हीं कठिन पलों में एक शक्ति हमें आगे बढ़ने का साहस देती है, वह शक्ति है आशा। आशा केवल एक भावना नहीं है, बल्कि जीवन जीने की प्रेरणा है। यह विश्वास दिलाती है कि हर अंधेरी रात के बाद नया सवेरा अवश्य आता है, हर कठिनाई का समाधान होता है और हर प्रयास एक नई संभावना को जन्म देता है। बच्चों, इसी सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और बेहतर भविष्य के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि आशा ही वह दीपक है जो निराशा के अंधकार को दूर कर जीवन को नई दिशा देता है। बच्चों, आशा हमें सिखाती है कि चाहे परीक्षा कठिन हो, खेल में हार मिले या कोई सपना पूरा ना हो, हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। तो चलिए मैं आपको छोटा सा कहानी सुनाती हूँ। बच्चों, एक छोटे से गांव में आरा नाम का एक बच्चा रहता था। उसे चित्रकारी का बहुत शौक था। एक प्रतियोगिता में उसने भाग लिया, लेकिन उसे कोई पुरस्कार नहीं मिला। वह बहुत निराश हो गया। उसकी दादी ने कहा, बेटा, हार अंत नहीं होती, अगर मन में आशा है तो सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। बच्चों, जैसे आपने कभी मकड़ी को जाल बनाते देखा होगा ना, वह जो बार बार प्रयास करती है और अंत में वो अपने लिए जाल जरूर बना लेती है और सफल हो जाती है। तो उसी तरह आरा ने फिर मेहनत शुरू किया और रोज अभ्यास किया और अगले वर्ष उसी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि आशा और मेहनत सफलता का रास्ता बताते हैं। तो बच्चों, बताइए, क्या आपने कभी कठिन कार्य को पूरा किया है? और क्या कभी आपको लगा कि आप नहीं कर पाएंगे और बाद में आप सफल हो गए? तब आपको कितना सुकून मिला होगा, है ना? तो याद रखिए बच्चों, हर छोटी सफलता की शुरुआत आशा से होती है। अगर आपके मित्र उदास हो तो उन्हें हिम्मत दीजिए। अगर कोई पढ़ाई में कमजोर हो तो उसकी मदद कीजिए। अगर कोई हार जाए तो उसका मजाक मत उड़ाइए, बल्कि कहिए, कोई बात नहीं, अगली बार तुम जरूर सफल होगे। और यही सच्ची आशा है और यही मानवता भी है। अगर आप में से किसी को साथ ऐसा कोई घटना घटी हो जिसमें आपको अंत में सफलता हासिल हुई हो, तो आप हमें पत्र के माध्यम से जरूर सूचित कीजिएगा, ताकि हम सभी को एक हिम्मत मिले। क्यों बच्चों, मैंने सही कहा ना? तो आइए बच्चों, इसी आशा और उत्साह और मुस्कान के साथ जुड़ते हैं बच्चों की सुंदर प्रस्तुति में और सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम। और आज हमारे साथ हैं राजेंद्र कुमार सिंह, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अकलतरा जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ के बच्चे।

0: और भाग लेने वाले हमारे जो कलाकार हैं, किरण निर्मलकर, अदिति रात्रे, सोनाली, अंकित नोरगी, सुखनंदन बरेट, विद्यासागर, स्वाति निर्मलकर, श्रद्धा तिवारी, हेमा श्रीवास, उदय नारायण मेहती और साथ में शिक्षिका वर्षा यादव। अपने हर कार्यक्रम में अपने नए नए दोस्तों से बातें करते हो, है ना, और उनकी कला से आप अवगत भी होते हो। और सच बताऊं, मुझे भी आपके साथ बचपन को जी लेने का मन कर रहा है। तो चलिए, आज आपकी गीता दीदी कम हमारा आज आप सभी दोस्त बन जाते हैं, मजा आएगा ना। तो अब चलिए चलते हैं, उन नए नए दोस्तों से बातें करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो इसके लिए कहाँ चलना पड़ेगा, स्टूडियो में। तो चलिए स्टूडियो में चलते हैं और सबसे जानते हैं कि सबका नाम क्या है और वो क्या पसंद करते हैं। बच्चों बोलो जय हिंद।
1: जय हिंद।
0: बच्चों आज हमारे साथ हैं नन्हे मुन्ने प्रतिभाशाली बच्चे, जो अपनी मधुर आवाज, सुंदर कविताओं, रोचक पहेलियों और चुटकुलों और गीतों से इस महफिल को रंगीन बनाने आए हैं। तो आइए सबसे पहले हम इन बच्चों का जोरदार स्वागत करते हैं और सभी अपना परिचय देंगे।
2: हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनाली टंडन, मैं राजेंद्र कुमार सिंह उच्चतर माध्यमिक शाला अकलतरा की छात्र हूँ।
3: हेलो दोस्तों, मेरा नाम अदिति रात्रे है, मैं राजेंद्र कुमार सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अकलतरा की छात्र हूँ।
4: हेलो दोस्तों, मेरा नाम हेमा श्रीवास है और मैं राजेंद्र कुमार सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अकलतरा की छात्र हूँ।
5: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उदय नारायण मायती है और मैं राजेंद्र कुमार सिंह उच्चतर माध्यमिक शाला अकलतरा का छात्र हूँ।
6: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित नोरगे है, मैं राजेंद्र कुमार सिंह उच्चतर माध्यमिक शाला अकलतरा जांजगीर चांपा का छात्र हूँ।
7: हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुखनंदन बरेट है, मैं राजेंद्र कुमार सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अकलतरा जांजगीर चांपा का छात्र हूँ।
0: तो बच्चों आज ये सभी नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे साथ स्टूडियो में हैं और आप सभी को नई नई कहानी, कविताएं, रोचक पहेलियां और रोचक गीत सुनाने वाले हैं, है ना मजेदार। तो बच्चों सबसे पहले शुरुआत करते हैं सोनाली टंडन से, और सोनाली हमें विद्यार्थी जीवन में अनुशासन के बारे में बताने जा रही है। और बच्चों वैसे भी अनुशासन हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है, तो सोनाली टंडन अपने विद्यार्थी जीवन में अनुशासन के बारे में बताने जा रही हैं।
2: हेलो दोस्तों, मैं आपसे विद्यार्थी जीवन में अनुशासन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। विद्यार्थी जीवन को जीवन की नींव कहा जाता है। इस समय यदि विद्यार्थी अनुशासन का पालन करे तो वह आगे चलकर सफल और अच्छा इंसान बन सकता है। अनुशासन का अर्थ है नियमों का पालन करना और समय का सही उपयोग करना, विद्यालय में समय से पहुंचना, प्रार्थना करना, ध्यान से पढ़ाई करना, शिक्षकों का आदर करना और गृह कार्य को समय से पूरा करना, ये अनुशासन के उदाहरण है। दोस्तों, अनुशासित विद्यार्थी मेहनती और ईमानदार होता है। वह न केवल पढ़ाई में आगे बढ़ता है बल्कि जीवन में भी अच्छे संस्कारों वाला इंसान बनता है। अनुशासन के बिना आलस्य और असफलता आती है दोस्तों, इसलिए विद्यार्थी जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी है। अनुशासन अपनाने वाले विद्यार्थी जीवन में अवश्य ही सफलता प्राप्त करता है। धन्यवाद।
0: तो देखा बच्चों, आज हमें सोनाली ने कैसे हमें अनुशासन पे रहना सिखा रही है, और हम अगर अनुशासन से रहेंगे तो सफलता जरूर हमारी कदम चूमेगी। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और हम सुनेंगे अदिति रात्रे को। तो अदिति जी, आप क्या सुनाने जा रही हैं?
3: बालिका शिक्षा के बारे में। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी के साथ बालिका शिक्षा के बारे में कुछ बातें करना चाहूंगी, जिसकी शुरुआत मैं एक प्यारी सी कविता के साथ करना चाहूंगी। दीप्ति पुंज सा दम को ऐसे, दीप्ति पुंज सा दम को ऐसे, जीवन को आलोकित कर दो, साहस की किरणें चमकाकर तुम तम का पथ अवरोधन कर दो। कंगन पायल की तोड़ो बेड़िया, खुले विचारों की चुनरी ओढ़ो, सजाओ कलम अपनी उंगलियों पर, न्याय के लिए लड़ना सीखो। ना समझो खुद को अब कमजोर, बुलंद जुबा को करना सीखो, तुम अपने दम पर करो चढ़ाई, ध्वज शिखर पर लहराना सीखो। ना बनो दीप जो डरे हवा से, सूरज की तरह दमकना सीखो, और जिसके कर्मों की देवक्त गवाही, ऐसे कर्मों को करना सीखो। दोस्तों, मैं आप सभी के साथ बालिका शिक्षा के बारे में बोलना चाहूंगी कि जब एक बालिका शिक्षित होती है तो वह अपने साथ अपने परिवार को भी शिक्षित करती है। और आज हम चाहे देश की सीमा की तरफ देखे, या खेल की तरफ देखे, या पढ़ाई की तरफ देखे, हर जगह लड़कियां हमारी देश का नाम रोशन कर रहे हैं, और उन्हें बस एक मौके की जरूरत है अपनी काबिलियत दिखाने की। वो अगर उनको वो मौका मिल जाए तो वो हमारे देश का नाम अच्छे तरीके से रोशन करेंगे, जैसा वो कर रहे हैं, जिससे हमारा देश और भी गौरवान्वित होगा। थैंक यू, धन्यवाद।
0: तो देखा बच्चों, हमें अदिति रात्रे ने कितनी अच्छी जानकारियां दी हैं।

0: लड़के और लड़कियां दोनों समान हैं और दोनों को शिक्षा का समान अधिकार है। तो बच्चों अब चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों उदय नारायण मैती आज हमें कविता सुनाने जा रहा है और कविता का शीर्षक क्या है उदय नारायण?
1: सपने।
0: सपने तो सपने तो हम सभी देखते हैं, लेकिन आज उदय नारायण बताएगा कि सपने देखने और उसे साकार करने में हमें क्या करना होता है।
1: सबकी आंखों में है सपने, कुछ पूरे तो कुछ अधूरे। सपनों की दुनिया में खोए हम नन्हे बच्चे सारे। कुछ खोएंगे कुछ हासिल करेंगे, मुसीबतों से हम ना डरेंगे। कांटों की राह पर भी चलकर हम सपनों को पूरा करेंगे। नदियों को पार कर, पहाड़ों पर चढ़कर, ऊंचाइयों से भी ऊंचे सोच लेकर, दिखा देंगे हम कठिनाइयों से जीत कर। आंखों में होंगे खुशी के आंसू, ऊंचे रहेंगे सदा सर अपने। अब ना रहेंगे अधूरे, पूरे होंगे सारे सपने।
0: तो बच्चों सपने हम सभी देखते हैं, लेकिन उन्हें साकार करने के लिए हमें हिम्मत और आत्मविश्वास की जरूरत होती है ना?
2: जी दीदी। दी, दी, दी।
0: तो चलो अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और कहानी कौन सुनाएगा?
3: मैं दीदी। मैं
0: नहीं, मैं तो देख रही हूँ दूर से, अंकित बड़ा मुस्कुरा रहा है और कुछ अच्छी रोचक कहानियाँ लेकर आया है बच्चों के लिए। क्यों अंकित, सही बोल रही हूँ ना?
1: जी दीदी।
0: तो चलो भाई अंकित अब कहानी सुनाओ।
4: हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है मेंढकों की दौड़। और ये कहानी हमारे छत्तीसगढ़ के मेंढकों के लिए है। हमारे छत्तीसगढ़ के सारे जानवर बहुत सी गतिविधियां करते थे, परंतु मेंढकों में कोई गतिविधियां नहीं थी। तब मेंढकों ने ये फैसला किया कि उन लोग भी कुछ ऐसा करेंगे जिससे छत्तीसगढ़ के सभी जंगलों में मेंढकों का नाम भी ऊंचा हो। तब मेंढकों ने एक मीटिंग रखी, जिस मीटिंग में नदी, तालाब, नाले और कुओं से बहुत सारे मेंढक आए थे। सभी मेंढकों ने मीटिंग में ये बात फिक्स की कि वो एक लंबी दौड़ करेंगे जिस दौड़ में मेंढक शामिल होंगे और उस दौड़ के माध्यम से जंगल में मेंढकों का भी नाम होगा। उस मीटिंग में ये डिस्कस हुआ कि उस रेस में 100 मेंढक दौड़ेंगे। अब मेंढकों ने दौड़ करने का तो फैसला कर लिया था, परंतु दौड़ने के लिए उन्हें चाहिए थे जूते और उन्होंने जूते लेने के लिए चले गए बिलासपुर। बिलासपुर के मॉल में उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे रंगीन और बहुत से महंगे जूते लिए। जैसे ही रेस का दिन आया, सारे मेंढक रेस ट्रैक पर पहुंच गए। रेस हमारी होनी थी अकलतरा से दलहा पहाड़ के चोटी तक। जब रेस शुरू हुई, तब रेस के शुरुआत में सभी जानवरों ने मेंढकों को बहुत कुछ बोला, कुछ बुरी बातें और कुछ ऐसी जिनसे उनका हिम्मत टूट जाए। और सिर्फ उन बातों को सुनकर बहुत से मेंढकों ने वहीं बस अपना रेस में दौड़ने का फैसला छोड़ दिया। और उन बातों से हिम्मत हार कर 40 मेंढकों ने वहीं बस रेस में दौड़ने का फैसला छोड़ दिया। और रेस में दौड़ने वाले बच गए थे केवल 60 मेंढक। और जब वो मेंढक रेस में दौड़ रहे थे, तब वो दौड़ते दौड़ते थक गए, कई कमजोर थे, और इसी वजह से 20 मेंढकों ने फिर से रेस छोड़ दिया। अब रेस में दौड़ने वाले बचे थे केवल 40 मेंढक। जब 40 मेंढक दौड़ रहे थे, तब भी बहुत से जानवर उन्हें देख रहे थे और उनके बारे में बुरी बातें कर रहे थे, और उन बातों से प्रभावित होकर फिर से 25 मेंढकों ने दौड़ना छोड़ दिया। और इनके बाद जब मेंढक सारे दौड़ रहे थे, एक मेंढक के साथ एक हादसा हुआ जिससे उस मेंढक का पैर टूट गया। और उस हादसे को देखकर फिर से बहुत से मेंढक ना हिम्मत हार गए और उन्होंने रेस वहीं पर छोड़ दी। अंत में दौड़ने वाले मेंढक केवल 5 मेंढक बचे थे और उन मेंढकों ने दौड़कर रेस खत्म तो की, परंतु उन 5 मेंढक में से एक मेंढक ऐसा था जो बहुत ज्यादा थक गया था और चारों मेंढक के बाद बहुत देरी से आया। उससे समय तो बहुत लगा, लेकिन उसने सारे कठिनाइयों के बाद भी अपना रेस खत्म किया। और जब रेस खत्म हुई और जो मेंढक पहला आया, उसे बहुत सारे रिपोर्टर्स ने घेर लिया था कि सर सर, और सारे रिपोर्टर्स उससे बोल रहे थे कि सर बोलिए, सर कुछ तो बोलिए, पर वो मेंढक थका हुआ था, वो केवल हाफ रहा था और वो सिर्फ हाँफे जा रहा था। रिपोर्टर्स बोल रहे थे सर कुछ तो बोलिए, और पीछे से एक मेंढक चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि हटो हटो, वो मेरा भाई है, मेरे को आने दो, मैं बताऊंगा उसके बारे में, पर कोई भी रिपोर्टर उसको जाने ना दे रहे थे। जब रिपोर्टर थक गए पूछ पूछ कर और वो मेंढक कुछ ना बोला, तब उसका भाई आकर बोला कि अरे मेरा भाई तो गूंगा है। एक मेंढक के बारे में बात की जो मेंढक बिना हार माने रेस को थक कर भी खत्म किया, और हमें भी उस मेंढक की तरह बनना चाहिए। और हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों की बातों में आकर पीछे नहीं हटना चाहिए, और जो लक्ष्य हमने बनाया है हमें उस लक्ष्य को पूरा करना चाहिए। धन्यवाद।
0: देखा बच्चों, अंकित ने बड़ी ही रोचक और मजेदार कहानियां सुनाई हैं, और मेंढक के जूते और दलहा पहाड़ में चढ़कर अपने परचम लहराना, और इसे ये सीख मिल रही है कि हमें दूसरों की बातों पे नहीं आना चाहिए। तो बच्चों आप भी अपने आसपास की कोई भी ऐसी बातों पे ना आए जिससे आपको दुख पहुंचता हो। आप अपने खुद पे विश्वास रखिए और आगे बढ़िए। तो चलिए बच्चों अब कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं सुखनंदन बरेट को। तो सुखनंदन क्या सुनाने जा रहा है?
5: समय का सदुपयोग।
0: हमें समय का सदुपयोग बताने जा रहे हैं। और समय हमारे लिए

0: कितना महत्वपूर्ण होता है, कैसे हम उसका उपयोग करें, आइए सुनते हैं सुखनंदन बरेड को।
1: मानव जीवन में अगर कोई चीज कीमती है तो वो है समय। समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है और न ही यह वापस आता है, इसलिए हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। जो लोग अपने समय का सही उपयोग करते हैं वही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। हमें अपने समय का हर हाल में सदुपयोग करना चाहिए। हमें अपना समय ऐसे कार्य में लगाना चाहिए जिससे हमारा व्यक्तित्व बेहतर बन सके। समय एक अमूल्य संपत्ति है। हम खर्च किया हुआ पैसा वापस कमा सकते हैं, किंतु खर्च किया हुआ समय वापस नहीं ला सकते। अतः अपने समय को सोच समझ कर अच्छे कार्य में लगाना चाहिए। समय को बर्बाद किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए। समय का सदुपयोग का अर्थ है समय को व्यर्थ न गवाना, बल्कि उसे उपयोगी कार्यों में लगाना। पढ़ाई, खेल, परिवार और अन्य जरूरी कामों के लिए समय निर्धारित करना चाहिए। समय का सही प्रबंधन हमें तनाव से बचाता है और शरीर व मन को स्वस्थ रखता है। यदि हम समय की कद्र करें और उसका सदुपयोग करें तो हम अपने लक्ष्य को आसानी से पा सकते हैं। इसके विपरीत समय को व्यर्थ करने से जीवन में पछतावा होता है। अतः हमें हमेशा समय का सम्मान करना चाहिए और उसका बुद्धिमानी से उपयोग करना सीखना चाहिए। इस प्रकार समय का सदुपयोग हमारे जीवन को सफल और सुखी बनाता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए समय की कीमत को समझकर उसे बुद्धिमानी से खर्च करें। धन्यवाद।
0: देखा बच्चों, समय इतना बलवान होता है। समय की कीमत केवल घड़ी की सुइयों से नहीं आंकी जाती, बल्कि उसे किए गए सार्थक कार्यों से तय होती है। हर बीतता हुआ क्षण हमें एक नया अवसर देता है कुछ सीखने का, कुछ बेहतर करने का। कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं हेमा श्रीवास को। और मैं बताऊं बच्चों, हेमा श्रीवास भी बड़ी मंद मंद मुस्कुरा रही है। लग रहा है कि अब उसकी बारी आ गई आप सभी से बातें करने का। हेमा श्रीवास, क्या बताने जा रही हो?
2: मैं राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में बताना चाहती हूँ।
0: तो राष्ट्रीय सेवा योजना क्या है, क्या करना चाहिए और कैसे हम उसमें भाग ले सकते हैं, और सुनते हैं हेमा श्रीवास।
2: हेलो दोस्तों, तो मैं अभी आपको बताऊंगी राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में। राष्ट्रीय सेवा योजना को NSS नेशनल सर्विस स्कीम कहते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की एक केंद्रीय योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि युवा छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ सामुदायिक सेवा के माध्यम से उनके व्यक्तित्व का विकास करना। NSS का आदर्श वाक्य है, मैं नहीं बल्कि आप, नॉट मी बट यू। NSS हमारे स्कूल में संचालित है। हमें 7 दिन का विशेष आवासीय शिविर में भाग लेना जरूरी होता है। NSS राष्ट्रीय सेवा योजना में मुझे बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे समाज सेवा का महत्व समझ में आया है। मैंने स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, जागरूकता रैली और सामाजिक कार्यों में भाग लिया है। इन गतिविधियों से लोगों की सहायता करने का अवसर मिला और समाज के प्रति मेरी जिम्मेदारी की भावना बढ़ी। NSS ने मुझे अनुशासन, नेतृत्व, टीम वर्क करना और आत्मविश्वास का महत्व सिखाया। इस अनुभव ने मुझे एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनने की प्रेरणा दी। मेरे लिए NSS का अनुभव जीवन का एक यादगार और प्रेरणादायक अनुभव रहा। धन्यवाद।
0: तो बच्चों, सुना आपने NSS क्या होता है? वैसे हम बता दें कि एक स्वयं सेवक की पहचान केवल इसके कार्यों से नहीं होती, बल्कि उसकी समय निष्ठा से भी होती है। तो बच्चों, जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है वही समाज का विश्वास जीतता है और राष्ट्र निर्माण में सार्थक योगदान देता है। बच्चों, अब आइए सुनते हैं किरण निलमरकर को, जो अपना अनुभव हम सभी से साझा करना चाह रही है।
3: हेलो दोस्तों, मेरा नाम किरण निलमरकर है। मैं राजेंद्र कुमार सिंह उच्चतर माध्यमिक शाला अकलतरा की राष्ट्रीय सेवा योजना की छात्रा हूँ। आज है संडे और संडे हम बच्चों के लिए मनोरंजन और छुट्टी का दिन होता है। आज मैं आप सभी के सामने माय भारत के द्वारा आयोजित विकसित भारत यंग डायलॉग 2026 के अपने अनुभव को साझा करने जा रही हूँ। माय भारत द्वारा विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2026 के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए सभी युवाओं का माय भारत पोर्टल में रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। जब मैंने इस पर रजिस्ट्रेशन किया तो मुझे वहाँ एक क्विज कॉम्पिटिशन मिला और मैंने उस ऑनलाइन क्विज कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, जहाँ मुझे कई तरह के क्वेश्चन पूछे गए। उस उसके उस समय पश्चात मुझे माय भारत से मैसेज आया कि मेरा चयन अगले चरण के लिए हो गया, जो कि एक ऑनलाइन ऐसे कंपटीशन था जिसमें हमें 10 टॉप

0: पिक दिए गए थे जो कि भारत को विकसित बनाने से संबंधित थे, जिनमें से किसी एक टॉपिक को सेलेक्ट करके उस पर अपने विचार और अपने आइडियाज को लिखने थे, जिसमें से मैंने बिल्डिंग अ सस्टेनेबल एंड ग्रीन विकसित भारत का टॉपिक सेलेक्ट किया और उस पर अपने एसे लिखकर उसे ऑनलाइन सबमिट किया। उसके कुछ समय बाद मुझे पुनः माय भारत से मैसेज आया कि मेरा चयन, मेरा एसे सेलेक्ट हो गया है और अब मुझे साक्षात्कार के लिए रायपुर जाना है, जहाँ मेरा पीपीटी प्रेजेंटेशन रायपुर खेल युवा कल्याण मंत्रालय में हुआ। उसके पश्चात मेरा चयन जो है विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2026 में सबसे कम उम्र की छात्रा के रूप में हुआ। यह जो कार्यक्रम था माय भारत द्वारा भारत मंडपम न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था, जहां मैंने अपने आइडियाज को रखे तथा वहां मुझे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सर, माननीय अजीत डोवल सर, माननीय मनसुख मांडविया सर जैसे महान अनुभवों को सुनने का मौका मिला। माय भारत का यह जो कार्यक्रम है वो हम जैसे छात्र छात्राओं को अपने आइडियाज को प्रस्तुत करने के लिए एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करता है। तो कैसा लगा दोस्तों मेरा अनुभव? जय हिंद।
1: अंतिम में अब हम सुनते हैं श्रद्धा तिवारी को और वो अपने विचार हम सभी से साझा करने के लिए बहुत उत्सुक है और मुझे उनको देख के लग रहा है वो ये सोच रही है कि अब मेरी पारी है और मैं बात करूंगी आप सभी से। तो श्रद्धा तिवारी क्या बताने वाली है?
2: हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आज रविवार है, आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल से होंगे। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले हमने हमारी छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी विरासत हमारी नानी डॉक्टर तीजन बाई को खो दिया। मैं आप सभी को उनकी जीवनी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। दुनिया की सबसे चर्चित कथाओं में से एक महाभारत की कथा को पूरे वेग और संप्रेषणीयता के साथ मंच पर उतारने वाली तीजन बाई पंडवानी गायिका के रूप में पूरी दुनिया में जानी जाती है। तीजन बाई का जन्म 8 अगस्त 1956 में ग्राम पटारी जिला दुर्ग में हुआ। उनकी मृत्यु 5 जुलाई 2026 70 वर्ष की आयु में हुई। इनकी माता श्रीमती सुखबती व पिता श्री झुनुकलाल पारधी ने इनका लालन पालन ग्राम गनिहारी में किया। पंडवानी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने का श्रेय तीजन बाई को जाता है। दोस्तों, तीजन बाई को पंडवानी गायन का शौक बचपन से ही था। तीजन बाई ने पहला कार्यक्रम 13 वर्ष की आयु में ग्राम चंदखुरी दुर्ग में दिया। तत्पश्चात इन्हें आदिवासी लोक कला परिषद भोपाल के द्वारा भारत भवन भोपाल में कार्यक्रम देने का अवसर मिला। तीजन बाई ने नृत्य, अभिनय और लोक तत्व के बहुरंगी मिश्रण से पंडवानी को इतना प्रभावशाली और लोकप्रिय बनाया है कि भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में ही पहचानी जाती है। दोस्तों, तीजन बाई कपालिक शैली की गायिका है। इस शैली में गाने वाला कभी खड़े होकर तो कभी घुटनों का सहारा लेकर गाता है। तंबूरे का बजाया जाना पंडवानी का अभिन्न अंग है। दोस्तों, तीजन बाई को भारत सरकार ने 1988 में पद्म श्री सम्मान प्रदान किया। उन्हें 3 अप्रैल 2003 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर श्री अब्दुल कलाम द्वारा पद्म भूषण संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली से सम्मान, 1994 में श्रेष्ठ कला आचार्य, 1996 में संगीत नाट्य अकादमी सम्मान, 1998 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा देवी अहिल्याबाई सम्मान, 1999 में किशोरी सम्मान प्रदान किया गया। दोस्तों, तीजन बाई ने पंडवानी को भारत ही नहीं अपितु फ्रांस, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी में भी प्रस्तुत किया है। दोस्तों, आज पद्मश्री डॉक्टर तीजन बाई हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी अद्भुत कला से, सशक्त स्वर और समर्पण से भारतीय लोक संस्कृति को विश्व भर में नई पहचान दिलाई। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा। हमें उन्हें हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ।
3: मेरा नाम वर्षा यादव है और मैं राजेंद्र कुमार सिंह उच्चतर माध्यमिक शाला अकलतरा में शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ। राष्ट्रीय सेवा योजना महिला इकाई की कार्यक्रम अधिकारी भी हूँ। हमारा यह विद्यालय अकलतरा एजुकेशन ट्रस्ट के अंतर्गत कार्य करता है और यह विद्यालय सन 1954 से स्थापित है।

0: प्रयास किया जाता है हमारे विद्यालय में कि हम बच्चों का, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास कर सकें। और इसी क्रम में हमारे विद्यालय में बहुत सारी इकाइयां भी कार्यरत हैं, जिसमें राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर और स्काउट एंड गाइड यह भी संचालित है। रेड क्रॉस भी हमारे विद्यालय में है। राजेंद्र कुमार सिंह उच्चतर माध्यमिक शाला अपने समय से ही, पुराने समय से ही लाइट हाउस की तरह कार्य करता है, जहाँ पर आसपास के गाँव के बच्चे बहुत पुराने समय से ही वहाँ पर अपना अध्यापन कार्य किए हैं और आज के समय में बाहर विदेशों में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे विद्यालय के लिए। राष्ट्रीय सेवा योजना में हम बच्चों को सिखाते हैं कि बच्चे समाज के साथ किस तरह से जुड़ सकते हैं और उनकी ऊर्जा का सदुपयोग हम समाज के लिए किस तरह से कर सकते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना में स्वयंसेवक बहुत सारी चीजें सीखते हैं और साथ ही न केवल सीखते हैं बल्कि समाज को जागरूक करने का भी कार्य करते हैं विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से। हमारे विद्यालय में 4 संकाय चल रही हैं, जिसमें कला संकाय और वाणिज्य संकाय, गणित और जीव विज्ञान, सभी प्रकार की शिक्षाएं हमारे विद्यालय में उपलब्ध है। पूरी तरह से हमारा विद्यालय अकलतरा एजुकेशन ट्रस्ट और राजेंद्र कुमार सिंह उच्चतर माध्यमिक शाला अकलतरा क्षेत्र के बच्चों के शिक्षा के लिए, उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है और 1954 से लेकर के अब तक के आज तक के वो कार्य निर्बाध लगातार निरंतर चल रहा है। और एक और बड़ी अच्छी बात आपको बताना चाहूंगी मेरे विद्यालय की कि हमारे विद्यालय में एक पत्रिका छपती है जिसको हम कहते हैं सलीला, और यह सलीला शुरुआत से लेकर के आज भी इसका निरंतर संपादन चल रहा है। और सलीला में हमारे जो बच्चे, जो नन्हे मुन्ने जो बच्चे होते हैं, जो अपनी कविता कहानी, जो भी प्रेरणात्मक कहानियां वगैरह जो होता है, उसको सलीला में हम छापते हैं, जिससे बच्चों के अंदर पुस्तक लिखने की कला का विकास होता है, पढ़ने की कला का भी विकास होता है। हमारे विद्यालय में एक बड़ी अच्छी उन्नत लाइब्रेरी है जिसका उपयोग बच्चे करते हैं और पढ़ने के लिए भी प्रेरित भी होते हैं अच्छी अच्छी पुस्तकें। इसके साथ ही राजेंद्र कुमार सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में रसायन शास्त्र प्रयोगशाला और भौतिक प्रयोगशाला और जीव विज्ञान की बड़ी अच्छी उन्नत प्रयोगशाला भी है, जिसका उपयोग विद्यार्थी बड़े अच्छे से करते हैं। यह बहुत पुराना और प्रतिष्ठित विद्यालय है जो अपनी गरिमा को आज भी बनाए हुए है।
1: हमारे विद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की जो इकाई है वह उत्कृष्ट स्वयंसेवक का पुरस्कार, राज्य स्तरीय पुरस्कार, उत्कृष्ट राष्ट्रीय सेवा योजना युक्त इकाई का राज्य स्तरीय पुरस्कार और श्रेष्ठ कार्यक्रम अधिकारी, तीनों का राज्य स्तरीय पुरस्कार हमारे विद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना को प्राप्त हो चुका है और हमें इस बात का गर्व है। धन्यवाद।
2: तो बच्चों, आज हमारे साथ है राजेंद्र कुमार सिंह उच्चतर माध्यमिक शाला अकलतरा, जिला जांजगीर चांपा के बच्चे, और इनकी सुंदर प्रस्तुति के लिए हम इन्हें धन्यवाद करते हैं। तो बच्चों, इन सभी बच्चों की शानदार प्रस्तुतियों का आनंद आपने लिया।
3: तो दोस्तों, आपसे मिलने और बातें करने का सफर यही समाप्त होता है। बहुत सारी रोचक और शिक्षा भरी बातों के साथ आपसे फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय।
2: तो बच्चों, बोलो जय हिंद।
4: जय हिंद।
2: बच्चों, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम राजेंद्र कुमार सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अकलतरा जांजगीर के बच्चों की प्रस्तुति थी और भाग लेने वाले कलाकार थे किरण निर्मलकर, अदिति रात्रे, सोनाली, अंकित नोरगे, सुखनंदन बरेट, विद्यासागर, स्वाति निर्मलकर, श्रद्धा तिवारी, हेमा श्रीवास, उदय नारायण मैती और साथ में शिक्षिका वर्षा यादव, और इस कार्यक्रम के संयोजक और प्रस्तुति थी मोनाली ठाकरे की। बच्चों, अब कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई।
2: तो बच्चों आप सभी मस्त रहिए, खुश रहिए। अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, तो दीजिए अनुमति गीता दीदी को। जय हिंद।

आओ बच्चों, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे FM बैंड 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। अब लीजिए पेश है नए तराने। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले हम आपको एक बार याद दिला देते हैं, आज तुहर गोठ हमर गीत की रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग का आप इंतज़ार कर रहे होंगे। आज का नंबर 310026 और STD कोड लगाइएगा 07752310026। इस नंबर पे फ़ोन लगाइए और बातें कीजिए। आइए अब गीत की शुरुआत करें। बजरंगी भाईजान फिल्म का गीत आप तक पहुंच रहा है कार्यक्रम की शुरुआत में।

0: बजरंगी भाईजान, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। जुबिन नौटियाल की आवाज़ थी, नीलेश मिश्रा ने लिखा था गीत को और प्रीतम का संगीत था।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
0: और अब कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गाना। फिल्म का नाम है हेट स्टोरी 2। के की आवाज़, तनवीर गाजी ने लिखा है और राशिद खान का संगीत।

अब महिला सभा हेतु सूचना सुनिए। श्रोताओं, कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण हर महीने के दूसरे मंगलवार को होता है। इस माह इसका प्रसारण 14 जुलाई 2026 मंगलवार को शाम 5:35 से किया जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग 13 जुलाई सोमवार को दोपहर 3 बजे से 3:30 के बीच की जाएगी। आप हमें फोन करके डॉक्टर से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे कार्यक्रम की विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर सृष्टि चतुर्वेदी गुप्ता। आपसे चर्चा का विषय होगा मानसून में महिलाओं की सेहत, संक्रमण से सुरक्षा। आप हमें फोन कर सकते हैं इन

स्वास्थ्य वार्ता फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण हर महीने के दूसरे मंगलवार को होता है। इस माह इसका प्रसारण 14 जुलाई 2026 मंगलवार को शाम 5:35 से किया जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग 13 जुलाई सोमवार को दोपहर 3 बजे से 3:30 के बीच की जाएगी। आप हमें फोन करके डॉक्टर से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे कार्यक्रम की विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर सृष्टि चतुर्वेदी गुप्ता। आपसे चर्चा का विषय होगा मानसून में महिलाओं की सेहत, संक्रमण से सुरक्षा। आप हमें फोन कर सकते हैं इन नंबरों पर 2665 92 और 3100026 266592 और 310026। STD कोड जरूर लगाइएगा, नंबर से पहले 07720775 2। आपके फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। एक बार फिर आपको याद दिला देते हैं, तुहर गोठ हमर गीत कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के लिए नंबर एक बार नोट कर लें, 310026 310026 और STD कोड 07720775 2।

आइए अब कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, जिसमें गीत संगीत और आवाज अनुपम रॉय की है। फिल्म का नाम है पीकू।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, 22 को की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज
4: और सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
3: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।
5: और अगले गीत से पहले आइए सुनते हैं ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर उमा शंकर पांडे जी से।
6: नमस्कार, प्रस्तुत है आकाशवाणी बिलासपुर की दैनिक प्रस्तुति ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर, मैं हूं उमा शंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर शहर में आज प्रतियोगी परीक्षा का महाकुंभ होने जा रहा है। लोक सेवा आयोग रायपुर के द्वारा सूबेदार, उपनिरीक्षक, प्लाटून कमांडर की प्रारंभिक परीक्षा शहर के 37 परीक्षा केंद्रों में प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा में कुल 13,716 परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं। सभी प्रतिभागियों को बिलासपुर पुलिस की शुभकामनाएं। साथ ही सभी परीक्षार्थियों से अपील है, ये वर्षा ऋतु है इसलिए कभी भी कहीं भी वर्षा हो सकती है जिससे कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित होता है। इसके अलावा इस समय शहर की प्रायः सभी सड़कों में यातायात की अधिकता है। इस कारण भी कभी कभी एकाएक किसी भी कारण से आवागमन की गति बहुत कम हो जाती है अथवा कुछ देर के लिए यातायात रुक भी जाता है।

0: इसलिए अपने घरों से कुछ जल्दी परीक्षा के लिए निकलिए, ताकि परीक्षा में विलंब से पहुंचने की दुविधा ना रहे। इसी प्रकार परीक्षा की समाप्ति पर भी एक साथ विभिन्न वाहनों से एकाएक इतने लोगों के सड़कों पर आ जाने से भी सुगम यातायात प्रभावित होता है। ऐसी स्थिति में धैर्य से काम ले रहे, विभिन्न चौक चौराहों में यातायात व्यवस्था संभाल रहे, यातायात के जवानों के संकेतों का पालन करें। ध्यान रहे, आपकी थोड़ी भी लापरवाही या जल्दबाजी बड़े जाम की स्थिति निर्मित कर सकती है, तब परेशानी अधिक होगी। मित्रों, मालवाहक वाहन छोटे हों या बड़े, सभी की अपनी एक मानक आकृति होती है और इसी आकृति के अनुरूप उसकी माल परिवहन की क्षमता तय होती है। नियमानुसार इन वाहनों में क्षमता के अनुरूप ही माल परिवहन किया जाना चाहिए, किंतु तमाम वाहन वाले वाहन की आकृति में अनधिकृत रूप से छेड़छाड़ कर इसके आकार को बढ़ाकर क्षमता से अधिक माल भर कर चलते हैं। याद रखें, ऐसा करने से हानि अधिक लाभ कम होता है। ईंधन की खपत अधिक होती है, इंजन पर अधिक भार पड़ने से वाहन जल्दी खराब होता है, चालक का वाहन में पर्याप्त नियंत्रण नहीं होने से दुर्घटना की स्थिति बनती है, और मोटर व्हीकल एक्ट में यह प्रतिबंधित है, इसमें बड़े जुर्माने का प्रावधान है। अतः ऐसी गलती कभी न करें, हमेशा यातायात नियमों का पालन करें ताकि आपकी यात्रा शुभ हो।
1: ये थे ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर उमाशंकर पांडे जी से। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गाना। टू स्टेट्स फिल्म से है ये, अरिजीत सिंह और चिन्मयी श्रीप्रदा की आवाज़ें, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, शंकर महादेवन, शंकर एहसान लॉय का संगीत है। फिल्म का नाम टू स्टेट्स।

0: टू स्टेट्स फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का नए तराने कार्यक्रम अब हम यहीं समाप्त करते हैं। FM बैंड 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। दिन के 11 बजे हैं, आपसे शाम के 5 बजे तक हम रिले करेंगे विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
1: विविधा विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: विविधा के सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
1: और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। जयंत जी,
0: जी
1: विविध भारती की एक रचनात्मक पहल है सृजन भारती।
0: बिल्कुल, हमारे श्रोता अच्छी तरह जानते हैं
1: हाँ।
0: कि इसके अंतर्गत कुछ विशेष प्रस्तुतिकरण होता है।
1: हाँ, तो पिछले दिनों एक कार्यक्रम विशेष आयोजित किया गया था जिसमें सुप्रसिद्ध शायर और विविध भारती के सेवानिवृत्त केंद्र निदेशक श्री राजेश रेड्डी ने अपनी शायरी से हम सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था।
0: जी मंदाकिनी जी, और इस कार्यक्रम की अध्यक्ष थी जानी मानी कवियत्री और अभिनेत्री दीप्ति मिश्रा जी।
1: जी बिल्कुल,
0: इस कार्यक्रम में गण्यमान्यों की उपस्थिति थी जिनमें विविध भारती के सेवानिवृत्त कर्मचारी खास तौर से कमला कुंदर जी आई थी, कार्यक्रम अधिकारी कमलेश पाठक जी उपस्थित थी,
1: बिल्कुल
0: सेवानिवृत्त उद्घोषिका निम्मी मिश्रा जी उपस्थित थी।
1: जी हाँ।
0: और इस कार्यक्रम के अंतर्गत रेड्डी साहब का साक्षात्कार किया था हम सबके चहेते उद्घोषक यूनुस खान ने।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। तो विविधा में आज हम अपने श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं इस विशेष बातचीत के संपादित अंश। नमस्कार, सृजन भारती में आप सभी लोगों का विविध भारती परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि सृजन करना आमतौर पर नवीनता या नवाचार का संकेत होता है, तो विविध भारती ने सृजन भारती के जरिए नवाचार करने का संकल्प लिया है और ये संकल्प आगे चलता रहेगा। आज इसी कड़ी में सृजन भारती के माध्यम से हम जुड़ेंगे जाने माने शायर राजेश रेड्डी साहब और हमारी मुख्य अतिथि कवियत्री और अभिनेत्री दीप्ति मिश्र जी से। शायर जिंदगी की आम समस्याओं को सरलता से कह देने वाले होते हैं। रेड्डी साहब विविध भारती में केंद्र निदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं और खासतौर से मुझे खुशी है आज की इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में मुझे कुछ कहने का मौका मिल रहा है। एक शानदार शख्सियत और एक संजीदा शायर राजेश रेड्डी साहब उन शायरों में से हैं जिन्होंने गजल की नई पहचान को और मजबूत किया है। आपकी गजल को जाने माने गजल गायक जगजीत सिंह जी ने भी अपनी आवाज दी है और आपके 3 संग्रह आ चुके हैं, उड़ान, आसमान से आगे और वजूद।
2: बहुत बहुत शुक्रिया मंदाकिनी जी। ये बहुत खुशनसीबी की बात है कि रेड्डी जी अपने ही घर में लौटे हैं। विविध भारती में बहुत सारा वक्त रेड्डी जी के साथ बीता है और बहुत सारी यादें हैं। इस आयोजन का नाम हमने रखा है ये जो जिंदगी की किताब है, ये इसलिए क्योंकि ये रेड्डी जी की एक बहुत ही मशहूर गजल जिसे जगजीत जी ने गाया है। तो रेड्डी जी की गजलों की खासियत ये है कि उनकी गजलों का हर शेर बहुत वजनदार हुआ करता है और वो पूरी दुनिया में अपनी बेहतरीन गजलों के लिए जाने जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत रेड्डी जी आपका।
3: धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: आज आपसे बातचीत तो करेंगे ही, साथ में आपके अशार भी सुनेंगे, तो यहाँ बहुत सारे पुराने साथी आपके समय के भी मौजूद हैं। कैसा लग रहा है आपको विविध भारती में अपने घर में लौटते हुए?
3: नहीं, बहुत अच्छा लगता है और मैं तकरीबन 14 साल बाद लौटा हूँ।
2: क्या बात है, वनवास खत्म हुआ है।
3: रिटायरमेंट के बाद आज पहली बार दाखिल हुआ विविध भारती में।
2: वाह,
3: और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पूरा परिवार जिसके साथ मैंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा और कुछ पुराने साथी मौजूद हैं, निम्मी जी, कमलेश जी, कमला जी,

0: और यूनुस और ममता तो उस जमाने में भी खूब हमारे साथ एक्टिव रहे, पूरी टीम का जो क्रिएटिव टीम का जो हिस्सा थे बड़े, जिनके बल पर हम बहुत कुछ सोच पाए कर पाए। अब मेरा सौभाग्य था, मेरी खुशकिस्मती थी कि वो जो विविध भारती का एक मेरे अपने करियर का आखिरी दौर था, लेकिन मेरे अपने करियर का एक पीक भी था वो, कि जिसे मैं अपने अच्छी टीम के साथ और भरपूर टीम के साथ, जिन्होंने अपना 100% जो हम सोचते थे उसके साथ किया और लोगों ने पसंद किया, और विविध भारती की टीम को, विविध भारती के इस पूरे परिसर को मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आज ये फिर मौका मिला
1: क्या बात है
0: मुझे।
1: सर। किसी एक गजल से शुरू करते हैं ताकि एक महफिल जो है उसकी एक बुनियाद बन जाए।
0: तरन्नुम से पेश करता हूँ शुरू में ही।
1: इरशाद।
0: ये गजल जगजीत सिंह साहब ने मेरी कई गजलें गाईं, लेकिन ये गजल मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि ये उनके आखिरी एल्बम की पहली गजल है जो
1: वाह
0: रिकॉर्ड हुई, लेकिन रिलीज होने से पहले ही एल्बम वो इस दुनिया से चले गए। तो उनकी याद में, उनके सम्मान में मैं ये गजल पेश कर रहा हूँ। जाने कितनी उड़ान बाकी है जान।

0: वाह क्या बात है।
1: इस परिंदे में जान बाकी है, जाने कितनी उड़ान। खशिर जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन,
0: वाह वाह
1: जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन, अब तो बस आसमान
0: क्या बात है।
1: बाकी है, जाने कितनी उड़ान। और ये शेर देखें, जिंदगी का
0: इरशाद
1: क्रम,
0: इरशाद
1: इम्तिहान से गुजर के क्या देखा, इम्तिहान से गुजर के क्या देखा, एक नया इम्तिहान
0: वाह वाह वाह क्या
1: बाकी
0: बात है।
1: है, जाने कितनी उड़ान। और इस गजल का आखिरी शेर, खास शेर, हर युग का सच है लेकिन इस युग का कुछ ज्यादा सच है।
0: जी
1: सर
0: जी
1: देखें, सर कलम होंगे कल यहाँ उनके, अजय भाई, सर कलम होंगे कल यहाँ उनके, जिनके मुंह में
0: क्या बात
1: जुबान
0: है क्या बात है। वाह वाह वाह वाह वाह वाह वा,
1: शुक्रिया।
0: क्या बात है। वाह वाह वाह वाह
1: सर कलम होंगे कल यहाँ उनके, जिनके

0: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। काश कि ये जगजीत जी की आवाज में जो रिकॉर्ड हुआ ये रिलीज हो जाए तो हम सभी के लिए ये एक अनमोल चीज बन जाएगी। मुझे लगता है कि आपकी दास्तान को शुरू से शुरू करते हैं। जयपुर में वो कौन सा दौर था जब आपने लिखना शुरू किया था? दीप्ति जी कहती हैं कि जब इश्क होता है तब लोग लिखते हैं।
1: जब दिल टूटता है
2: ये सवाल दीप्ति जी ने पिछली मुलाकात में भी पूछा था,
1: था।
2: एक गोष्ठी में। मेरे साथ यह हुआ कि दिल लगा तो फिर लगता ही चला गया। मतलब ये था कि वो हम लोग एमए में साथ थे और अलग अलग पृष्ठभूमि से थे, लेकिन उनके साहस ने इस सपने को सच बनाया
0: जी
2: और अब वो मेरी अर्धांगिनी हैं। और अब मेरी जो सृजन यात्रा में उनका बड़ा योगदान है, मुझे उन्होंने घर की जिम्मेदारियों से एक तरह से मुक्त रखा है। अपना लिखना पढ़ना मैं करता रहता हूँ, तो ये उनका मुझ पर बहुत बड़ा वो है, सहयोग भी एहसान भी। तो दिल टूटने का जवाब ये है।
0: उनके लिए कुछ लिखा है सर आपने?
2: हाँ,

0: मधुर मौसम ने भेजा है अपना पैगाम,
1: क्या बात है।
0: अधरों से पत्र लिखा अधरों के नाम।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। आपने अभी ये एक जिक्र किया कि गीतों के जरिए आपने लेखन की दुनिया में प्रवेश किया था। मुझे ये पता है कि एक गीत आपका ऐसा है जो नीरज जी से बड़ी प्रशंसा उस गीत ने पाई थी। हम चाहते हैं कि उसका जिक्र यहां हो।
0: तो वो गीत मैं पढ़ रहा हूँ, ये गीत मैंने जब मैं शुरुआत में गीत लिख रहा था जयपुर में मंचों पर कवि सम्मेलन में जा रहा था, तो ये गीत मैंने उदयपुर के कवि सम्मेलन में पढ़ा था जहाँ नीरज जी उस वक्त उनकी क्या शान थी और क्या जलवा था। तो उन्होंने ये वो मुख्य कवि थे और मैं एक तरफ से शुरुआती लोगों में से था। तो ये गीत जब मैंने पढ़ा तो उन्होंने अपने गले की माला मेरे गले में डाली और एक सम्मान और एक प्यार एक आशीर्वाद मुझे दिया। तो मैं वो गीत पढ़ रहा हूँ।
1: स्वागत
0: जिंदगी की बस्ती में

0: वाह, क्या बात है, क्या बात है। विविध भारती की, आपके दौर की बात कर ली जाए, रेडियो का जो आपका सफर है आकाशवाणी का, उसमें आज मुझे एक दिलचस्प बात ये पता चली कि आपने समंदर के किनारे भी काम किया, रेगिस्तान में भी काम किया, पहाड़ों पर भी काम किया।
1: सही।
0: तो विविध भारती का जो मामला है, विविध भारती में आप लगातार कई बार रहे, और इस दौरान काफी सारी चीजें हैं जो हैं आपने शुरू की, जैसे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम है, वो आपकी देन है, सरगम के सितारे आपकी देन है, यूथ एक्सप्रेस गुलदस्ता है, और सखी सहेली सर के कार्यकाल के दौरान शुरू हुआ था। हमारे कुछ पुराने साथी मौजूद हैं, मैं उनका भी यहाँ रिकॉर्डिंग के लिए जिक्र कर लूं कि यहाँ हमारी भूतपूर्व उद्घोषिका निमी जी मौजूद हैं, और उसके अलावा गोपाल सिंह नेपाली जी की बेटी कमला कुंदर, जो कि विविध भारती में हमारी साथी थी, कमलेश पाठक जी मौजूद हैं जो प्रोड्यूसर थी, ये सारे पुराने लोग यहाँ एक साथ मौजूद

0: है और आपके साथ ये सारे काम भी कर चुके
1: बिल्कुल
0: हैं,
1: बिल्कुल,
0: तो विविध भारती से जुड़ी कुछ यादें बांटिए।
1: विविध भारती से जुड़ी तो यादें ही यादें हैं, मतलब और खूब यादें हैं। मेरा बेहतर और बेहतरीन समय आकाशवाणी में अगर कहीं गुजरा है तो या तो जयपुर और या फिर विविध भारती। ये वो चैनल है जिसे सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ, जिसको सुनते सुनते मैंने गुनगुनाना सीखा, गाना सीखा, और कभी कल्पना नहीं की थी कि उसी चैनल को जिसको मैं सुन सुन के बड़ा हो रहा हूँ, मैं कभी आऊँगा और इस चैनल में कार्यक्रम की जिम्मेदारी मेरी होगी और मैं उसको निभाऊंगा।
0: क्या
1: तो
0: बात,
1: ये
0: क्या बात।
1: सौभाग्य है मेरा, और मुझे 3 अलग अलग अवसरों पर विविध भारती में काम करने का मौका मिला, और हर बार बहुत अच्छी टीम मिली जिनकी 2 सदस्य तो अभी भी बहुत सक्रिय हैं, यूनुस और ममता। बाकी भी वो दौर जब मैं 12 में रिटायर हुआ, उससे पहले का जो दौर था बहुत क्रीम टैलेंट था विविध भारती का, अपने अपने क्षेत्र के माहिर लोग और अपना 100% देने वाले लोग। तो विविध भारती से विदा होते हुए मैं गर्व भी महसूस कर रहा था, खुशी भी महसूस कर रहा था। मुझे कहीं नहीं लगा कि मैं किस आयोजन, किस ऑर्गेनाइजेशन में इतने सामने आने, मैं बहुत शान के साथ, बहुत खुशी के साथ, संतोष के साथ यहाँ से गया हूँ।
0: वापस शायरी की दुनिया की तरफ लौटते हैं। अब मैं आपसे उस गजल की फरमाइश कर रहा हूं जिसको सुनने के लिए सब लोग यहां पर जमा हैं, जिसे पंकज उदास ने गा के बहुत मशहूर किया था।
1: वो गजल है जिसने सारी दुनिया में मेरी पहचान बनाई या मुझे पहुंचाया। आज भी मतलब मैं जाता हूं उससे पहले ये गजल वहां होती है और लोग इसके लिए कहते हैं कि वो जरूर सुनाएं। मैं पेश कर रहा हूं यूनुस
0: इरशाद इरशाद।
1: यहां।

0: बड़ा होने से डरता है। और ये शेर आज के इंसान के नाम
1: इरशाद।
0: न बस में जिंदगी इसके, न काबू मौत पर इसका,
1: वाह
0: न बस में जिंदगी इसके, न काबू मौत पर इसका, मगर इंसान फिर भी कब खुदा होने से
1: क्या बात,
0: डरता
1: क्या बात,
0: है,
1: वाह वाह वाह वाह।
0: खिलौना है। शुक्रिया। और ये गजल का आखिरी शेर, खास शेर, वो बच्चे वाला शेर जितना प्यार से सुना गया, ये भी उतना ही मेरे हिसाब से सच्चा शेर है। अमीर हो गरीब हो किसी मुल्क का इंसान हो, एक पल आता है कि वो कहता है बहुत हो गया, ऊपर वाले वापस बुला ले। लेकिन जब वो पल आता है तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है, शेर है देखें।

0: है और रिहा होने से डर।
1: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
0: अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया कहर इंसान रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का, फना होने से डरता है।
1: क्या बात है, क्या बात है। इस गजल से जुड़ी हुई एक बड़ी यादगार घटना है, उसके बारे में जरा बताइए।
0: ये गजल पंकज जी ने गाई, दुनिया में पहुंची। इसके साथ दो घटनाएं
1: अच्छा, दो है जी,
0: हैं।
1: मुझे मैंने एक सोचा था। जी,
0: एक घटना तो यह है कि जब ये पंकज जी ने गाई, उस वक्त एक सिर्फ दूरदर्शन ही था, ये प्राइवेट चैनल वगैरह तो उस जमाने में थे ही नहीं। तो एक बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम था आरोही, है
1: जी,
0: ना, उस
1: दूरदर्शन
0: वक्त।
1: का।
0: हाँ, तो उसमें ये सुगम संगीत के और एक से एक प्रोग्राम आते थे जिसमें जगजीत जी, पंकज जी, कौन कौन नहीं आया उसमें। तो ये गजल जब उन्होंने गाई तो उस वक्त स्क्रीन पे राइटर का नाम नहीं आता था या नहीं आया था उस दिन, ये जो भी है। तो ये गजल गाई, मेरा एक जयपुर का ही पुराना दोस्त था, वो अपने घर में जैसे सब लोग देख रहे थे, वो देख रहा था प्रोग्राम। तो ये जब गजल आई तो दीप्ति जी, वो उसका रिएक्शन ये होता है, वो उसने मुझे बहुत बाद में बताया जब मिला, बोले हम लोग देख रहे थे और बैठ के, फिर मैंने कहा यार ये पाकिस्तानी लोग क्या कहा के गजल कहते हैं इस तरह
1: वाह वाह, पाकिस्तानी
0: की। तो वो ये
1: लोग
0: सोच नहीं पा रहा था कि ये हिंदुस्तान का कोई शायर इस तरह की गजल कह सकता है, ये कही होगी। तो बहुत बाद में बोला। और दूसरी बात ये कि जब ये पंकज दास जी सूरत में कंसर्ट में सुनाने गए गजल, मतलब एक कंसर्ट उनका चल रहा था, मजरू सुल्तानपुरी साहब उसके चीफ गेस्ट थे, जैसे आज ये दीप्ति जी हैं, मजरू सुल्तानपुरी ऑडियंस में बैठे हुए थे। तो उन्होंने ये गजल सुनाना शुरू किया, ये गजल अपनी, जब ये शेर आया तो
1: जी,
0: मजरू साहब ने कहा कि पंकज फिर पढ़ो। तो दो तीन बार उन्होंने पढ़वाया। तो जब ये ऐसा कहा जाता है मुशायरे में या संगीत में, तो ये सुनाने वाले गाने वालों को लगता है कि कहीं कुछ गलत गा दिया मैंने, ये गलत बोल दिया, पहले तलफ़ुज़ गलत हो गया, लाइन गलत बोल दी, कुछ तो कुछ गलत हो गया, तभी मुझसे बार बार कह रहे हैं कि फिर पढ़ो। तो उन्होंने फिर पढ़ दिया, तीन बार ये शेर पढ़ा। फिर उन्होंने बताया, पंकज जी ने बताया मुझे कि जब ग्रीन रूम में आए तो मजरू साहब, तो उन्होंने कहा कि ये गजल किसकी थी जो तुम सुने। तो उन्होंने बताया कि वो उस वक्त मैं नौजवान हुआ करता था, कि बॉम्बे के एक नौजवान शायर हैं, तो उनका ये है। तो बोले मेरी तरफ से उस नौजवान शायर को मुबारकबाद दे रहे, एक नई तरह की गजल है, अलग तरह की गजल है, बहुत
1: क्या बात
0: अच्छी।
1: है, मजरू साहब की तरफ से ये बात आई। वाह वाह वाह, क्या बात है। जगजीत सिंह के साथ आपकी बहुत सारी यादें हैं।
0: नहीं, जगजीत जी का प्यार मुझे बहुत मिला, और ऐसा प्यार मिला कि वो शायद किसी शायर के नसीब में ना हो। वो जो मैं घटना आपको बता रहा हूँ, वो ये खास बात यह है, मेरे पहला संग्रह गजल का उड़ान आया, दूसरा जो आसमान से आगे किताब आनी थी, तो मैंने जगजीत जी को फोन किया कि जगजीत जी मैं चाहता हूँ कि इसका जो लोकार्पण या किताब का विमोचन जो भी कहते हैं ना, तो वो मैं आपके हाथों से करना चाहता हूँ। कुछ देर सोचा, फिर उन्होंने कहा कि अलग से प्रोग्राम या डेट वेट क्यों करते हो, नेहरू सेंटर में मेरा उनका केयर का एक सेंटर प्रोग्राम हुआ करता हर साल, कैंसर पीड़ितों के लिए वो कंसर्ट करते थे, तो मेरा वो फला दिन को वो नेहरू सेंटर प्रोग्राम है, उसी दिन आ जाओ, किताब ले आओ, फिर अपन कर लेंगे। तो ठीक है, मैंने कहा कि, और मैं किताब लेके चला गया वहाँ पे, लेकिन ये था कि वो बुलाएंगे और स्टेज पे सब हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम ऑडियंस में बैठो, मैं तुम्हें आवाज़ दूंगा और फिर तुम किताब लेके आ जाना और फिर अपन उसका। तो मैं ऑडियंस में बैठ गया जा करके, किताब लेकर के अपनी सारी, और उन्होंने वो गजल गाई, कंसर्ट चल रहा है उनका, उसमें दूसरी या तीसरी गजल गाई, जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं,
1: वाह,
0: तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। तो ये
1: क्या
0: गजल
1: बात
0: गाई,
1: है,
0: और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ये जो गजल मैंने गाई ये हमारे प्यारे दोस्त शायर राजेश रेड्डी की लिखी हुई है, और इत्तेफाक से वो यहाँ मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं, और आज उनकी किताब का भी हम चाहेंगे कि हो जाए। तो मैं किताब लेके गया, स्टेज पे गया, उन्होंने रिबन रिबन खोली और सबके सामने, ऑडियंस के सामने, वो जो होता है एक तरीका, वो किया, क्लैपिंग वैपिंग हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने रोका इशारा, बोले राजेश रुकिए। तो मैंने कहा पता नहीं आप

0: क्या बाकी है। तो फिर उन्होंने उनका म्यूजिक कंसर्ट चल रहा है, मतलब गजलें चल रही हैं, सुरेश साजिंदे स्टेज से सब। तो उन्होंने साउंड वाले को बोला कि ये एक माइक इधर लगाओ, स्टैंडिंग माइक। तो मैं तो वो एक माइक लगाया और फिर उन्होंने कहा कि ये राजेश वो गजल सुनाइए जाने कितनी उड़ान बाकी है, जो उन्होंने
1: क्या
0: आखिर में
1: बात है,
0: रिकॉर्ड किया अल्टीमेट,
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: कि जब मैंने गजल शुरू की जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी है, तो मैंने ये पढ़ाई है। तो जगजीत जी वो म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, वो
1: वाह
0: गाने
1: वाह
0: लगे,
1: वाह वाह वाह,
0: वो गाने लगे। किसी शायर को इतना बड़ा ब्लेसिंग, इतना बड़ा आशीर्वाद, प्यार क्या होगा कि वो पढ़ रहा है और उसी वक्त वो सिंगर
1: गा
0: गा
1: रहे,
0: रहा है।
1: क्या बात है, अनमोल याद है, शानदार शानदार। यहां मुझे लगता है कि आप आपसे कुछ सुना जाए अब वापस।
0: तो ये शेर और मतलब देखें, ये कब चाह के मैं मशहूर हो जाऊं,
1: वाह
0: ये मेरी दुआ है अपने बारे में। ये कब चाह के मैं

0: बस अपने आपको
1: वाह
0: मंजूर
1: वाह वाह, क्या
0: हो
1: बात है, शानदार,
0: जाऊं।
1: बहुत बढ़िया, क्या बात,
0: अगर आप खुद को इस स्वीकार स्वीकृत नहीं है तो फिर मतलब क्या बाकी चीजों का।
1: वाह,
0: ये कब चाह के मैं

0: जाओ, बस अपने आपको मंजूर हो जाओ। ऋषि देखे खास
1: इरशाद।
0: बाहर।

0: लिए मजबूर
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
0: हो जाऊं।
1: क्या बात
0: शुक्रिया,
1: है।
0: बहुत शुक्रिया। ये कब चाह कि मैं ऋषेर,
1: इरशाद,
0: अगर हम अपने आप में टटोलें तो हम खुद अपने आप में कितना है, हम एक बहुत कुछ चीजें समझ चुकी हैं और हम खुद कितने रह गए ये देखें। ये कब चाह कि मैं मेरे अंदर से घर दुनिया निकल
1: मेरे
0: जाए,
1: अंदर से घर दुनिया निकल जाए,
0: मैं अपने आप में भरपूर
1: क्या
0: हो
1: बात है,
0: जाऊं।
1: क्या बात है, शानदार है, क्या
0: शुक्रिया।
1: बात है, क्या बात है।
0: मेरे अंदर से घर दुनिया निकल जाए, मैं अपने आप में भरपूर हो जाऊं। ये कब चाह के मैं, और इस गजल का आखिरी शेर, खास शेर,
1: इरशाद
0: आईने पे, बहुत शेर आप लोगों ने सुने होंगे अलग अलग।
1: सर,
0: ये
1: इरशाद,
0: कब चाह के मैं ना बोलूं सच तो कैसा आईना मैं,
1: वाह, न बोलूं सच तो कैसा आईना मैं,
0: न बोलूं सच तो कैसा आईना मैं, जो बोलूं सच तो चकना
1: वाह वाह वाह
0: चूर।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है, इसे फिर पढ़िए, वाह वाह वाह वाह
0: शुक्रिया।
1: वाह।

0: जाऊं। शुक्रिया।
1: वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं अब ऑडियंस के लिए फोरम ओपन करता हूं। आप में से कोई अगर सवाल पूछना चाहे तो ये माइक है और आप पूछ सकते हैं।
0: सर मेरा नाम धीरज पुरोहित है। सर मैं शायरी से जुड़ा हुआ ही एक प्रश्न पूछ रहा हूं और मुझे उसका मैं क्षमा चाहते हुए कूटनीतिक नहीं

0: लेकिन सच्चा उत्तर चाहिए। दिल्ली के एक शायर हैं, उनका शेर इतना प्रसिद्ध हुआ जो कि मुझे बिल्कुल नागवार गुजर रहा है कि शायद ये शेर की श्रेणी में नहीं है। उनका शेर है कि कोई भी शेर अच्छा या बुरा नहीं होता, कोई भी शेर अच्छा या बुरा नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता। सर ये क्या सही है? यानी कोई भी मिठाई मिठाई नहीं होती, यानी जो जो मिठाई होती है वो सब एक ही कैटेगरी की होती है, उनमें भी तो विविधताएं होती है ना, तो क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं?
1: बड़ा मुश्किल सवाल है
0: लेकिन सर मैं आप जैसे वरिष्ठ व्यक्ति से जरूर।
2: नहीं बिल्कुल सही है पूरे जी, वो शेर उसकी सच्चाई अलग है कि शेर अच्छा बुरा नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता। लेकिन ऐसा भी नहीं है, अच्छे गायक बुरे गायक में फर्क होता है, अच्छे शायर बुरे शायर में फर्क होता है, अच्छे कहानीकार बुरे कहानीकार में फर्क होता है, हर अच्छे अच्छे खिलाड़ी और बुरे खिलाड़ी में फर्क होता है। तो लेवल और स्तर का तो फर्क होता है, मतलब जैसे सुर में गा देने को सिर्फ गाना नहीं बोलते, गाने में असर होना चाहिए। असर
1: क्या प्यारी बात है
2: ना, गाने में असर होना चाहिए।
0: जी सर आपके एक आपके उत्तर का तात्पर्य यह है कि वो मुकम्मल शेर तो है लेकिन शेरों में भी वर्गीकरण जरूर है,
2: जिसमें असर है वही सच्चा शेर।
0: जी जी
3: सर से क्या सवाल करूं, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूं कि आपने इतने सुंदर गीतों से अपनी यात्रा शुरू की थी, उसके बाद फिर कभी गीत लिखे ही नहीं, और क्यों?
2: हाँ नहीं, बहुत सही सवाल है कमलेश जी। मैं शुरू में मंच पे गीत पढ़ता था, जो नीरज जी वाली घटना मैंने आपको बताई, मंचों पे राजस्थान भर में घूमता था, बाहर भी गया। लेकिन जयपुर में जो हम उम्र लोग होते हैं, जिसमें हिंदी वाले भी होते हैं उर्दू वाले भी होते हैं, आपका उठना बैठना होता है, हाँ, तो जो मेरे हम उम्र जो शायर दोस्त थे जो जिनके साथ उठना बैठना भी था, तो वो उनको सुनते सुनते भी फिर वो उनकी कुछ गज़लें सुना, और फिर कुछ मुशायरे वहाँ पे जो अटेंड किए, जिसमें बड़े बड़े शायर जो है ना जयपुर में बहुत बड़े बड़े मुशायरे होते थे, और ये सब मजरू सुल्तानपुरी साहब, कैफी आजमी साहब, निदा साहब, बशीर बद्र, शहरयार, ये सब बड़े बड़े शायर वहाँ पे आते रहे। तो वो जब मैंने देखा कि दो मिसरों में पूरी बात हो जाती है, और गीत जो है ऐसा आसान भी नहीं है कि आप गीत से लेकर आसानी से शायरी में आ जाएं और दो पंक्तियों में कहना शुरू कर दें, लेकिन वो उस विधा ने मुझे इतना अट्रैक्ट किया, बांधा, मैंने उसमें कोशिश की और वो मेरे यार दोस्तों को सब हम उम्र लोगों को ठीक लगने लगी, और बात कुछ जम गई, और फिर मैं वो कहने लगा, तो फिर गज़ल का ही जादू मुझ पर सवार हो गया वो शेर कहने पे, तो वो मैंने की। तो फिर जब हुआ तो मैंने गजल को अपनाया और फिर शायद गजल ने मुझे अपना लिया। जी
1: क्या बात है।
4: नमस्ते सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर कोई नया नया शायर बनना चाहता है तो उसको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, या क्या पढ़ना चाहिए, विचार कहाँ से आते हैं, क्योंकि कविताएं बहुत से लोग लिखते हैं और वो बहुत ही अलग अलग तरह की कविताएं आजकल हो रही हैं, वैसे ही शेर भी बहुत ही अजीब तरीके के हो रहे हैं, जिनको शेर शायद नहीं भी बोला जा सकता है, तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि वो एक अच्छी दिशा में बढ़ सके?
1: ये लड़की अपने लिए पूछ रही है
2: नेहा बहुत अच्छा सवाल है बेटा, और खासतौर से आपकी जनरेशन के लिए इस दौर में कुछ चीजें आसान भी हुई हैं और कुछ चीज़ें गलत भी हुई हैं। ये सोशल मीडिया का जो दौर है, जिसमें ओपन माइक और सोशल मीडिया पे फेसबुक, ट्विटर है ना, और व्हाट्सएप और ये सब, इसमें आपने आपका शौक है सिर्फ, और आपने दो लाइन लिखी और उनको मान लिया कि जैसे दीप्ति जी ने कहा कि मान लिया कि ये शेर है बस, और उसको आपने पोस्ट भी कर दिया, और आपके जो जान पहचान के लोग हैं, हम उम्र लोग हैं या परिचित लोग हैं, वो उस पर वाह वाह भी कर देंगे, है ना, और वो दाद मिलना भी शुरू हो गई और सारा कुछ हो, और उससे एक गलत फहमी पैदा हो गई कि मैं तो एक्सेप्ट कर ली गई है, कर लिया गया, मैं शायर हूँ। जब हम जैसे लोग शुरू हुए थे तो ये सब नहीं था, हम सिर्फ गोष्ठियों में होते थे, एक दूसरे को सुनते थे, सुनाते थे, और उसके बाद आत्मविश्वास जैसा कुछ चीज़ आती थी, फिर अखबारों को भेजते थे, पत्रिकाओं में भेजते थे, फिर वहाँ एक संपादक जैसी कोई चीज़ हुआ करती थी जो उसको देखता था कि वाकई ये गज़ल है या नहीं है, तो अब तो संपादक भी गायब हो गए, तो ये इतना आसान नहीं था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें सोशल मीडिया ने आसान तो कर दी हैं, लेकिन आपकी मेहनत में कमी नहीं आनी चाहिए, आपको अच्छा पढ़ना चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए, और लगातार पढ़ना चाहिए, लगातार सुनना चाहिए, ये जुनून का काम है, और वो अगर जुनून है तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे और सक्सेसफुल होंगे। जी
1: रेडियो की तरफ वापस लौट रहा हूँ सवाल के जरिए। जब अचानक ये तय हुआ कि सखी सहेली कार्यक्रम शुरू होना है, वो दिन याद है सर आपको?
2: जी मुझे एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं,

0: लेकिन वो जमाना याद है और बिल्कुल हंगामों वाले दिन थे।
1: बिल्कुल, अचानक सिग्नेचर ट्यून बन रही है, कॉन्सेप्ट बन रहा है,
0: डेट तय हो जाती है कि फलां से शुरू करना है।
1: लॉन्च होना है बस, और उसके बाद अब आपके ऊपर है कि आप अपनी तैयारी।
0: तो उसके बाद फिर वो सिलसिला सिग्नेचर ट्यून से लेके यूनुस हैं और राजेश अपने जोशी
1: राकेश जोशी
0: राकेश
1: जी,
0: जोशी एक्सपर्ट एक्सपर्ट, ये दोनों लोग जो थे मशीनों के मास्टर और सिग्नेचर ट्यून के तो एक्सपर्ट हैं दोनों के दोनों। राकेश जी अभी मौजूद नहीं है लेकिन ये विविध भारती की जितनी सिग्नेचर ट्यून्स हैं ये इन दोनों का करिश्मा है, इन दोनों का कमाल है।
1: जी,
0: और
1: शुक्रिया।
0: तो फिर सिग्नेचर ट्यून भी बनी और सब चीज़ें सिलसिला शुरू हुआ और बहुत अच्छी टीम और बहुत अच्छे ढंग से प्रोग्राम शुरू हुआ और पहले ही प्रोग्राम से लोगों का दिल लोगों ने जीत लिया। थैंक यू।
1: बिल्कुल, यहाँ कमलेश जी मौजूद हैं, मुझे लगता है कि मैं अपना माइक उनको देता हूँ, सखी सहेली की शुरुआती याद के बारे में वो भी अपनी कुछ बात कहें।
2: सखी सहेली की याद तो ऐसी है कि वो कभी भूल ही नहीं सकती। जैसे ही हम लोगों ने प्रोग्राम शुरू किया, लोगों की चिट्ठियां आना शुरू हुई और लोगों ने लिखना शुरू किया कि ये केवल महिलाओं के लिए क्यों है प्रोग्राम, पुरुषों के लिए क्यों नहीं है। और दूसरी एक बड़ी जो खास मेरे साथ घटना घटी कि किसी ने चिट्ठी लिखी कि अगर ये महिलाओं का प्रोग्राम है तो कमलेश पाठक प्रोड्यूसर कैसे है। उसका सॉल्यूशन ये निकाला गया कि कमलेश पाठक खुद प्रोग्राम में बैठे एक बार तो बताएं कि पुरुष नहीं है, वे महिला है। और जब मैंने प्रोग्राम शुरू किया तो लगा मेरा थोड़ा लोकल टच है बोलने में तो शायद पसंद नहीं किया जाएगा, लेकिन बाद बाद में ऐसा हुआ कि उनको मेरा बोलना ही अच्छा लगने लगा और बहुत सारी चिट्ठियां आने लगी कि आपका जो लोकल टच है, जो क्योंकि विविध भारती बहुत रिमोट में भी सुना जाता था ज्यादातर, तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। आप बताइए।
3: मैं क्या बताऊं, मेरी बहुत अच्छी अच्छी यादें हैं। कई बार मैं जब रिटायर हो गई उसके बाद भी मुझे प्रोग्राम करने के लिए बुलाया जाता था। वो जमाना ऐसा था कि रिटायर्ड लोगों को भी बुलाते थे।
4: हम लोग रेडियो की दुनिया से मुशायरों की दुनिया में आते हैं और सवाल मेरा ये है कि राजेश जी, आप पूरे विश्व में मुशायरे पढ़ रहे हैं और बहुत कामयाब हैं, बहुत नाम है आपका हर जगह, लेकिन ये मुशायरों की जो दुनिया है, पहली बात तो ये कि इसमें प्रवेश कैसे हुआ, दूसरी बात ये कि इतना साफ सुथरा लिखते हैं आप, तो वहां कैसे जगह मिली।
1: क्या प्यारा सवाल है, वाह, बहुत सही,
0: धन्यवाद दीप्ति जी। मैंने अब नेहा को जवाब देते हुए जो बात कही कि हमने जिस दौर में शुरू किया, हमारी ग्रूमिंग, हमारी स्कूलिंग कहना चाहिए शायरी में भी कुछ ऐसी हुई कि उस वक्त अदाकारी का कोई काम ही नहीं था। मतलब ये अदाकारी शुरू हुई है बहुत बाद में जाकर के, जो मैंने नाम बताया आपको, अली सरदार जाफरी, मजरू सुल्तानपुरी, कैफी आजमी, बशीर बद्र, निदा फाजली, तो ये हमारे बड़े लोग थे, सीने गुलाम रब्बानी ताबा, तो ऐसे लोगों को तो सुन सुन के हम स्टेज की तरफ आकर्षित हुए
1: जी।
0: तो इनके कोई अदाकारी नहीं, शायरी है, प्योर शायरी है ना। और खुमार साहब तरन्नुम के इतने बड़े बादशाह
1: जी
0: है, मजरू साहब भी तरन्नुम सुनाते थे, तो ये हुआ। और फिर जो आपने कहा ना कि एंट्री आपकी कैसे हुई, तो मेरी एंट्री तो गीत से हो गई थी मंच पे, तो मंच का विश्वास जो आ गया था, ऑडियंस से कैसे कनेक्ट करते हैं और ऑडियंस ने एक्सेप्ट कर लिया था गीत के। जयपुर में जो मेरा बड़ा मुशायरा हुआ जिस मेरी एंट्री हुई और जिससे मुझे सब जगह जाने का एक तरह से वो पासपोर्ट मिला, वो था नेहरू सेंटर का मुशायरा और निदा साहब ने उसकी निजामत की थी। उन्होंने मुझे पहला मौका दिया नेहरू सेंटर के मुशायरे में, ये 87 की बात है, 86 में बॉम्बे आया, 87 में नेहरू सेंटर का बड़ा मुशायरा जिसमें निदा साहब ने संचालन किया और मैं उसके शुरुआती शायरों में से था। उस वक्त मंच पर सारे अली सरदार जाफरी, मजरू साहब, कैफी साहब, खुमार बाराबंकी, निदा साहब, बशीर बद्र, मुमताज राशिद, जफर गोरखपुरी, कोई बड़ा नाम लीजिए जो नेहरू सेंटर का मुशायरा ऐसा होता था, बड़ा मुशायरा।
1: जी जी।
0: और सुनने वालों में आपको हैरानी होगी, सुनने वाले में होते थे और थे उस वक्त दिलीप कुमार,
1: वाह,
0: अजीत फिल्म एक्टर, तो ऐसे बड़े बड़े लोग, तो ऑडियंस खचाखच भरा हुआ नेहरू सेंटर, ये हर साल का उनका वो था। तो और मैं बिल्कुल बॉम्बे में, एक तरह से मेरी शुरुआत ही थी, निदा साहब ने मुझे सौभाग्य मेरा कि उन्होंने मौका दिया, वो पहली गजल पढ़ी और वो गजल मुझे दो बार सुनी गई, मतलब बार बार मुझे प्यार मिला उस गजल ने, इतना प्यार दिया, इतनी पहचान दी और इतना आत्मविश्वास दिया, और उससे फिर वो एक पहचान बात से बात निकलती है और लोगों से लोगों तक पहुंचती है, और वो उसकी कैसेट वगैरह जैसे दुबई के कैसेट

0: आने लगे इधर इधर के कैसे दुबई जाते थे, तो एक बात पहुंच गई कि भैया कि ये शायर है जो अच्छा पढ़ता भी है सब कुछ है, तो इस तरह से एक एंट्री हुई। तो मुझे नाटक करने की या अदाकारी करने की और उसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया गया और अब तक किया हुआ है। थैंक यू।
1: बिल्कुल सर, तो उसी गंभीरता से अब आपकी अगली गजल हम सुनना चाहेंगे। कौन सी वाली? जो नेहरू सेंटर में सुनाई थी?
0: नहीं, वो सुना चुका पहले, वो जाने कितनी
1: उड़ान, बाकी है। हाँ, वही थी।
0: हाँ।
1: तो कोई और गजल सुनते हैं।
0: हाँ, ये गजल भी मेरे लिए खास गजल है। हाँ, तो ये उर्दू में बहुत पुरानी परंपरा है, ये बहादुर शाह जफर के जमाने से मिलकर हो रही है। बड़े बड़े उस्ताद भी जो हैं वो तरही गजल कहते हैं, यानी कि एक मीटर दिया जाता है और उसमें हर एक शायर अपनी अपनी गजल कह के लाता है। तो रामपुर की एक बहुत मशहूर लाइब्रेरी है रजा लाइब्रेरी, जिसमें रिसर्च का काम होता है, तो उन्होंने एक तरही मुशायरा कराया। तो एक मीटर देते हैं, एक पंक्ति देते हैं, लाइन देते हैं, उस पर अब हर शायर अपनी अपनी गजल लेके आता है। तो हिंदुस्तान भर के शायर वहाँ पे अपने अपने क्षेत्र के जो प्रतिनिधि शायर थे, मुंबई से मैं गया था तो मैंने ये गजल कही और मेरा सौभाग्य, मेरी खुशकिस्मती कि ये गजल वहाँ मुझसे बहुत प्यार से दो बार सुनी गई और सब दिग्गज मौजूद थे उर्दू दुनिया के वहाँ रामपुर में, तो उसने एक मुझे बहुत अलग तरह का आत्मविश्वास दिया। मैं पढ़ रहा हूँ। अब क्या बताएं टूटे हैं कितने कहां से हम,
1: क्या बात,
0: अब क्या बताएं टूटे हैं कितने कहां से हम, खुद को समेटते हैं यहां से।

0: bir ise kafa asma
1: Vah, vah, vah, vah.
0: sen. Şükriye. Ab kya bataye tu. और ये गजल का खास शेर,
1: इरशाद
0: एक लफ्ज शब्द होता है शराब, एक तो शराब है जो कि बहुत लोग पीते हैं, एक शराब यानी जो मृगजल होता है, यानी रेगिस्तान में पानी जो होता नहीं लेकिन पानी जैसा दिखता है, मिराज जिसे बोलते हैं, मृग मरीचि का है ना जो कुछ है। हाँ, तो अब ये शेर देखें। अब क्या बताएं टूटे हैं रे शेर, अब तो शराब ही से, अब तो शराब ही से बुझाने लगे हैं
1: वाह, अब
0: प्यास,
1: तो शराब से ही बुझाने लगे हैं
0: अब
1: प्यास।
0: तो

0: क्या बात है।
1: शुक्रिया। अब क्या बताएं। और एक अलग सा शेर है, एक जमाना था कि टीवी पर अक्सर वो नार्को टेस्ट का बहुत जोर था, इसका नार्को टेस्ट, इसका नार्को, ये झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है,
0: जी
1: अपराधियों का ये अक्सर होता था। तो लेकिन मेरा ये मानना है कि ऊपर वाले ने एक मशीन हर इंसान के

0: बॉडी में फिट की हुई है जो ये बताती है कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। और ये शेर में ढल गया देखें,
1: इरशाद।
0: अब क्या बताएं टूटे कितने कहां से हम। लेकिन हमारी आंखों ने, लेकिन हम

0: से हम
1: वाह वाह वाह, क्या बात है,
0: अब
1: क्या बात है।
0: क्या बताएं टूट। और गजल का आखिरी शेर, अब क्या बताएं टूटे हैं गम।

0: वाह वाह, क्या बात है,
1: अब
0: क्या बात
1: क्या
0: है।
1: बताएं टूट। और गजल का आखिरी शेर, अब क्या बताएं टूटे हैं गम, बिक रहे थे मेले में,
0: वाह
1: गम बिक रहे थे मेले में खुशियों के नाम पर।
0: क्या बात है, क्या बात है, गम बिक रहे थे,
1: गम बिक रहे।

0: क्या बात है, क्या बात है, शानदार है।
1: अब क्या बताएं, टूटे हैं कितने, कहां से हूं।
0: बहुत शानदार गजल आपने सुनाई, और आपकी इस पूरी यात्रा में आकाशवाणी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपकी जिंदगी में क्या महत्व आकाशवाणी का रहा है, और आकाशवाणी की इस 90 बरस की यात्रा में ये जो पूरी यात्रा है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है?
1: मैं आकाशवाणी परिवार का सदस्य हूं और रहूंगा। इसी ने मुझे, एक सांस्कृतिक संस्था ने, जिसको सुन, मतलब हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, उस संस्थान में एक मामूली से कार्यक्रम, पहले मैं कैजुअल युवाणी जब शुरू हुआ था जयपुर में, तो युवाणी का ऑडिशन देने गया था। एक युवाणी के आर्टिस्ट के तौर पर मैंने कार्यक्रम में भाग लेना शुरू किया, और वो सुख अलग ही था कि जब आप ऑडिशन में सेलेक्ट हो गए हैं और आपको ये लगे कि अब आप आकाशवाणी में कवि के रूप में और नाटक कलाकार के रूप में कि आपकी आवाज़ अब आकाशवाणी पे आएगी, वो एक अलग थ्रिल था, वो एक ज़माना ही अलग था। तो मेरा तो सफ़र ही, हालांकि मैं रंगमंच, पत्रकारिता सब कुछ की मैंने, लेकिन मेरा क्रिएटिव सफ़र जो, जिसमें संगीत भी है, जिसमें नाटक भी है, जिसमें लेखन भी है और कार्यक्रमों का अलग अलग संयोजन भी है, तो मेरा जो क्रिएटिव जो सफ़र है वो शुरू से ही, जो मैंने इतना साल 1980 से लेके 2012 तक गुजारा, अलग अलग पदों पर, अलग अलग केंद्रों पर, और ख़ास तौर से विविध भारती, और मैं जयपुर को याद करूंगा कि जयपुर ने मेरी नींव रखी और विविध भारती ने मुझे एक वो आकाश दिया कि मैं सब जगह अपनी बात, अपनी परिकल्पना को साकार कर सकूं। तो विविध भारती के अलावा मैं आकाशवाणी के 90 साल की बात करूं, तो ये वो संस्थान है जो अगर दुनिया, हिंदुस्तान के कोने कोने में कोई चीज़ पहुँचती है तो आकाशवाणी है। न अखबार पहुँचते हैं, टीवी तो बहुत बात की चीज़ है, और बाकी तो सोशल मीडिया तो खैर अभी कल ही पैदा हुआ है सब कुछ। तो एक ज़माना था कि पूरे हिंदुस्तान को जोड़े रखने वाली कोई चीज़ थी तो या तो फिल्म थी या आकाशवाणी। फिल्में पहुँचती थी और या आकाशवाणी, लेकिन फिल्म देखने के लिए आपको पैसा देना पड़ता था, और आकाशवाणी के लिए आपको, जिसका सफ़र हिंदुस्तान को जोड़े रखने में, बनाए रखने में, और आज भी जितनी रीच हमारे इस माध्यम की है शायद किसी माध्यम की नहीं है, और इस माध्यम को जितना सम्मान दिया जाए, प्यार दिया जाए, सम्मान दिया जाए, और इसकी इज्जत की जाए और इसका एहसान माना जाए, 90 साल होने के बाद या होने पर, इस आकाशवाणी के लिए अपना धन्यवाद भी देता हूँ, कृतार्थ भी उसका, और शुभकामनाएं भी देता हूँ और बधाई भी देता हूँ। बहुत शुक्रिया।
0: बहुत शानदार महफिल आपके साथ रही है, और यूं लगता है जैसे बातों का सिलसिला कभी खत्म ना हो, लेकिन वक्त की अपनी एक मर्यादा होती है, एक सीमा होती है। चलते चलते आपसे एक गजल सुनना चाहेंगे, आपके मन की गजल।
1: रंग मौसम का हरा था पहले, पेड़ ये कितना घना था पहले, रंग मौसम का हरा

0: ले। और ये शेर हम अक्सर घर के बुजुर्गों से कहते हैं कि आप रहने दें, आपको ये मालूम नहीं, आपको ये नहीं आता, हाँ आप इस ये और जमाना है, हाँ अब ये नहीं चलता। और अब ये शेर देखें,
1: जी
0: हम भूल जाते हैं कि कभी हम भी उसी मोड़ पे आएंगे।
1: जी
0: और ये शेर देखें आप, रंग मौसम का हरा था पहले, जो नया है वो पुराना होगा,
1: वाह, जो नया है वो पुराना होगा।
0: जो नया है वो पुराना होगा, जो पुराना है नया था
1: क्या प्यारी बात
0: पहले,
1: है, वाह वाह वाह वाह वाह,
0: शुक्रिया, जो नया है वो पुराना होगा, जो पुराना है नया था पहले, रंग मौसम का हरा था पहले। और ये शेर खास तौर से हिंदुस्तान के लिए, मसाला कब थी इबादत गाहें,
1: वाह
0: मसला यानी प्रॉब्लम और इबादत गाहें हमारा पूजा स्थल, मसाला कब थी इबादत गाहें, दिल में इंसान के खुदा था पहले।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
0: शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मसाला कब थी इबादत गाहें, दिल में इंसान के खुदा था पहले, रंग मौसम का हरा था पहले। और जुगल का आखिरी शेर,
1: इरशाद।
0: मैंने तो बाद में तोड़ा था उसे, मैंने तो बाद में तोड़ा था उसे, आईना मुझ पे हंसा था।
1: हो, क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है,
0: बहुत
1: क्या
0: शुक्रिया।
1: बात है।
0: मैंने तो बाद में तोड़ा था उसे, आईना मुझ पे हंसा था पहले, रंग मौसम का हरा था पहले। बहुत बहुत शुक्रिया,
1: क्या
0: बहुत
1: बात
0: बहुत
1: है,
0: शुक्रिया,
1: क्या बात है, बहुत शुक्रिया कि आप इस महफिल में आए और आपने सृजन भारती की इस महफिल को रोशन किया सर।
2: और अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। दीप्ति मिश्र जी को हम आमंत्रित करेंगे आज की हमारी मुख्य अतिथि साहिबा। मैं बताना चाहूंगी, एक शानदार शायरा, जानदार अभिनेत्री और कवयित्री के रूप में लोकप्रिय हैं दीप्ति जी। आपकी 4 किताबें आ चुकी हैं, बर्फ में पलती हुई आग है तो है, और बात दिल की कह दें कह तो दें, ये उर्दू में है, और एक किताब और है, यहाँ वहाँ कहाँ,
3: और एक और आ गई है तुम्हारे लिए।
2: तुम्हारे लिए स्वागत है। और आपकी रचनाओं को गुलाम अली साहब, कविता कृष्णमूर्ति ने, हरिहरन जी ने, उदित नारायण जी ने, श्रेया घोषाल, सोमा घोष, कविता सेठ और मधुश्री जैसी बड़ी कलाकारों ने अपनी आवाज भी दी है। तो दीप्ति जी, आपका स्वागत है। इनकी चंद पंक्तियां मैं कहना चाहूंगी लिखी हुई, जिससे तुमने खुद को देखा हम वो एक नजरिया थे, हमसे ही अब कतरा हो तुम, हमसे ही तुम दरिया थे, सारा का सारा खारापन हमने तुमसे पाया है, तुमसे मिलने से पहले तो हम एक मीठा दरिया थे, हम एक मीठा दरिया थे। दीप्ति जी,
4: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्या कहूँ, अभिभूत हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि जहाँ पे राजेश रेड्डी साहब परफॉर्म कर रहे हैं उस कार्यक्रम में मैं मुख्य अतिथि हूँ। राजेश जी से मेरी पहली मुलाकात मेरे ख्याल से 2002 या 3 में एक रेलवेज का प्रोग्राम था जिसमें निदा साहब के साथ आप आए थे, वहाँ हम लोग की मुलाकात हुई। हम लोगों ने मुशायरा पढ़ा, उसके बाद बहुत एक लंबा सफ़र साथ में रहा, हम लोगों ने बहुत सारे मुशायरे साथ में पढ़े, यात्राएं की। राजेश जी का जो व्यक्तित्व है उसके बारे में थोड़े समय कहना चाहूँगी कि ये बड़े संजीदा किस्म के इंसान हैं, और बहुत चुप रहना, बहुत कम बोलना, बहुत रिजर्व रहना, तो इनको जानना बड़ा मुश्किल होता है। आप बरसों बरसों साथ रहिए, लेकिन इनको खोल पाना, इनको जान पाना।

बुलंदी को छुआ, बाद में मैंने बुलंदी को छुआ, बाद में मैंने बुलंदी को छुआ, अपनी नजरों से गिरा था पहले।

0: पाना बड़ा मुश्किल होता है। और आज का ये कार्यक्रम वाकई बहुत अच्छा रहा, मैं बधाई देना चाहूंगी। इस तरह के प्रोग्राम्स करते रहिए। मैं कहना ये चाहती हूँ कि जो श्रोता हैं वो तो अच्छा सुनना चाहते हैं, लेकिन जो शायर है, जो कवि है, वो सहृदय श्रोता ढूंढता रहता है। वो चाहता है कि उसको ऐसे श्रोता मिले जहाँ पे वो अपना दिल खोल सके। उसको वो जगह नहीं मिलती तो वो अपने दिल के दरवाजे बंद रखता है और सिर्फ उतना खोलता है जितना सामने की पात्रता होती है। तो जब उसको ऐसा पात्र मिल जाता है तो उसका दिल खुल जाता है। आज वही हुआ है, राजेश जी ने दिल खोल के जो है अपनी बात कही। ये है कि वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, ये अगर रस्म और रिवाजों से बगावत है तो है। सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया। सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया, अब जमाने की नजर में यह हिमाकत है तो है। जल गया परवाना घर तो क्या खता है शम की, जल गया परवाना घर तो क्या खता है शम की, रात भर जलना जलाना उसके किस्मत है तो है। और ये सब दोस्तों के नाम, सारे दोस्त, जिसके भी दोस्त जहां भी हैं, कि दोस्त बनकर दुश्मनों से वो सताता है मुझे, दोस्त बनकर दुश्मनों से वो सताता है मुझे, फिर भी उस जालिम पे मरना अपनी फितरत है तो है। और है कि कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको, मैं उसे, कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको, मैं उसे, गैर ना हो जाए वो, बस इतनी हसरत है तो है। आखिरी शेर है, कुर्बत का मतलब होता है निकटता, समीपता, कनेक्शन, कि दूर थे और दूर हैं हरदम जमीनों आसमां, दूर थे और दूर हैं हरदम जमीनों आसमां, दूरियों के बाद भी दोनों में कुर्बत है तो है, वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, ये अगर रस्म रिवाजों से बगावत है तो है।
1: आप सुन रहे थे सृजन भारती के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम के संपादित अंश, और इस कार्यक्रम की प्रस्तावना रखी थी मंदाकिनी जी आपने
2: जी, और धन्यवाद ज्ञापित किया था आपने यानी
1: जी।
2: जयंत साहब ने।
1: और इसी के साथ आज का विविधा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार।
3: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुबह दोपहर के 12 बजने वाले हैं, हम थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पूरी कर आज नई दिल्ली लौट आए हैं। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी ने 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान श्री मोदी ने राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ने 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड का दौरा किया। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को प्रधानमंत्री मोदी की 3 देशों की यात्रा के दौरान हुए महत्वपूर्ण समझौतों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण भागीदार देश बनकर उभरा है।
1: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बनके इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
0: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त छूट के साथ भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर प्रदान किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि ये योजना 6 महीने की अवधि तक लागू रहेगी। मंत्रालय के अनुसार पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात में गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। श्री शाह ने कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इधर उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में 2 दिन की चर्चा पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संविधान विशेषज्ञों, सरकारी उपक्रमों, सामाजिक प्रतिनिधियों और मीडिया के साथ बातचीत की। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में जारी किए गए हैं। प्राधिकरण ने स्विगी इंस्टामार्ट को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। ऐसा नहीं करने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फूक्वोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। यह हादसा 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट के अचानक ऊंची लहर की चपेट में आकर पलटने से हुआ। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें से 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। यह अधिसूचना यमन में गृह युद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। हालांकि मंत्रालय ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को यमन की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के विजेता 20 जुलाई को न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम एक या दो नहीं कई सारे कलाकारों को याद करने वाले हैं। तो यादों की महफिल में बहुत सारे कलाकारों की यादों के साथ हाजिर हूं मैं विधि जैन। नमस्कार। पहला गीत हम सुन रहे हैं अभिनेता प्राण जी, इनके इन पर फिल्माया गया यह गीत हम सुनते हुए आज याद करते हैं अभिनेता प्राण को उनकी पुण्यतिथि विशेष दिवस पर।

हम सुन रहे थे उपकार फिल्म का यह गीत, जिसे गाया मन्ना डे ने, इंदीवर के बोल और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल में हम लेकर आए हैं हमारी कुछ यादें कुछ अलग-अलग कलाकारों के साथ। तो आज के दिन बहुत सारे लोगों की, किसी की जन्मदिवस है, किसी का पुण्यतिथि है, तो हम उन सभी कलाकार को याद कर रहे हैं। और आज ये फिल्मकार विमल राय का जन्मदिवस है, तो आइए सुनते हैं उनके द्वारा सजाए गए, पिरोए गए इन गीतों को।

हम सुन रहे थे विमल रॉय कृत फिल्म बंदिनी से आशा भोसले की आवाज में शैलेंद्र की बोल और सचिन देवर्मन के संगीत के साथ यह गीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का अगला गीत, जिस फिल्म को भी सजाया है विमल रॉय ने। फिल्म है सुजाता, एस डी वर्मन सचिन देवर्मन ने इसे गाया है और सचिन देवर्मन ने ही उसे संगीतबद्ध किया है। मजरूह सुल्तानपुरी के हैं बोल।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल, और आज हमने यादों की महफिल में सबसे पहले सुना अभिनेता प्राण पर फिल्माया गया यह गीत, और अब हम सुन रहे हैं फिल्मकार विमल राय पर के द्वारा सजाई गई फिल्मों के गीतों को। इसके बाद और भी कई किरदार हैं जिनको आज हम याद करने वाले हैं, तो आइए सुनते हैं विमल राय कृत फिल्म 2 बीघा जमीन। इस फिल्म से लता मंगेशकर मनाडे और साथियों की आवाज में शैलेंद्र के बोल और सलिल चौधरी का है संगीत। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: आइए हम सुनते हैं एक और गीत जो कि है विमल रॉय कृत फिल्म परख से। लता मंगेशकर की आवाज़ है, शैलेंद्र के हैं बोल और सलिल चौधरी का है संगीत।
1: ओ, संजय।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। अभी तक हमने सुना अभिनेता प्राण पर फिल्माए गए गीतों को। हमने सुना विमल रॉय, एक बहुत खूबसूरत फिल्मकार के द्वारा फिल्माई गई फिल्मों के गीतों को। और अब हम चल रहे हैं, आज याद कर रहे हैं अभिनेता राजेंद्र कुमार को। तो आइए सुनते हैं अभिनेता राजेंद्र कुमार पर फिल्माए गए इन गीतों को।

0: हम सुन रहे थे गोरा और काला, फिल्म से यह गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ यह गीत। आइए सुनते हैं संदेश।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
4: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
5: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
6: तुम्हारी याद सताते हैं
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। जैसा हमने आपसे कहा था कि आज हम बहुत सारे कलाकारों को याद करेंगे, तो आज हम याद करने जा रहे हैं कुछ गीतों के साथ गायिका अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित को। आज उनका जन्मदिवस है। आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज में ये गीत।

हम सुन रहे थे अपनापन फिल्म से यह गीत सुलक्षणा पंडित किशोर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ में।

हम सुन रहे थे उलझन फिल्म का यह गीत किशोर कुमार सुलक्षणा पंडित की आवाज में, और आज का कार्यक्रम यादों की महफिल समाप्त होता है यहीं पर। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर आरंभ होगा बस थोड़ी ही देर के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। मैं हूं आपके साथ विधि जैन। नमस्कार स्वीकारें। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा सुरीला सफर। और आप जानते हैं, हम जानते हैं, सभी जानते हैं कि सुरीला सफर में हम भेजते हैं आप तक एक इबारत हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से, और वहां से आपके साथ होती हैं बहुत सारी बातें। तो जो इबारत हमने भेजी है उसे हम आपके सामने पढ़ देते हैं। इबारत कुछ ऐसी है कि एक जीवन में किसी का साथ मिल जाए तो वही हमें 2 से 11 बना देता है। कभी कोई तीसरा उस साथ को पूर्णता देता है तो कभी वही उसे विच्छिन्न भी कर देता है। 4 लोग कभी प्रशंसा की थपकी देते हैं तो कभी अपने वचनों से हमें परखते भी हैं। 5 इंद्रियां कभी जीवन पथ की सहचरी बनती हैं तो कभी कभी साथ छोड़ती प्रतीत होती हैं। और 6 इंद्रिय वो भी अपने संकेत देती रहती है। 7 समुद्रों से सुसज्जित यह वसुंधरा फिर भी अपनी ही लगती है क्योंकि इसमें हमारी स्मृतियां और अनुभूतियां बसी होती हैं। 8, 9, 10 न जाने कितने अंक और कितने संबंध जीवन की गणना में जुड़ते जाते हैं। कभी 100 पीड़ाएं भी धैर्य से सह लेते हैं और कभी सहस्रों प्रसन्नताएं भी मन को आनंदित नहीं कर पाती हैं। और इस इबारत को हमने पढ़ने के बाद बहुत सारे संदेश जो हमारे श्रोताओं ने पहले से भेजे हैं, उन संदेशों में से कुछ संदेश हम आपके साथ साझा करते हैं। अब उन संदेशों में से एक संदेश, जैसे हमारे एक बड़े प्यारे से श्रोता लिख रहे हैं कि जो जीवन दर्शन की विभिन्न झांकियां हैं ना, वह प्रदर्शित करती अंकीय विश्लेषण पूर्ण अलंकृत गद्यांश है। अनेकों के बीच फलता फूलता एक आखी जीवन कालांतर में पुनः संख्या गरिष्ठ परिवार में परिणत हो सहस्त्रादि दुखों सुखों में भवर को पार करते हुए अतिक्रम करता है, अंततः पुनः एक आखी महाप्रयाण कर जीवन के सफर को अंजाम देता है। जीवन सफर को संगीतमय सफर का आह्वान करती कार्यक्रम का इंतजार रहेगा। जी बिल्कुल, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि संख्याएं अंक 1-2 शब्दों आ आ ई ई उ उ आदि के पूर्वज हैं। शब्द तो अंकों के बहुत बाद में आए और आते ही चले जा रहे हैं जबकि संख्याएं सबकी सब आ चुकी हैं। क्या कोई नई संख्या बता सकता है? देखिए, अंक से कैसे बना है एक शब्द? एक से बना एका। एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते और एक दूसरे के बिना इस दुनिया की शुरुआत भी नहीं हो सकती। कितनी बढ़िया बात ये हमारे साथ कह रहे हैं। ऐसी बहुत सारी बातें कही हमारे श्रोताओं ने, तो हम आपको ये सारी बातें भी सुनाएंगे, लेकिन सुनाते हैं ये गीत। और इस गीत के पहले हमारा एक छोटा सा प्रश्न है आपसे, और वो प्रश्न ये है कि जीवन में अगर अंक ना हो तो क्या होगा? जरा विचार कीजिए कि अंक गायब कर दिए जाए तो हम क्या कर पाएंगे और क्या नहीं कर पाएंगे, जरा सोचिए, बताइए। हालांकि हमारे एक श्रोता ने इस बात का उत्तर पहले

ले ही दे दिया है, पर बाकी श्रोताओं को तो भी उत्तर देना बनता है। तो बताइए, अगर जीवन में अंक नहीं है तो जीवन कैसा होगा? चलिए सुनते हैं ये गीत।

हम सुन रहे थे मुकेश और साथियों की आवाज में यह गीत, जिसे हमने लिया फिल्म धर्म करम से, और इसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, राहुल देव वर्मन का है संगीत। और हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, और बड़ा प्यारा सा प्रश्न था कि ये बताइए कि अगर आपके जीवन में, हम सबके जीवन में अगर अंक नहीं है तो हमारा जीवन कैसा होगा। हमारे श्रोता ने पहले ही हमें उत्तर दिया है, जिसे हमने सुरक्षित कर लिया और आप सबके साथ उसे हम साझा करने वाले हैं। पर कुछ बड़े प्यारे प्यारे प्रश्न, बड़ी प्यारी प्यारी बातें हमारे श्रोताओं की आई हैं। तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है, अंक नहीं होंगे तो हम समय, तारीख, उम्र, रुपयों का हिसाब नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है, बगैर अंक के मैसेज भेज पाना और पाना और भेजना असंभव होगा, और संचार व्यवस्था नहीं चलेगी, और विविध भारती राष्ट्रीय सेवा की ओर से सुरीला सफर भी ठप हो जाएगा। नहीं, हम इसको कुछ और तरीके से कर लेंगे ना, लेकिन पता तो पिन कोड पर ही आता है ना, तो नंबर तो चाहिए, अंक तो चाहिए। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अंकहीन जीवन शून्य होता है, गणित में भी शून्य की जिससे गुना किया जाए, फलसफा फलफलाफल शून्य ही होता है, शून्यता की पूर्ति संख्या ही करती है, और बस जोड़ घटाव करते रहते हैं, और त्वरित फल के लालच में गुणा ना करें, गुणा मत करें। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता कहते हैं कि अंक, वह कल्पना ही नहीं कर सकते अंक के बिना। अंक है तो नदी की लंबाई, गहराई, पर्वतों की ऊंचाई, सागर की विशालता, फूलों की रचना, पत्तों की सजावट, हाथ की उंगलियों की, सभी तरफ अंक बैठे हैं बिना अंक के। सही बात है, दुनिया तितर बितर हो जाएगी। हमारे श्रोता कहते हैं कि हार जीत का निर्णय भी नहीं कर सकते। सही बात है, भगवान शिव ने तो द्वितीय चंद्र को मस्तक पर धारित किया है, और वह कहते हैं कि चंद्रमा की गति विधि भी अंक पर आधारित है। जी बिल्कुल, सब कुछ अंक पर ही आधारित है। हमारे श्रोता कहते हैं कि जीवन में अंक नहीं तो जीवन शून्य हो जाएगा, और ज्योतिष विधा अपना अस्तित्व खो देगी। आप भी सही हैं। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि अंक नहीं होंगे तो बिना अंकों के, रंगों के बिना, जैसे चित्रकारी संगीत के बिना किसी एक धुन की तरह होगा। अंक केवल गणित का हिस्सा नहीं है, वह हमारे जीवन, अस्तित्व, समय, भावनाओं सबके हिस्सा हैं। घड़ी की सुइयां, कैलेंडर, तारीखें सब अर्थहीन हो जाएंगी। हम सभी अपनी आयु का हिसाब नहीं रख पाएंगे, ना किसी खास पल का जश्न मना पाएंगे। बिना अंकों के पते, बैंक खाते, पहचान पत्र सब गायब हो जाएंगे, आर्थिक व्यवस्था बिखर जाएगी, प्यार, दूरी, भावनाओं को माप नहीं पाएंगे। अंक एक दूसरे को जोड़ते हैं, लय देते हैं, बिना उनके बिना दुनिया केवल एक अराजक और दिशाहीन कोहरा बनकर रह जाएगी। बहुत बढ़िया, हमारे एक श्रोता ने बढ़िया उत्तर दिया। उन्होंने लिखा है, अंक ना होते तो हमें मैथ्स से छुट्टी मिल जाती, क्योंकि मैं मैथ्स में बहुत वीक हूँ। कितने स्वार्थी होते हैं ना लोग, गणित से छुट्टी पाने के लिए अंकों को ही खत्म करने की बात करते हैं। पर फिर भी वह बहुत अच्छा लिख रही हैं। वैसे तो अंकों का आइडिया मानव मन में प्राचीन काल से ही होगा, बस उसकी प्रणाली आर्यभट्ट और अन्य गणितज्ञों ने बनाया है। इसके बिना सब कुछ अधूरा रहता, उम्र का कुछ पता ही नहीं चलता, है ना। कितनी अच्छी बात है, और प्रश्न बड़ा दिलचस्प है। कहती है बहुत कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन पोस्ट बड़ा हो जाएगा। जी, हमारे एक श्रोता ने लिखा है, आज का सुरीला सफर अंकों से जुड़ा है। अगर देखा जाए तो अंक गणित का आविष्कार किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया, इसकी शुरुआत प्राचीन काल मेसोपोटामिया, सुमेरियन मिश्र और भारत में लगभग 3000 वर्ष पूर्व पहले व्यापार और निर्माण की जरूरत करने के लिए पूरी की गई थी। इसे व्यवस्थित वैज्ञानिक रूप देने के लिए ब्रह्मगुप्त ने 7वीं सदी में शून्य के उपयोग को स्पष्ट किया, ऋणात्मक संख्याओं के साथ अंकगणितीय नियमों को लिपिबद्ध किया। चलिए, आपने बहुत सही बात कही है, उसके साथ अंक नहीं होगा तो क्या होगा, हम सब जो जुड़ रहे हैं जुड़ नहीं पाएंगे, ऐसा लिखा। दशमलव शून्य हमने दिया है तो चांद पर नहीं जा पाएंगे, ये भी हमारे श्रोता कह रहे हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हमारे श्रोताओं ने कही हैं कि अंक नहीं होंगे तो, एक बड़ी सी इबारत भी लिखी है, लेकिन उस इबारत में से हम वही छोटी बात करते हैं कि वो कहते हैं कि संतुलन नहीं हो पाएगा, ब्रह्मांड नहीं चलेगा, अंकहीन होगा तो हम पाषाण युग में पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, अक्षर हमें बोलना सिखाते हैं, अंक हमें जीवन जीने का ढंग सिखाते हैं, और अंक ना हो तो जीवन शून्य हो जाएगा। बहुत सारी बातें आप सभी ने बताई, और इन सभी बातों के बाद में हम आप तक गीत पहुंचाना चाहते हैं, जो अगला गीत है। एक बात मन में आती है कि किसी श्रोता ने लिखा कि अंकों की गिनती 3000 वर्षों पहले

ले हुई, पर उसके पहले भी भारत में सभ्यता थी। वो सभ्यता बिना अंकों के कैसे होती, जरा विचार कीजिएगा। सभ्यता बहुत पुरानी है। जब विश्व कुछ नहीं जानता था तब भारत में महाभारत हो रही थी, और उसके पहले भी हमारी सभ्यताएं हुई हैं। तो अंक जाने कब से हैं और जाने कब तक रहेंगे? और हमने कहा था, हमारे एक श्रोता ने पहले ही उत्तर दे दिया है, तो उनका उत्तर ऐसा है कि आज की कार्यक्रम में बातें अंकों में होंगी और मुझे लगता है अधिकांश गाने भी अंकों में ही बजेंगे। जीवन से यदि अंक निकाल दिए जाए तो उम्र का आकलन नहीं होगा, न समय की गणना होगी, न रुपए पैसों की गिनती होगी, न दूरियों का अंदाजा लगा पाएंगे। बिना अंकों के आधुनिक टेक्नोलॉजी भी असफल हो जाएगी। आज मोबाइल, कंप्यूटर, एटीएम, सारी मशीनें अंकों पर आधारित हैं। आज का जो विकास है उस पर सर्वाधिक योगदान अंकों का है। फिल्मी गीतों में भी अंकों के पर आधारित बहुत गीत बने हैं, और उन्होंने कुछ गीतों का नाम लिखा है। ये गीत आपके और आपके देश के नाम बस बता दीजिए। इस गीत में अभिनेता कौन है, अभिनेता का नाम बताइए और सुनिए ये गीत और विचार कीजिए अंकों के ऊपर। अगला प्रश्न आपके लिए यह देकर जा रही हूँ कि आपके जीवन में कौन सा अंक बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई एक अंक होता है, उसे कहीं भी लिखा हुआ देखकर, या घड़ी में देखकर, या चलते फिरते किसी गाड़ी में देखकर ऐसा लगता है, हाँ ये मेरा अंक है, ये मेरे पिता का जन्मदिन भी हो सकता है, ये मेरी बहन का कोई दिन हो सकता है, ये मेरा अपना कोई दिन हो सकता है, मेरे अपने का कोई दिन हो सकता है। जरा विचार कीजिए वो कौन सा अंक है जो आपके जीवन में बड़ा प्यारा है, आपको बड़ा प्यारा है। बताइए वो अंक, साझा कीजिए हमारे साथ, और बताइए इस गीत के अभिनेता कौन है।

हम सुन रहे थे ये गीत पूरब और पश्चिम फिल्म से महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में, इंदिवर के बोल और कल्याण जी आनंद जी के संगीत से सजा हुआ ये प्यारा सा गीत। और हमने आपसे दो प्रश्न पूछे थे। पहला बड़ा प्यारा सा प्रश्न था कि इस गीत के जो अभिनेता हैं उनका नाम बता दीजिए, तो आप सबने सही उत्तर दिया, मनोज कुमार जी। उन्हें हम प्रेम से भारत भी कहने लगे थे शायद, है ना। और हमने आपसे दूसरा प्रश्न पूछा था कि आपका पसंदीदा नंबर या अंक कौन सा है, तो हमारे एक श्रोता जो हैं, बहुत सारे श्रोताओं ने अलग अलग अपने अपने अंक बताए हैं। मैं सभी के अंक पढ़ सकूं या ना पढ़ सकूं, परंतु आपका जो अंक है जो आपको बहुत बार दिख रहा है, हो सकता है वो आपको इसलिए दिख रहा है कि शायद उससे आपको कई बार प्यार मिल रहा हो, है ना। तो हमारे श्रोता लिखते हैं, किसी को दो अंक अच्छा लगता है, दो के बिना संसार अधूरा है, सही बात है। 10 अंक किसी को अच्छा लगता है। और एक और बात इन्होंने लिखी है कि जो कंप्यूटर का एजुकेशन है वो बाइनरी नंबर सिस्टम्स पर चलता है, 0 एंड 1। और सोचिए कि कितनी भी बड़ी संख्या है, उस पूरी संख्या को या आपके नाम को या किसी भी चीज को, बड़ी से बड़ी इमारत को भी और बड़ी से बड़ी इमारत को भी, सब कुछ को 1 एंड 0 में कन्वर्ट किया जाता है, बिट्स और बाइट्स में कन्वर्ट करके उसके बाद स्टोर किया जाता है। ये बड़ी कहानी है, पर नंबर्स में कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है उनको, उसके बाद ही आप कंप्यूटर पर बात कर सकते हैं। इस बात का जिक्र इन्होंने यहाँ पर किया है। हमारे गौर श्रोता लिखते हैं कि उन्हें 7 नंबर अच्छा लगता है, क्योंकि 7 का अद्भुत महत्व है। 7 दिन है, 7 स्वर हैं, इंद्रधनुष के 7 रंग हैं, 7 महाद्वीप हैं, 7 समुद्र हैं, सप्तर्षि 7 हैं और विवाह के फेरे भी 7 होते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हमारे श्रोता लिखते हैं कि भारत की सभ्यता बहुत पुरानी है, समय के साथ उसका पतन भी हुआ। अगर पतन नहीं होता तो शून्य से ही प्रारंभ करना नहीं पड़ता। जी पतन तो नहीं हुआ, हाँ, लेकिन बदलाव जरूर हुए, उस बात को हम मानते हैं। और अब हमारे श्रोता ने उत्तर, कई सारे उत्तर दिए हैं। किसी ने कहा कि 9 उन्हें पसंद है क्योंकि वो पूर्णता का नंबर है। कोई कहता है कि उन्हें 7 नंबर पसंद है, किसी को 8 पसंद है, किसी को 3 पसंद है। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा ये वो कहती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि त्रिनेत्र होते हैं, त्रिशूल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई शिव जी के बारे में कि उनके साथ होता है। कोई कहता है कि शून्य उन्हें बड़ा पसंद है क्योंकि किसी भी अंक के आगे कितने भी शून्य लगा दो वो उसको

बड़ा करता ही जाता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर कोई पंगा लेने के लिए आता है तो शून्य से गुणा कर दो तो शून्य हो जाता है। और किसी को 6 पसंद है, किसी को कोई अंक 5, 25, 30, 29, कई सारे अंक पसंद है, किसी को 12, 21 पसंद है, किसी को एक अंक पसंद है, सबको अलग अलग पसंद। कोई कहता है न्यूमरोलॉजी में अंकों का बड़ा महत्व है, लेकिन उसको वो ध्यान नहीं देते। कोई कहता है कि 13 अंक लोग गलत मानते हैं और 13 बहुत अच्छा अंक होता है, लेकिन भारतीय सभ्यता में 13 अंक को गलत माना ही नहीं गया। शायद किसी को 18 नंबर पसंद है और किसी को कोई और अंक पसंद है, सबके अलग अलग अंक पसंद है। और मैं सभी के अंकों का स्वागत करती हूँ क्योंकि हर अंक अति विशिष्ट है। अब मैं चल रही हूँ अगले प्रश्न की तरफ और अगले गीत की तरफ। अगला प्रश्न बहुत सिंपल है। 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है और 100 करोड़ बराबर 1 बिलियन। ये तो हो गई अंग्रेजी संख्याएं। भारत की संख्याओं में आपको कहां तक की संख्या पता है? भारत की संख्याओं में करोड़ के बाद 100 करोड़ नहीं होता, कुछ और होता है ना? 10 लाख तो 10 लाख ही रहते हैं, वो मिलियन नहीं होते क्योंकि उसके बाद 11 लाख हो जाते हैं, है ना? तो आप बताइए, आपको भारत की सभ्यता की संख्याओं में कहां तक की संख्याएं पता है? जल्दी से हमारे साथ साझा कीजिए। और ये भी बता दीजिए कि अगले गीत के ये जो आवाज आपको सुनाई दे रही है, यानी गायक जो है, वो कौन से हैं, बताइएगा।

और हम सुन रहे थे महुआ फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, जो हमने आपसे पूछा कि गायक कलाकार कौन है, और आप सबने बिल्कुल सही उत्तर दिया। और आपने तो गीतकार और संगीतकार का नाम भी बता दिया, आपने बताया कमर जलालाबादी इसके गीतकार हैं और सोनी कोमी इसके संगीतकार। तो बिल्कुल सही बताया आपने, दोनों बातों को आपने बिल्कुल सही तरीके से बताया। और हमने आपसे पूछा एक बड़ा साधारण सा प्रश्न कि हमारे भारत की संख्याएं जो हैं वो कितनी ज्यादा हो सकती हैं, कहाँ तक हो सकती हैं, आप क्या सोचते हैं? तो हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे अच्छे उत्तर दिए हैं कि वो लिखते हैं कि एक कल्प आखिरी संख्या जब विष्णु भगवान की आंख खुलती है और युग परिवर्तित होता है। ठीक है, आपने धर्म के हिसाब से उत्तर दिया, ठीक है। इसके अलावा हमारे श्रोता लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़ अरब, 10 अरब खरब, 10 खरब नील, 10 नील पद्म, 10 पद्म शंख, महाशंख, और इसके बाद ये रुक जाते हैं। तो अंत्य और महाअंत्य दो संख्याएं भी सुनने में आती हैं, और सागरोपम आयु की बात भी आती है। सागर, 6 सागर, 10 सागर, 15 सागर, 33 सागर, ये बात भी बड़ी आती है। हमारे श्रोता लिखते हैं मुझे तो खरब तक पता है, 1 खरब 100 अरब, उसके बाद उन्होंने एक के बाद बहुत सारे शून्य लगाए हैं, और वो लिखते हैं इसमें बहुत सारे नंबर होते हैं, आखिरी में इन्फिनिटी होता है। बहुत सही बात है, भारत की संख्या अनंत है, खत्म ही नहीं होती, ये भाव भी बड़ा अच्छा है। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं अक्षौणी भी एक संख्या है। महाभारत के युद्ध में कौरव के पास 11 अक्षौणी सैनिक, तो पांडवों के पास 7 अक्षौणी सैनिक थे। और भी है जैसे कल्प महाकल्प समय गिनती के लिए भी गिने जाते हैं। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई हैं, और बहुत तकनीकी रूप से बहुत सही तरीके से आपने बताई हैं, और उनको पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं अरब खरब नील पद्म शंख, और इसके बाद बुंदेलखंडी में अटैया बटैया भगवान की चुटैया। जी, ऐसे कई सारे अंक होते हैं बड़े प्यार से, और जिन्हें हम अपना लेते हैं। हमारे एक श्रोता बता रहे हैं आज संडे की छुट्टी है, बेटी भी घर पर है, गवर्नमेंट बैंक में जॉब करती है, बैंक ऑफिसर है, तो वो लिख रही है रेडियो की पर आपकी प्रस्तुति सुन रही है, और हंसते हुए कह रही है कि अंक नहीं होंगे तो बैंक बंद हो जाएंगे, तो मेरी जॉब का क्या होगा। ये भी बड़ी चिंता है, चिंता का विषय है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बहुत ज्यादा तो नहीं पता, करोड़ तक तो पता है, उसके बाद खरब का भी पता है, शंख महाशंख बिंदु कुछ सुने हैं, एग्जैक्ट यूनिट नहीं पता है। तो एक काम करते हैं ना कि आज जब हम ये सुन रहे हैं तो इसके बाद एक विचार कर लेते हैं कि भारतीय अंकों को जरा एक बार पढ़कर देखते हैं कि वो कहां तक जाते हैं और कैसे बनते हैं, क्योंकि हमारे घर

में हमको सुनाया जाता था कि बड़े प्यार से एक ताना भी होता था, फूटी कोणी में भी नहीं लेगा कोई ये सामान। कई सारी चीजों की बात आती थी, तो कहीं से शुरू होकर कहीं तक चला जाता था। और अब हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ, और अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं, और सौंपते सौंपते एक प्रश्न है आपसे, क्या आप किसी ऐसे ग्रंथ के बारे में जानते हैं जो केवल अंकों पर बना हो, अंकों से ही बना हो, ग्रंथ हो, किताब हो, कोई भी चीज हो? आपने कभी ऐसा कुछ काम किया है, पजल सॉल्व किए होंगे अंकों के? वर्ग पहेली भी एक आती है समाचार पत्र में, उसमें भी अंकों की आते हैं, तो आपने कभी ऐसा कुछ काम किया है या ऐसा कोई ग्रंथ, ऐसी कोई किताब पढ़ी है जो केवल अंकों से बनी हो और केवल अंकों पर आधारित हो? अगर आपके पास कोई जानकारी है तो जरूर बताइएगा। और ये वाला गाना जो है, ये एक पहेली है, इस पहेली का उत्तर भी दे दीजिए और बता भी दीजिए, और ये बता दीजिए कि इसके गीतकार कौन है।

आप सभी ने बताया हसरत जयपुरी, तो बिल्कुल सही उत्तर है, उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। और ये गीत ऐसा लिखते हैं, मुझे तीतर की आवाज़ बहुत पसंद है, पूरी वादियां गूंजती हैं इस आवाज़ में। बिल्कुल सही बात है। हाँ, हमारे श्रोता लिख रहे हैं, भास्कराचार्य द्वारा रचित ग्रंथ लीलावती अंक पर आधारित है, और एक ग्रंथ है आर्यभट्ट, आर्यभट्टीय, यह भी अंक पर आधारित है। बिल्कुल सही। विष्णु धर्मोत्तर पुराण यह एक प्रमुख पुराण है जिसे विश्वकोश माना जाता है। संख्या गणना इसमें खगोल शास्त्र, गणित, काल समय विभाजन के अलावा ब्रह्मांड के माप का विस्तृत वर्णन भी है। इसके साथ न्यूमरोलॉजी सिर्फ अंकों पर ही आधारित होती है जी, हम इसे मान सकते हैं। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से जिक्र किया है, लीलावती ग्रंथ का फिर से आई बात आई, और इन्हीं सभी ग्रंथों की बात फिर से आई है, और इस बात के लिए बहुत अलग अलग परंपराओं की बातें कही हैं, और उन ग्रंथों के बारे में भी बताया है कि सुंदरी विद्या जो थी वो अंक विद्या कही जाती है, जो प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने अपनी पुत्री सुंदरी को 1 से 9 तक के अंकों को सिखा कर दी थी, ऐसा कहा जाता है। दश कुमार चरितम पंचतंत्र की कहानी पर आधारित, मगर शीर्षक संख्या पर है। क्या बात है, इतनी सारी जानकारी मुझे भी मिल रही है, कई चीजें तो मुझे भी नहीं पता थी। मैं एक शिक्षक हूं, मगर आज बच्चों को 1 2 3 तो आते हैं, पर हिंदी के अंक 1 2 3 4 ना पढ़ने में आते हैं ना लिखने में आते हैं। बहुत विचारणीय बात आपने कही है, और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने इस बारे में बहुत सारे बातों को बताया है, और एक जानकारी मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। भी थोड़े दिन पहले ये जानकारी मुझे भी कहीं से मिली थी, क्योंकि एक श्री भूवलय ग्रंथ है, इस ग्रंथ के बारे में बहुत सारी जानकारी सुनने में पढ़ने में आई है कि ये जो ग्रंथ है, यह ग्रंथ भी ना केवल और केवल अंकों पर आधारित है, और इस ग्रंथ में बहुत सारी चर्चाएं की गई हैं, और इस ग्रंथ में जो भी बातें हैं, जैसे तात्विक विचार हैं, वैद्यक, अणु विज्ञान, खगोल शास्त्र, गणित विज्ञान शास्त्र, इतिहास, संस्कृति विवरण, वेद, भगवद गीता, सब कुछ समाहित है। और इसे लिखा था, पहले इस ग्रंथ को जो लिखा था वो कुमुदेंदु सूरी ने इसकी रचना की है, और इसके कई सारे अनुवाद किए गए हैं, और पहला कन्नड़ में, कन्नड़ लिपि में 2003 में अनुवाद किया गया था, और इसमें 6 लाख पदे हैं, और इस आकार के हिसाब से बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसके बारे में भी जानकारी मुझे मिली थी, तो ये सारी जानकारियां आप जो दे रहे हैं, मैं जो दे रही हूँ, हम सब इकट्ठी करते हैं और इन ग्रंथों के पढ़ने के लिए भी आगे बढ़ते हैं, ताकि हमें भी अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाए। और अब हमारे श्रोताओं ने कहा कि वो सुडोकू सॉल्व करते हैं, और मैं आपको बताऊं कि आप तो सॉल्व करते हो, कई सारे बच्चे सॉल्व करते हो, इस बात को देखा गया है कि जो सुडोकू सॉल्व करते हैं वो बच्चे बहुत होशियार होते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। हमारे श्रोता ने लिखा, पहले जमाने में कोई इंसान को राजदंड के गुनाह में दंडित यानी दंड दिया जाता था, कौड़ी का दंड करते थे, तो हमारे यहाँ कहावत ये हो गई कि आदमी कौड़ी का भी नहीं है जी। 5 सिद्धांतिका गणितीय पुस्तक है, विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे, वराह मिहिर के द्वारा रचित ये रचना है जी। बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम आपको अगले गीत की तरफ बनाते पहुंचाते हैं, और हमारे श्रोता ने बताया कि वो वर्ग पहेली सुलझाती हैं, बहुत अच्छी बात है, अंकों से वो दूर दूर तक नहीं जाती क्योंकि उन्हें कठिन लगती है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब आप अंकों के पास जाते हैं तो अंक आपके दोस्त बन जाते हैं, और ये अंक आपके जीवन में बहुत बड़ा किरदार निभाते हैं, तो अंकों से दोस्ती कीजिए। और सुनते हैं हम अगला गाना, 5 रुपया 12 आना, ये इस गीत के गायक कलाकारों के नाम बता दीजिए, और सुनिए ये गीत।

हम सुन रहे थे मेरा नाम जोकर फिल्म से यह गीत आशा भोसले मुकेश और सिमी की आवाज में शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आपसे हमने प्रश्न पूछा था कि इस गीत के गीतकार कौन है, तो आप सभी बहुत समझदार हैं और बहुत अच्छे से उत्तर देते।

तो आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। तो ये प्यारा सा गाना हम सुन रहे थे, चलती का नाम गाड़ी फिल्म से, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देवर्मन का संगीत, और गायक कलाकारों के नाम हमने आपसे पूछे थे तो आपने बड़े मजेदार तरीके से उत्तर दिए हैं, किशोर कुमार और आशा भोसले। बिल्कुल सही। अब हम चल रहे हैं अगली कुछ बातों की तरफ, और मैं आपके लिए दो प्रश्न देने वाली हूँ। हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि भगवान स्वामीनारायण ने अपने ग्रंथ वचनामृत में भूगोल का वर्णन किया है। बिल्कुल सही है। बचपन में एक आना 5 पैसे का एक सिक्का और 1 पैसे का तांबे का सिक्का मिलता था जी, 6 पैसे का मिलता था जिसमें मलाई बर्फ पोकचा मिल जाता था जी। बिल्कुल सही बात है। 1978 में मैट्रिक इम्तहान में गणित कंपलसरी और ऑप्शनल दोनों में 100 100 नंबर, 100 में से 100 नंबर आए थे, और इनका पसंदीदा विषय त्रिकोणमिति था। चलिए जल्दी से बताइए, अगला प्रश्न यही है कि आपको गणित में कितने आए थे? ऐसे ऐसे सबके सामने गणित के अंक नहीं पूछने चाहिए, इस बात को मैं भी समझती हूँ, तो क्षमा कीजिएगा। हमारे श्रोताओं ने बताया कि ये फिल्म उन्होंने कल रात ही देखी और आज रात ही, मतलब यानी कल रात ही उन्होंने देखी और बहुत हंसी वो इस बात पे। हमारे श्रोता ने बताया कि 18 अध्याय हैं श्रीमद् भागवत गीता में, और 18 अध्याय को पढ़ना समझना बहुत बढ़िया बात है। आपने भी बहुत रोचक बात साझा की। हमारे श्रोता श्रोता लिखते हैं, अरे वो संभा कितने आदमी थे सरदार दो, देखा गब्बर का फेमस डायलॉग भी अंकों पर आधारित। जी बहुत सुंदर सुंदर बातें हमारे श्रोताओं ने लिखा है।

और हमारे श्रोताओं ने मैं जिस ग्रंथ की बात कर रही थी उस ग्रंथ के बारे में जिक्र भी किया था जिसके बारे में उन्होंने मुझे बताया। मैं आपके सामने अगला प्रश्न रख रही हूँ क्योंकि मैंने इतने सारे गीत आपको सुनाए हैं और तो

0: लगे। अब अकेले बैठे बैठे दीवार आखिर कब तक घूरे?
1: अकेले? मगर पल्लू कहाँ है?
0: कहकर तो गई थी कि क्लब जा रही है, मगर इस समय कहाँ है वो नहीं मालूम।
1: ओहो, ये अच्छी छुट्टियां बिताने आए हैं आप दोनों मियां बीबी नैनीताल। एक पूरब को जाता है, दूसरा पश्चिम को। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता।
0: समझ में तो मेरी भी कुछ नहीं आता मीनाक्षी, इसलिए मैंने तो समझने की कोशिश ही छोड़ दी है। पर एक बात बताओगी?
1: पूछिए।
0: कुछ चाय वाय पिलाने का प्रोग्राम हो सकता है क्या?
1: ओ श्योर श्योर, क्यों नहीं। जरा कपड़े बदल लूं, दिन भर के पहनी हुई साड़ी है ना।
0: अच्छी बात है, तुम साड़ी बदल कर आओ, तब तक मैं किचन में जाकर गैस पर पानी रखता हूँ।
1: क्यों, आप क्यों? ये काम आपका नहीं है, और आप तो वैसे भी मेहमान है मेरे।
0: मेहमान तो इस दुनिया में सभी हैं मीनाक्षी देवी।
1: बस बस, रहने दीजिए, अब फिलॉसफी की क्लास मत शुरू कीजिए। वैसे ही दिन भर स्कूल में पढ़ा कर आ रही हूँ।
0: पढ़ा कर आ रही हो क्या, इसीलिए मुझे भी स्टूडेंट समझकर डांटोगी?
1: नहीं बाबा, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप चुपचाप बैठिए, चाय मैं बनाऊंगी।
0: चाय भले ही तुम बनाओ मीनाक्षी, पर चुपचाप बैठने के लिए मत कहो, सारा दिन बीत गया है बिना बोले।
1: पल्लू क्या सुबह ही चली गई थी?
0: गई तो तीसरे पहर थी, मगर दो पहर तक सोई, उसके बाद घंटे भर नहाई, फिर घंटे भर श्रृंगार किया, फिर चली गई।
1: दिल्ली में भी ऐसे ही चलता है क्या?
0: कभी खुद ही आकर देखो ना।
1: यानी अगर खुद आकर देखना मुमकिन नहीं हो तो आप बताएंगे नहीं?
0: बताने जैसा कुछ है ही क्या।
1: सच कह रहे हैं, कुछ नहीं है।
0: देखो, अब तुम चाय बनाने की बात को गोल मत करो।
1: ओह सॉरी, मैं चेंज करके ये आई।
0: और मैं किचन में ये गया।
1: जाइए, मगर कीजिएगा कुछ नहीं।
0: नहीं करूंगा बाबा, मगर वहाँ बैठकर तुम्हें चाय बनाते हुए देख तो सकता हूँ।
1: ओहो, मुझे देखने का प्रोग्राम है, तब तो जरा बन संवर कर आना पड़ेगा।
0: जैसे भी जाइए, अब आप जल्दी से जाइए और खटक से आइए।

0: पल्लू, क्या तुम सचमुच खाना नहीं खाओगी?
1: अरे कहा ना बाबा, मिसेस सिन्हा ने मुझे आज इतना इतना खिला दिया है कि लगता है कल तक भूख ही नहीं लगने वाली।
0: हम लोग तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे।
1: अच्छा,
0: मालूम है आज जीजा जी ने अपने हाथों से आलू के पराठे बनाए हैं।
1: ओहो, तो फिर अभी तक खाए क्यों नहीं?
0: तुम्हारा इंतजार कर रहे थे ना।
1: लेकिन प्रभाकर को तो मालूम था कि आज मेरा डिनर मिसेस सिन्हा के साथ है।
0: ये मिसेस सिन्हा से बड़ी जल्दी दोस्ती कर ली तुमने। अभी 10 दिन ही तो हुए हैं तुम्हें नैनीताल आए हुए।
1: अरे 10 दिन तो बहुत है यार, दोस्ती तो 10 मिनट में हो सकती है।
0: कभी कभी तो 10 बरस में भी नहीं होती पल्लू।
1: हाँ, नहीं होनी हो तो 10 जन्म तक नहीं होती। पर तू जाना, आ जाके पराठे खा ले, मैं तो जरा देर रजाई में बैठूंगी। हाथ पांव तो सुन हुए जा रहे हैं। बाप रे बाप, तेरी नैनीताल की रातें तो बहुत ही ठंडी हैं यार।
0: कॉफी पियोगी क्या?
1: कॉफी तो ऐसा कर, पहले तुम लोग जाके खाना खा लो।
0: मेरी एक बात मानिए जीजा जी।
2: कौन सी?
0: आप एक पराठे की दुकान खोल लीजिए, गर्मा गर्म आलू के पराठे। हा हा हा, मजा आ गया।
2: अच्छे लगे तुम्हें?
0: कह तो रही हूँ, मैं आपकी दुकान की परमानेंट ग्राहक बनने को तैयार हूँ।
2: ना बाबा ना, तुम जैसी पेटू को ग्राहक बनाकर दिवाला नहीं निकालना मुझे अपनी दुकान का।
0: क्यों क्यों क्यों?
2: क्योंकि तुम खाओगी उधार और मेरा हो जाएगा बंटा ढार।
0: बंटा ढार तो लगता है आज अपना हो गया है। ओ, इतना खा लिया है कि अब उठा भी नहीं जा रहा।
2: तुम मत उठो ना, बैठी रहो, कुछ देर और बातें करते हैं।
0: यहाँ डाइनिंग टेबल पर? मालूम है क्या टाइम हो गया है? 9 बज चुके हैं रात के, और सर्दी के मारे कुल्फी जमी जा रही है। चलकर बिस्तर में सोइए, पल्लू आपका इंतजार कर रही है।
2: करने दो, मैं भी तो करता हूँ रोज रोज उसका इंतजार।
0: 10 दिन हुए हैं आपको नैनीताल आए हुए, और इन 10 दिनों में एक दिन भी आप दोनों को नॉर्मल नहीं देखा। इतने खींचे खींचे, आखिर बात क्या है?
2: बात क्या है यही तो मेरी समझ में नहीं आता मीनाक्षी, कि आखिर बात क्या है। कभी कभी जिंदगी में बात बस इतनी ही होती है कि कोई बात नहीं होती। नो कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बना रहे तो बात भी बनी रहती है, लेकिन
0: क्या हुआ? कुछ कह रहे थे आप?

0: लेकिन क्या?
1: इस लेकिन के आगे कुछ नहीं है मीनाक्षी। जिंदगी में आदमी बहुत कुछ चाहता है, पर उसके रास्ते में जगह जगह लेकिन खड़े होते हैं। सारी कामनाएं एक लेकिन तक आकर रुक जाती हैं। मैंने भी शादीशुदा जिंदगी के बहुत मीठे मीठे सपने देखे थे। सपनों में प्यार के बादलों पर उड़ा था, रोमांस की हवाओं में तैरा था, लेकिन लेकिन सपना तो बंद आंखों से देखा जाता है ना, आंखें खोलने पर तो कमबख्त जिंदगी नजर आ जाती है।

0: जीजा जी, अरे कहाँ है?
1: मैं यहाँ हूँ मीनाक्षी, छत पर।
0: ओ ऊपर, मैं आपके लिए कॉफी लाई थी।
1: यहाँ ऊपर ही ले आओ, आज की धूप बहुत मजेदार लग रही है।
0: वो तो होगा ही, आज संडे जो है, संडे तो सूरज का दिन होता ही है।
1: संडे छुट्टी का दिन भी तो होता है, जिसकी बदौलत तुम दिन भर घर में ही होती हो।
0: लेकिन मैं दिन भर घर में हूँ, क्या इसलिए आप ऊपर छत पर आ गए?
1: वो बात नहीं है, एक तो धूप में अच्छा लग रहा था, दूसरे तुम्हारे घर की इस छोटी सी छत पर आकर लगता है जैसे यहां से सारी दुनिया दिखाई देती है। देखो ना, दूर दूर तक बिछी चांदी के माथे वाली पहाड़ियां, पहाड़ियों से गलबैया डालकर लेटे रास्ते, और ऊपर इस कोने से उस कोने तक तना हुआ नीला कच्चा आसमान। सच मीनाक्षी, इतना बड़ा आसमान मैंने कभी नहीं देखा। शहर के आसमान को तो इमारतों की ऊंचाइयां खा जाती हैं, लेकिन यहां बैठकर जी करता है कि इस ढेर सारे आसमान की ताजी हवा को तलछट तक पी जाऊं।
0: लेकिन श्रीमान जीजा जी, फिलहाल आपको ये कॉफी पीनी है।
1: कॉफी? हाँ हाँ हाँ, लाओ लाओ लाओ भाई, इस कुनमुनी धूप में गुनगुनी कॉफी, जानती हो कैसी लगती है?
0: जैसे रजाई ओढ़कर पानी के टब में बैठे हो। भाई हंसो मत, अपन तो पहले ही कहते हैं कि कविताबाजी में बात करना अपने बस का नहीं। आपकी तरह कोई कवि या फिलोसफर तो है नहीं हम, बस सीधे सादे म्यूजिक टीचर हैं। सरगम चाहे सीधी गवा लो चाहे उल्टी, वही सात सुर आते हैं अपन को तो।
1: सात सुर तो बहुत हो गए मीनाक्षी, जीवन को सुरीला बनाने के लिए तो एक सुर का आना ही काफी है।
0: सुर का आना नहीं, सुर का मिलना।
1: हाँ, शायद ठीक कहती हो, मेरी बेसुरी जिंदगी का शायद यही कारण है कि मेरा और पल्लवी का सुर कभी मिला ही नहीं।
0: वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं तार ढीला है, पर मैं पूछती हूं क्यों, आखिर इसका कारण क्या है?
1: कारण? मेरे और तुम्हारे सुर के मिलने का कारण क्या है?
0: जीजा जी,
1: मन के तार सितार के तारों की तरह मुर्दा नहीं होते मीनाक्षी, उन्हें कसने के लिए किसी औजार की जरूरत नहीं पड़ती।
0: मैं नीचे जाती हूँ।
1: ठहरो मीनाक्षी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ।
0: कोई ऐसी बात मत कहिए जीजा जी, जिसे सुनना मेरे लिए गलत हो।
1: तुम मुझे नाम लेकर क्यों नहीं बुलाती?
0: यही कहना था?
1: नहीं, कहना तो पता नहीं क्या था, लेकिन ये बताओ, अपने मेहमान को नैनीताल की सैर नहीं करवाओगे?
0: जी,
1: मेरा मतलब है आज तुम्हारी छुट्टी है, मौसम भी अच्छा है, कहीं घूमने नहीं चल सकते क्या?
0: एक शर्त पर, कि आप मुझसे ऐसी वैसी कोई बात नहीं करेंगे।
1: इस शर्त पर नहीं करूंगा कि तुम मुझसे कोई ऐसी वैसी बात नहीं पूछोगी।
0: जाने दीजिए, शर्तों का बंधन कोई अच्छी बात थोड़ी ही है।

0: कौन सी बात?
1: यही कि जब तुम यूं तुनकती हो तो...
0: तुनकती मतलब?
1: हाँ, मतलब जब तुम यूं किसी बात पर चिढ़कर नाक सिकोड़ती हो
0: तो
1: बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे तुम पहाड़न हो।
0: पहाड़न हो? ये क्या बात हुई? मैं तो हूं ही पहाड़न। पहाड़ में पैदा हुई, पहाड़ में पली बढ़ी और पहाड़ में ही एक दिन देखना मरूंगी भी।
1: अरे भाई, अब देखो ये मरने वरने की बात मत करो।
0: अच्छा बाबा, नहीं करूंगी, तो भी रहूंगी तो पहाड़न ही। आपकी तरह पहाड़ थोड़े ही हो जाऊंगी।
1: पहाड़? मैं तुम्हें पहाड़ जैसा दिखता हूँ?
0: हाँ, ज्वालामुखी पहाड़।
1: ज्वालामुखी पहाड़।
0: और नहीं तो क्या, जैसे ज्वालामुखी पहाड़ को ऊपर से देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि उसके भीतर कितनी आग है। आपका भी वही हाल है। भला इस तरह आपको हंसता देखकर कौन कहेगा?
1: कहो ना, रुक क्यों गई?
0: कुछ नहीं, ऐसे ही, पागल हूं मैं भी।
1: नहीं मीनाक्षी, पागल नहीं हो तुम। तुम एक बेहद सेंसिटिव लड़की हो। ये पानी की धारा देखती हो? बिल्कुल इस पानी जैसी हो तुम, एकदम स्वच्छ निर्मल। कुछ भूलोगी नहीं।
0: शाम होने वाली है।
1: हाँ, वो नीचे अंधेरा धीरे धीरे सिर उठा रहा है।
0: और ऊपर ऊपर आसमान में भी तो देखिए कितनी रोशनी है, जैसे किसी ने सोने की पुताई कर दी हो।
1: मगर ये केवल थोड़ी ही देर, अभी देखते ही देखते सब कालिक में बदल जाएगा।
0: हमेशा बुझी बुझी निराशा फैलाने वाली नेगेटिव बातें ही करें, ये क्या जरूरी है?
1: कतई नहीं, और खास तौर पर जब तुम साथ हो तब तो बिल्कुल नहीं।
0: तो फिर?
1: तुम्हें कहा था कि ज्वालामुखी पहाड़ हूं मैं क्या करूं, कभी कभी अनजाने में ही भीतर का लावा फूट पड़ता है।
0: अच्छा पहाड़ साहब, अब इधर से आइए।
1: इधर? मगर पहाड़ जी, ये रास्ता तो लगता है कि किसी भूतिया हवेली की तरफ जाता है।
0: जी नहीं, ये शॉर्टकट है मंदिर का।
1: मंदिर?
0: हाँ, देवी का मंदिर। आइए।

0: ओहो, बोर कर दिया आपने तो।
1: क्यों भाई?
0: पिछले घंटे भर से बस यही पूछे जा रहे हैं, इस पेड़ का नाम क्या है, इस फूल को क्या कहते हैं, ये किस चिड़िया की आवाज है, ये रास्ता कहाँ जाता है। इसके अलावा जैसे करने को कोई बात ही नहीं है।
1: है क्यों नहीं? चलो तुम्हारी बात करते हैं।
0: मेरी?

0: कितना अच्छा लगता है ना, यहाँ इस समय रोज इसी तरह पूजा होती है। ये मंत्रों का स्वर, लोबान का धुआं, मंदिर का आंगन, सब कितना अच्छा लगता है, नहीं?
1: मुझे नहीं लगता।
0: अरे क्यों?
1: देवी देवताओं पर मेरा कतई विश्वास नहीं है।
0: एकदम नास्तिक है।
1: टोटल। इन पत्थर की मूर्तों की जगह मैं इंसानों में ज्यादा विश्वास करता हूँ।
0: धीरे बोलो, अगर देवी ने सुन लिया तो नाराज हो जाएंगी।
1: फिर क्या करेंगी नाराज होकर?
0: वो जो देवी बैठी है ना घर में, पल्लू देवी, उसे आपके खिलाफ भड़काकर चंडी देवी बना देंगी। क्यों हंसे क्यों?
1: भाई पल्लवी को तुमने पल्लू देवी अच्छा कहा। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो?
0: कुछ नहीं, आप हंसते हैं तो अच्छा लगता है।
1: अरे हंस लेते हैं हम भी कभी कभी, जब तुम जैसा कोई साथ हो तो।
0: वो नीचे किसी की शादी हो रही है।
1: हाँ, घोड़े पर दुल्हन बैठी हुई है।
0: घोड़े पर नहीं, घोड़ी पर। और दुल्हन नहीं, दूल्हा। जिसे आप घूंघट समझ रहे हैं वो सेहरा है जनाब।
1: अच्छा भाई, वो इतनी दूर है ना, तो मैं समझा के। और क्या है कि ये अंधेरा है ना, तो पेट्रोमैक्स की रोशनी में कुछ ठीक से। वैसे एक सच्ची बात बताऊं तुम्हें, मुझे शादी ब्याह के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसलिए ये सेहरा और ये।
0: हद हो गई, आखिर आपने भी तो शादी की थी, घोड़ी पर बैठे थे या मोटर में?
1: कुछ और बात करूं मीनाक्षी।
0: सुबह से देख रही हूँ, जब भी आपकी और पल्लवी की शादी के बारे में कोई बात शुरू करती हूँ आप टाल जाते हैं। आखिर बात क्या है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं।

0: याता।
1: इतने दिनों से देख तो रही हो, अब भी क्या कुछ कहने पर ही समझोगी?
0: समझना नहीं, जानना चाहती हूँ।
1: जानकर क्या करोगी? और उससे होगा भी क्या?
0: होगा भी क्या? शायद ठीक सोचते हैं आप, मेरे किए क्या हो सकता है। और शायद इसीलिए आपकी शादी के बारे में सवाल करने का मुझे कोई अधिकार भी नहीं।
1: नहीं नहीं, वो बात नहीं है, आखिर तुम बहन हो पल्लवी की।
0: हाँ बहन हूँ, मगर मौसेरी। पल्लवी मेरी मौसी की लड़की है।
1: तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हें सगा मानता हूँ।
0: सगा? सगा मानते हैं किस रिश्ते से?
1: रिश्तों के क्या नाम होना जरूरी है मीनाक्षी?
0: पता नहीं।
1: कहने को पल्लवी मेरी पत्नी है, पर पत्नी क्या ऐसी होती है? सच पूछो तो मेरी और पल्लवी की शादी दो परिवारों के बीच हुआ एक सामाजिक समझौता है।

0: बीच हुआ एक सामाजिक समझौता है। शादी के बावजूद पल्लवी ने अपनी जिंदगी में कुछ भी खोया नहीं और मैंने शादी के बावजूद अपनी जिंदगी में कुछ भी पाया नहीं। इसे रिश्ता कौन कहेगा? तुम तो पल्लवी को शुरू से जानती हो ना मीनाक्षी।
1: नहीं तो आपकी शादी से पहले शायद एक दो बार ही मुलाकात हुई थी। मैं तो बचपन से यहाँ नैनीताल में ही पली बढ़ी और पल्लवी दिल्ली में रहती थी। बस कभी कभार मौसी के साथ यहाँ घूमने आती थी।
0: लेकिन पल्लवी तो कहती है कि उसकी और तुम्हारी खूब जमती थी।
1: जमती थी? पता नहीं।
0: देखो मीनाक्षी, तुमने पल्लवी के और मेरे बारे में पूछा है तो एक बात मैं भी पूछूंगा।
1: पूछिए।
0: तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की?
1: जी
0: अपना सवाल दोहराऊं मैं?
1: बर्फ का पहाड़ पंजर होता है प्रभाकर बाबू, बर्फ में फूल नहीं खिलते।
0: अगर बर्फ पिघल कर धरती में जज्ब हो जाए तो?
1: रोज रोज कहां होता है ऐसा। बस एक बार हुआ था मेरे साथ भी। कई बरस हो गए उस बात को, अब तो लगता है जैसे पिछले जन्म की बात है। तब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी। पल्लवी गर्मियों की छुट्टी में नैनीताल आई हुई थी और उस बार वो अकेले

0: साले तू। हाय सच्ची मीना, तेरा गाना सुनकर तो साले दिल का इना मीना डिका हो जाता है।
1: रहने दे, झूठी तारीफ करने से जुबान कट जाती है।
0: ले, ये झूठी तारीफ है? मुझे अगर थोड़ा सा भी गाना आता ना तो हाय हाय हाय आशिकों की लाइन लगा देती।
1: छी, कैसी बातें करती है।
0: अरे तू क्या जाने, हाय हाय हाय सच कहो मीनाक्षी, अगर तो ये चश्मा ना लगाती और तेरे चेहरे पर ये दो चार चेचक वाले दाग नहीं होते ना, तो अपनी सुरीली आवाज की रस्सी में 20 लड़के बांध सकती थी तू।
1: लगता है तूने कई बांध रखे।
0: अरे अपन को साला गाना आता ही कहाँ है मीनाक्षी।
1: नहीं आता तो सीख ले।
0: नॉट ए बैड आइडिया। अच्छा चल ठीक है, इधर ला अपना सितार।
1: सितार नहीं, तानपुरा।
0: अरे हाँ हाँ यार, वो एक ही बात है, सितार कहो या तानपुरा, पर वो किधर गई तेरी सरगम वाली वो कॉपी? पता नहीं कहाँ रख देती है। हाँ ये रही। अब बोल बोल ना यार, कौन सा राग गाऊं? अरे
1: नहीं,
0: बोल ना।
1: नहीं नहीं ये कॉपी मुझे दे।
0: हाँ मेरा राग भी तो सुन लेना कॉपी में से। अरे छुपी रुस्तम, कॉपी में ये फोटो किसका है?
1: मैं कह रही हूँ दे दे ये फोटो मुझे।
0: तो ये बात है बच्चू, इस फोटो का जादू है। हाय हाय मैं भी तो कहूँ, गले में से ऐसे ऐसे मीठे सुर कैसे फूट रहे हैं।
1: मैं कहती हूँ पल्लू फोटो मुझे दे दे।
0: अरे देती हूँ बाबा, देती हूँ ना, देख ले तो कोई अच्छी तरह से।
1: बस हो गया, अब दे दे।
0: हो गया, ये तो मैं समझ गई जाने मन, पर ये बता मेरी जान कब हुआ?
1: देख पल्लू तू
0: कब से चल रहा है तेरा ये मामला?
1: 3-4 महीने से।
0: अच्छा तो ये भी तो बता दे, कौन है ये तेरा बांका?
1: लड़का है।
0: अरे हाँ हाँ वो तो मैं भी देख रही हूँ, मगर इसका नाम क्या है?
1: शेखर।
0: शेखर तेरी क्लास में पढ़ता है?
1: सीनियर है।
0: ये भी गाना गाता है क्या?
1: नहीं, सुनने का शौकीन है।
0: हाय भाई है तो बहुत शानदार, पर असलियत में भी इतना खूबसूरत है क्या? सिर्फ फोटो में ही दिख रहा है,
1: देखकर बताना।
0: अरे यार यही तो मैं पूछ रही हूँ, कब मिलवाएगी?
1: शाम को।
0: अच्छा।

0: चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने का। जरा एक मिनट ठहरो ना।
1: क्यों, क्या हुआ?
0: देखो ना, यहाँ से नीचे झील कितनी सुंदर लग रही है, जैसे चांदी का फर्श हो।
1: मालूम है, अगर यहाँ से पांव फिसल गया तो इस चांदी के फर्श तक पहुँचते पहुँचते हड्डी पसली के कितने टुकड़े होंगे।
0: अगर तुम साथ रहो तो फिर हो जाए टुकड़े, किसे परवाह है।
1: जाने दो, आगे चलते हैं।
0: ओके।
1: अच्छा ये बताओ कि अब वो यहीं रहेगी?
0: कौन?
1: अरे वही तुम्हारी हिस्टोरिकल बहन पल्लवी।
0: यहाँ? यहाँ क्यों रहेगी, वो तो दिल्ली में पढ़ती है ना, यहाँ तो सिर्फ छुट्टियां बिताने आई है।
1: मतलब महीने भर रहेगी?
0: हाँ महीने भर तो जरूर रहेगी, मगर क्यों?
1: नहीं ऐसे ही, बहुत सुंदर है तुम्हारी बहन, बिल्कुल जैसे अजंता एलोरा की गुफाओं से निकल कर आई हो।
0: सगी थोड़े ही है, मेरी मौसी की लड़की है।
1: आई नो, सगी होती तो तुम्हारी सूरतें इतनी अलग अलग थोड़ी ही होती। अच्छा एक बात बताओ, तुम ये बालों के जूड़ी से क्या बना लेती हो, पल्लवी की तरह पोनीटेल क्यों नहीं करती?
0: तुम्हें अच्छी लगती है तो अब किया करूंगी।
1: कल झील में बोटिंग के लिए चले?
0: कल बोटिंग? लेकिन पल्लवी आई हुई है ना।
1: तो क्या हुआ, उसे भी साथ ले लेंगे, एक से भले तो से भले तीन।
2: अरे मीनू की बच्ची, अभी तक किताबों में घुसे हुए, कब तक पढ़ती रहेगी? तुझे मालूम है ना कल मैं दिल्ली वापस जाने वाली हूँ।
0: वो तो ठीक है पल्लू, मगर इम्तिहान भी तो सर पर है।
2: इसीलिए आजकल किताबों का कीड़ा बनी हुई है, बाहर आना जाना सब बंद।
0: तेरे पास भी तो फुर्सत नहीं है मेरे से बात करने की।
2: अरे यार मैं तो आई ही मस्ती मारने हूँ। और फिर अपना तो ये है कि मौज कर लो जितनी कर सकते हो, ये दिन कोई साले लौट कर तो आने वाले है नहीं।
0: अपना अपना नजरिया है, मैं तो समझती हूँ आने वाले कल को खुशनुमा बनाना हो तो आज थोड़ी मेहनत करनी ही पड़ती है।
2: अरे रहने दे यार अपनी ये फिलोसफी, आने तो भूख आज लगी है और तू कहती है रोटी कल खाएंगे।
0: तुझे क्या पता, एक दिन उपवास रखो तो अगले दिन खाना खाने में ज्यादा मजा आता है।
2: अब छोड़ना यार ये बुढ़ियों वाली व्रत उपवास की बातें, आई डोंट लाइक ऑल दिस थिंग। इन्हीं बातों ने ना तुझे मरगिल्ली बना रखा है। देख देख देख, मेरे जैसे जिंदा दिल होती ना तो किताबों में आंखें गढ़ा कर चश्मे का नंबर बढ़ाने की बजाय रोज शाम को किसी बॉयफ्रेंड के साथ डिस्कवर डांस करते हुए नजर आती।
0: ना बाबा ना, ये सब ना मुझे अच्छा लगता है और ना ही शेखर को।
2: शेखर को? तो क्या तू अभी तक शेखर के नाम की माला जप रही है?

0: कल तुमने अपनी जिस बहन से मिलवाया था, क्या नाम है उसका?
1: पल्लवी।
0: हाँ, पल्लवी। कितना नया नाम है। नहीं
1: नहीं नया काहे को, हिस्टोरिकल है।

0: वो हंसी आज भी जैसे मेरे कानों में गूंजती है प्रभाकर बाबू, जैसे वो हंसी पल्लवी की नहीं मेरी तकदीर की थी, जो किसी श्राप की तरह मेरी जिंदगी पर छा गई। कितनी मूर्ख थी मैं, जो आईने में अपनी सूरत देखकर भी किस्मत पर शक नहीं हुआ। मुझे इतना भी ख्याल नहीं आया कि रेगिस्तान में सैर करने कोई नहीं आता, सब अजंता एलोरा जाना चाहते हैं।
1: सब नहीं मीनाक्षी, सिर्फ वो ही जो शेखर होते हैं, और शेखर हर कोई नहीं होता।
0: क्या पता कौन कैसा है, ये परखने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई। बाद में एक अजीब सा डर था जिसे सीने में दबाए जिंदगी की डगर चुपचाप चलते चलते 35 बरस पार कर गई हूं, मगर पल्लवी की वो हंसी जैसे आज भी किसी प्रेत की तरह दोनों हाथों से मेरी गर्दन दबाए हुए है।
1: मेरी तरफ देखो मीनाक्षी, मेरी आंखों में देखो, क्या इन आंखों में तुम्हें कहीं झूठ की छाया दिखाई देती है?
0: कहना क्या चाहते हो?
1: दिल की पूरी सच्चाई से मैं ये कहना चाहता हूं मीनाक्षी कि तुम बहुत सुंदर हो
0: प्रभाकर।
1: एक दिन पल्लवी ने

0: से शेखर को छीना था, क्योंकि शेखर की नजरों में पल्लवी ज्यादा सुंदर थी और आज उसी पल्लवी का पति तुम्हारी सुंदरता के आगे बिकने को तैयार है।
1: नहीं, सूखे पेड़ से तो किसी को छांव भी नहीं मिलती। प्रभाकर बाबू,
0: मैं तुमसे कुछ मांग नहीं रहा हूं मीनाक्षी, मैं तो चाहता हूं कि अपमान के उस प्रेत से तुम्हें मुक्त कर दूं जिसने तुम्हारी गर्दन दबाई हुई है।
1: नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अपमान के जिस शहर ने मुझे जीवन भर तड़पाया है, उसे मैं पल्लवी के गले में कैसे उड़ेल दूं? पल्लवी आखिर मेरी बहन है। इस शहर को तो मैं किसी पेड़ की जड़ों में भी नहीं डाल सकती, कभी नहीं, कभी नहीं। ढूंढ होकर जीने का दर्द मुझसे ज्यादा और कौन जानेगा, कौन जानेगा।

0: सूखा पेड़। अभी आपने ये नाटक सुना। लेखक और प्रस्तुतकर्ता थे लोकेंद्र शर्मा।
1: ये है विविध भारती। उजाले

0: श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में इन दिनों जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले हमारे साथ बांट रही हैं उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। आइए सुनते हैं इस लंबी बातचीत की चौथी और अंतिम कड़ी।
1: पूरे एक दौर की हम बात कर रहे हैं, सदाशिव अमरापुरकर जी की पूरी यात्रा, जहां पर वो एकदम विलेन के रोल से कॉमेडी रोल्स की तरफ चले आते हैं और फिर वो मराठी सिनेमा में अपनी पसंद का अलग अलग तरह का काम कर रहे होते हैं। इतने बरस हो गए थे सिनेमा में काम करते हुए और कई बार एक एक जैसा काम भी हो रहा था। क्या ये वो दौर था 90s का जब उनके भीतर एक तरह का असंतोष आना शुरू हुआ था?
2: डेफिनेटली, क्योंकि ये किसी भी कलाकार के लिए एक ही तरह का काम करना ये एक बहुत बड़ी शिक्षा होती है। मराठी में शिक्षा कहते हैं, उसका मतलब है पनिशमेंट,
1: सजा।
2: सजा किसी भी संवेदनशील कलाकार के लिए ये एक सजा होती है। और रेस्टलेसनेस तो डेफिनेटली उनमें आ ही रहा था, पर जैसा मैंने कहा कि उन्होंने ये मान लिया था कि मुझे मेरा घर, मेरे परिवार के लिए अगर पैसे कमाने हैं तो मुझे ये करना है। ये उन्होंने एक पॉइंट पे मान लिया था और उन्होंने वो निभाया। लेकिन जैसे हमने बात की कि आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्में करते वक्त वो वास्तु पुरुष दोगी जैसी फिल्में कर रहे थे, वैसे ही आउट एंड आउट कमर्शियल काम करते वक्त, विलनी का काम करते वक्त भी वो सामाजिक कामों में खुद को बहुत बिजी रखते थे। तो उनकी लाइफ में हमेशा ही दो ट्रैक चलते थे, हालांकि तीन ट्रैक भी कह सकते हो फैमिली का अगर ट्रैक पकड़ा जाए तो, वरना करियर वाइज अगर देखा जाए तो दो ट्रैक्स उनके चलते थे। एक तो जो कमर्शियल काम वो करते थे वो, और दूसरा जो सामाजिक काम करते थे वो। उन्होंने कभी सामाजिक काम की तरफ करियर के तौर पर नहीं देखा, उन्होंने हमेशा उसे एक जिम्मेदारी, एक कलाकार, और अगर मैं आज कुछ हूँ, अगर मैं जो कहता हूँ, मेरे कहने को अगर कुछ वजन है तो उसका उपयोग मैं किस लिए करता हूँ, इस

0: का उन्हें हमेशा ख्याल रहता था और वो करते थे, इसलिए वो सामाजिक कृतज्ञता निधि की हमने बात की वो उनका चल रहा था। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति में भी वो कार्यरत थे। मुक्तांगन डी एडिक्शन सेंटर जो है पूना में, जो पहला डी एडिक्शन सेंटर महाराष्ट्र में बना, उसमें भी वो इन्वॉल्व थे, बिकॉज डॉक्टर अनिल अवचट और सुनंदा अवचट उनके साथ उन्होंने वो किया था। डॉक्टर आनंद नाडकर्णी के साथ इंस्टीट्यूट फॉर साइकोलॉजिकल हेल्थ, सो मेंटल हेल्थ में भी वो काम कर रहे थे। फिर अहमदनगर में रेड लाइट एरिया में स्नेहालय करके एक संस्था है, आज भी है और बहुत अच्छा काम कर रही है, कि जो कमर्शियल सेक्स वर्कर्स हैं उनके बच्चों के लिए वो संस्था ने काम करने से शुरुआत की, और आज के दौर में लगभग 1,000-1,500 बच्चों का, जिनका शोषण अलग अलग तरीके से होता है, जो वायलेंस को फेस कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी वो संस्था काम करती है और बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो अहमदनगर के एक युवक ने जब ये डिसाइड किया कि मुझे ये काम करना है, एक ब्राह्मण युवक ने, ये कहना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये अगेन 90s का दौर है जब जाति व्यवस्था बहुत स्ट्रांग थी, और जैसा मैंने कहा कि अहमदनगर एक बहुत ही पेट्रियार्कल सिटी है, आज भी है। तो उस वक्त एक ब्राह्मण लड़के ने ऐसी बस्ती में जाना और वहां की औरतों के साथ काम करना या उनसे बातचीत करना, ये बहुत ही खराब नजरिए से देखा जाता था। पर जब गिरीश वो काम कर रहे थे और पापा जब भी नगर जाते थे, तो ये जो सारे काम करने वाले लड़के लड़कियां थे, ये पापा को मिलने आते थे कि हम ये काम कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो जब गिरीश आया मिलने, तब गिरीश ने बताया कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूं, और गिरीश पापा के कॉलेज प्रोफेसर के बेटे थे, तो इसलिए उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है। तब पापा ने ये स्टेटमेंट दी हुई थी अहमदनगर के लोकल न्यूज़पेपर्स में कि देखो, ये जो औरतें हैं ये भी हमारे समाज का ही एक घटक है, इसलिए इनके लिए काम करना कोई बुरी बात नहीं है। और फिर अहमदनगर में लोगों का नजरिया धीरे धीरे धीरे धीरे बदलने लगा। फिर पापा स्नेहालय के ट्रस्टी भी बने। फिर कुछ दिनों के बाद वो वहां से निकल गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब संस्था अगर खुद से चल रही है तो मेरे होने की जरूरत नहीं है। पर वहां पर आमिर खान को ले जाना हो, सत्यमेव जयते में बिल्कुल पहले एपिसोड में स्नेहालय की केस स्टडी है,
1: बिल्कुल
0: तो आमिर खान को ले जाना हो या श्याम बाबू को ले जाना हो, ऐसे बड़े बड़े लोगों को उस वक्त वो अहमदनगर लेके जाते थे, ये देखो ये ऐसे काम कर रहे हैं बच्चे, इनको ऐसे हम लोगों ने मदद करनी चाहिए, इस तरह से उनका काम चलता था। तो हालांकि कलाकार के तौर पर थोड़े से अनसेटल्ड वो हो रहे थे, क्योंकि उनकी जो रेंज थी, जिस तरह काम करने की उनकी क्षमता थी, उतना काम उन्हें उस वक्त नहीं मिल रहा था, उतनी रेंज का काम नहीं मिल रहा था, तो वो था। लेकिन वो इन कामों में खुद को बहुत ज्यादा बिजी रख रहे थे, तो इसलिए वो जो एक डिससैटिस्फैक्शन था, वो सैटिस्फैक्शन में इस काम की वजह से वो बदल पा रहे थे।
1: बिल्कुल, इंपॉर्टेंट बातें हुई इस पूरे सेक्शन में, और मुझे लगता है कि अब यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, तो कौन सा गाना होगा?
0: पापा का एक बहुत ही पसंदीदा गाना था, इतनी शक्ति हमें देना दाता,
1: वाह, अंकुश फिल्म का ये
0: अंकुश फिल्म
1: गाना।
0: का।
1: और यहां मैं दो क्रेडिट जरूरी तौर पर याद करना चाहूंगा, इसे अभिलाष जी ने लिखा था और कुलदीप सिंह का संगीत।
0: यस
1: ये गाना सुनते हैं।

0: बहुत मजेदार बातें हुई हैं और चूंकि मेरा काम इन बातों को एक दिशा देना है, मुझे पीछे का एक सूत्र याद है जो हम छोड़ के चले आए थे कि इसकी बात आगे करेंगे, डॉक्टर श्रीराम लागू और सदाशिव अमरापुरकर के रिश्ते की बात।
1: हाँ जी डॉक्टर लागू अब कैसे बताऊं मैं, जैसा मैंने मेरे शो में भी कहा हुआ है, उन्होंने कन्यादान प्ले जो था वो एक साथ किया,
0: तेंदुलकर वाला,
1: और उसमें डॉक्टर लागू को निर्देशित किया था पापा ने।
0: ये बहुत बड़ी बात बहुत मानी बड़ी जानी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर लागू एक दर्जे के कलाकार थे और उनको डायरेक्ट करना कोई आसान
1: काम
0: नहीं,
1: और उन्होंने मानना कि ये युवक है और ये मुझे डायरेक्ट करेगा
0: जी।
1: ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है, अपने आप में एक कॉम्प्लीमेंट है। तो उन्होंने उनके साथ काम किया हुआ था, जैसा मैंने कहा कि डॉक्टर लागू ऑलरेडी सामाजिक कामों में काफी बिजी थे और काफी इन्वॉल्व थे, तो ये जो बात है ना जो पापा के अंदर थी, पर उस बात को हवा देना, उस चिंगारी को हवा देने का काम डॉक्टर लागू और निरू भाऊ ने किया कि हम कलाकार हैं और हमें समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है तो वो हमें निभानी है। तो इस तरह से पूरी तरह से उन्हें सामाजिक विचारधारा में और सामाजिक कामों में खींचने का काम डॉक्टर लागू ने किया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगी कि डॉक्टर लागू अगर नहीं होते तो शायद हमारा परिवार फिर से अहमदनगर, मतलब अहिल्यानगर हम जैसे कहते हैं, फिर से अहिल्यानगर जा चुका होता। क्यों? क्योंकि जब हमें वो किराए का घर छोड़ना पड़ा और पापा ने सीएम के पास जाकर तेंदुलकर साहब ने उन्हें चिट्ठी दी थी, तो म्हाड़ा

0: पक्का घर भी अगर लेना हो तो आपको डिपॉजिट भरना पड़ता है, और उस समय इतना पैसा नहीं था पापा के पास कि हम घर ले पाए या डिपॉजिट भर पाए। तब पापा ने जाकर डॉक्टर लागू को रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने 2 मिनट के अंदर लाके उन्हें वो पैसे दे दिए थे और वो फिर वो डिपॉजिट भर पाए और हमारा घर हो पाया। ये एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन डॉक्टर लागू की हमारे परिवार के जीवन में रही है। और दूसरी एक जो बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो डॉक्टर लागू की वजह से पापा करने लगे और कर पाए, वो बात ये थी कि जो भी तुम कहना चाहते हो वो ठीक ठीक कहो। अभी ये हुआ है कि हम लोग काफी डिप्लोमेटिक हो गए हैं। एक समय था जब कलाकार पॉलिटिशियंस सब लोग एक साथ बैठकर एक दूसरे की खिल्ली उड़ाया करते थे, आज वो दौर नहीं रहा। तो वो समय था जब डॉक्टर लागू ने पापा को बताया था कि तुम कलाकार हो, तुम नेशनल लेवल पर काम कर रहे हो, तुम काम बहुत करोगे, अपनी इंडस्ट्री ऐसी है कि आपको सबको खुश रखना होता है, पर ये कभी मत भूलना कि तुम्हें ये जो शोहरत मिली है, तुम ये जो मशहूर हुए हो, ये एक इट्स अ वेपन, इसका इस्तेमाल तुम्हें किस चीज के लिए करना है ये तुम डिसाइड करोगे। तो इसलिए कभी भी जब भी मौका मिले और सच की और तुम्हें खड़ा रहने का चांस मिले तो डेफिनेटली खड़े रहना। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख जो डॉक्टर लागू ने खुद के बर्ताव से भी हमेशा सामने लाई हुई है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो वो डॉक्टर लागू से सीखे पापा, ये बहुत जरूरी है। और मुझे खुशी इस बात की होती है कि ये जो सीखे पापा को मिली वो उन तक सीमित नहीं रही, वो उन्होंने अपने बर्ताव से, अपने जीवन से और अपनी बातों से हम तक भी वो पहुंचाई। मुझे याद है जब पापा गुजर गए थे और निखिल वागड़े जी आए थे कि श्रद्धा सभा में, और तब उन्होंने कहा था कि अब हम मराठी न्यूज चैनल्स अगर कुछ गलत हो रहा है तो ऐसा बड़ा नाम बचा ही नहीं है जो हमें रिएक्शन देगा,
1: विरोध करेगा,
0: जो विरोध करेगा या सामान्य आदमी को, नागरिक को क्या लग रहा है इसके बारे में बात करेगा, ऐसी आवाज ही नहीं बची है। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो पापा ने बखूबी निभाई। जब अण्णा हजारे जी का अनशन उन्होंने किया था दिल्ली में, तब भी महाराष्ट्र में वो हवा बनाए रखने में पापा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है उस वक्त।
1: घर की एक बात मुझे याद आई कि बाद के दिनों में ऐसा हुआ था कि किसी ने उनको सुझाव दिया था कि सरकार कलाकार कोटे से बड़े घर या बंगलो देती है और उन्होंने रिफ्यूज किया था कि मैं वो नहीं कर सकता।
0: करेक्ट। पापा एक ऐसे कलाकार है, आई थिंक एक अकेले ऐसे कलाकार है जिन्हें म्हाड़ा के 2% में से घर मिला था। और जब उन्होंने खुद का घर खरीदा बाद में, तब उन्होंने वो म्हाड़ा को वापस कर दिया।
1: गजब।
0: हालांकि उन्होंने उसके लिए पैसे भी भरे थे, सब कुछ था, पर उनका कहना था कि जब मुझे जरूरत थी तब मुझे ये मिला था, तो आज किसी और को अगर ये जरूरत है तो ये जरूरत पूरी होना ज्यादा जरूरी है।
1: वो आराम से बेच सकते थे पैसे,
0: बेचकर वो ले सकते थे, बिकॉज हम वहां पर 7-8 साल रहे थे, तो जो 4 साल का लॉक इन पीरियड होता है वो भी निकल चुका था, तो वो बेच सकते थे, पर उन्होंने नहीं बेचा, उन्होंने वो वापस कर दिया।
1: गजब।
0: और इसी तरह उस समय अंधेरी में, जो अभी बहुत ही बड़ा एरिया है लोखंडवाला का, उस वक्त म्हाड़ा के छोटे छोटे छोटे छोटे बंगले हुआ करते थे जिनके काफी स्टूडियोज बन चुके थे। फिल्म इंडस्ट्री के काफी लोगों ने वहां पर वो छोटे छोटे म्हाड़ा के घर लेकर बहुत सस्ते में, क्योंकि मिल रहे थे,
1: आज भी मौजूद है,
0: और वहां पर बंगले में स्टूडियोज और ये सब बनाए। तो उस समय जो पापा के सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा सदाजी हम भी ले लेते हैं, एक स्टूडियो बना देते हैं उधर, डबिंग स्टूडियो रहेगा, एडिटिंग स्टूडियो रहेगा, एक इनकम शुरू हो जाएगा। तो पापा ने कहा क्यों मैं करूं ये सब, अगर मैं ये करता हूं तो कोई और जो व्यवसाय के तौर पर करना चाहता है उसका मैं रोजगार छीन रहा हूं जो मुझे नहीं करना है। तो आपके बच्चों के लिए ये, वो मेरे बच्चों को मैं सिखा रहा हूं, वो बड़े होंगे, उनको जितना कमाना है कमाएंगे, नहीं कमाना है नहीं कमाएंगे, दे डोंट नीड टू डू दिस, मैं उनके लिए जागीरें बना के नहीं रखूंगा, ये उनका एक कहना होता था। तो हाँ, उनको हर बार इलेक्शन जब भी होता था तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी से उनको बुलावा आता था कि आप हमारी ओर से खड़े रहिए, आप हमारी ओर से, पापा ने कभी नहीं किया, या कोई भी सामाजिक संस्था में भी उन्होंने कोई भी डेजिग्नेशन नहीं लिया। तो वो कहते थे जो काम करना है ना वो मुझे बताओ, मैं करता हूं, मुझे ये डेजिग्नेशन नहीं चाहिए, आपने मुझे चेयरमैन बना दिया, सेक्रेटरी बना दिया, ये मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज उसके साथ जो जिम्मेदारी

0: आती है, लीगल हैसल्स आते हैं, वो कौन करेगा? बिकॉज जैसा मैंने कहा, वो कलाकार थे,
1: बिल्कुल,
0: उन्हें उनकी कला में रस था और जो अच्छा काम करना है उसमें रस था।
1: क्या बात है।
0: पापा का ये हमेशा कहना होता था कि मेरे बच्चों को जो भी कमाना है वो खुद के बलबूते पर वो कमा लेंगे, मैं उनके लिए जागीरें नहीं रखूंगा। और ये मेरे ख्याल से ये हमारी फैमिली का ही ट्रेडिशन है, बिकॉज मेरे दादाजी का भी यही कहना था कि मैं तो धर्मादाय कर दूंगा सब कुछ, तुम्हें देखो जो करना है, जैसे खुद का घर चलाना है तुम चलाओ, ऐसे ही पापा का भी था। तो जैसा मैंने कहा कि सामाजिक काम भी दादाजी करते थे, वही हमारे घर में चलता आया है, और ये भी वैल्यूज आई थिंक वहीं से आई हुई है।
1: बिल्कुल। रीमा जी, अब हम अपनी बातचीत के लगभग आखिरी मकाम पर आ पहुंचे, जहां एक कठिन बात करनी है, और वो है कि जब सदाशिव जी बीमार पड़े और वो जो पूरा आखिरी दौर है, जाहिर है वो सब आपने देखा है, उन दिनों को थोड़ा याद करें।
0: उन दिनों को याद करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसा मैंने बिल्कुल शुरुआत में कहा था कि पापा की आवाज उनकी ताकत थी, और जब वो बीमार हुए और उनको इंटरस्टेशियल लंग डिसीज करके एक डिसीज होता है, जिसमें अपने जो फेफड़े होते हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है, तो सांस लेना बहुत मुश्किल होता है, और अगर आप में दमसांस नहीं है तो आप आवाज भी नहीं निकाल पाते। तो इसलिए उनकी आवाज धीरे धीरे धीरे धीरे कमजोर होती गई, और ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही ट्रेजिक था। और उस समय उनकी उम्र ही क्या थी, ही वॉज 63, 63 साल के थे वो। आगे और बहुत 10-15 साल तो कम से कम वो काम कर पाते अगर
1: बिल्कुल,
0: उन्होंने डिसाइड किया होता तो। लेकिन वो डिसीज हुआ, सांस लेने में तकलीफ होने लगी, इसलिए वो बात नहीं कर पाते थे, और वो इतने ऑनेस्ट थे कि उनके पास प्रोड्यूसर्स तब भी आते थे कि सदा जी ये छोटा रोल है आप ये कर दीजिए। कई कलाकारों को हम भी जानते हैं जो बीमार होते हुए भी काम करते रहते हैं, पर पापा उनको बोल देते थे कि देखो अगर तुम्हें लगता है मैं उसी तरह से बोलूंगा तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, ये मेरी आवाज की हालत है। इस तरह से वो बहुत ओपनली और क्लियरली बात बताते थे। वो टाइम बहुत ही डिफिकल्ट हम सबके लिए था, बिकॉज आप सोचिए कि एक पहाड़ जैसा आदमी जिसको आपने बचपन से इतना स्ट्रॉन्ग, इतना क्या कहते हैं,
1: जुझारू
0: एक्चुअली और रियल लाइफ में भी, सिर्फ पर्दे पर नहीं, देखा हुआ है, वो जब आपके सामने धीरे धीरे धीरे धीरे वीक होता जाता है तो ये आप सहन नहीं कर पाते, ये आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और ये हमारे पूरे परिवार के लिए एक बहुत ही तकलीफ वाला दौर था, पूरे 6 महीने जब वो बीमार थे तब। और मैं क्या कहूँ, तब लोगों ने, जैसा मैंने पहले कहा था कि जब आप मशहूर होते हो तो जैसे प्यार भी करते हैं लोग, तो लोग ये भूल जाते हैं कि वो भी एक इंसान है और उसकी भी एक निजी जिंदगी है। तो कुछ घटनाएं ऐसी घटी उस वक्त कि लोग ये चाहते थे, जैसे अभी धर्म जी के बारे में भी हुआ कि उनका ICU में उनका वीडियो निकाला गया, तो वैसे लोग चाहते थे, मुझे चैनल से फोन आते थे कि रीमा उनका एक ICU में एक फोटो निकाल के आप भेजो, ओके। या लोग मिलने आते थे, तो उस समय मोबाइल फोन्स, कैमरा फोन्स आ गए थे, 2014 की बात कर रही हूं मैं, तो हम ये देखते थे कि जो भी अंदर जा रहा है पापा से मिलने उसके साथ कोई ना कोई हो, बिकॉज हम ये नहीं चाहते थे कि कोई फोन निकाले, वीडियो निकाले, फोटो निकाले और सर्कुलेट करे, बिकॉज वो एक कलाकार थे,
1: ये होना ही नहीं चाहिए।
0: हाँ,
1: कोई भी रीजन हो, नहीं
0: और नहीं, और लोग उन्हें जिस तरह से याद लोगों ने रखना चाहिए, वो उनकी बुलंद आवाज, वो उनकी पर्सनालिटी, उनकी एक्टिंग, उनकी दहशत जो पर्दे पे वो पैदा करते थे, वो याद रखे। ये क्यों याद रखना है?
1: बिल्कुल।
0: जैसे इवन धर्म जी के बारे में जब हुआ तो इतना बुरा लगा कि ही मैन ऑफ द इंडस्ट्री,
1: राइट,
0: और उनको इतना वीक दिखाकर आप क्या हासिल कर रहे हैं?
1: देखिए, समय और उम्र किसी को नहीं बख्शते हैं,
0: exactly.
1: तो इसलिए उसका लिहाज कर लेना चाहिए और लोगों को अपनी प्राइवेसी में छोड़ देना चाहिए ऐसे समय।
0: बिकॉज पापा अहमदनगर को अपने दिल में रखे हुए थे, तो ये बात तो पक्की थी कि उनका जो भी अंतिम संस्कार है वो अहमदनगर में होगा। तो जब हम अहमदनगर गए और हमारी जो हवेली है उसके आंगन में ही पापा को रखा हुआ था दर्शन के लिए, तो आप बिलीव नहीं करोगे, लगभग 2-3 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई थी, और वो लाइन रुकी नहीं रही थी। अल्टीमेटली 4-5 घंटे के बाद हमें ये डिसाइड करना पड़ा कि अभी बस, अभी जाना जरूरी है, बिकॉज ऑलरेडी मुंबई से हम वहां गए थे, काफी समय बीत चुका था। तो उस समय लगभग 50

0: 60,000 लोग पापा के अंत्य यात्रा में थे, और वो सिर्फ अहमदनगर से थे ऐसा नहीं,
1: दूर दूर से आए थे,
0: दूर दूर से आए थे। और बाद के जो 15-20 दिन है, पूरा महीना जो हम लोग रखते हैं, पूरे महीने तक हमारी हवेली में लोग आ ही रहे थे, माथा टेक ही रहे थे और जा रहे थे। राजस्थान से लोग आए, पश्चिम बंगाल से आए, कहां कहां से आए, कुछ नहीं, सिर्फ उनके दर्शन करने हैं, बस उनकी हवेली देख ली, उनके बच्चों को देख लिया, उनके भाई को देख लिया, बस। ये जो लोगों की दुआ मिली है उस वक्त, और ये जो प्यार हमें दिखा है, क्योंकि पापा बाहर जाकर किस किस के लिए क्या क्या करते थे ये कभी घर आकर हमें बताते नहीं थे, पर उसके बाद आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि पापा की याद किसी ने ना निकाली हो, कोई ना कोई वो याद निकालता ही है। और हर एक 2-3 महीने में ऐसा कुछ किस्सा पता चलता है कि अरे पापा ने ये भी किया था, पापा ने ऐसा भी किया था, ये भी मदद की थी, ये कब किया था उन्होंने।
1: गजब।
0: तो ये जो बात है कि जब इंसान, हम उसके बच्चे होते हैं, हम एक तरीके से उसको देखते हैं, वो मेरे लिए मेरे पिताजी थे, वो एक हीरो थे, बहुत महान कलाकार थे, अग्रीड, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ मेरे पापा थे। तो मेरी कुछ पर्सनल शिकायतें, कुछ रिलेशनशिप इश्यूज वो उनके साथ थे ही, मैं ना नहीं कहूंगी, लेकिन अब लगभग 11 साल हुए हैं, और अभी 11 साल के बाद भी एक दिन ऐसा नहीं गुजरता जब उनका कोई रेफरेंस ना निकलता हो। तब आपको पता चलता है कि जो इंसान आप अपने पिताजी समझते थे वो सिर्फ आपके पिताजी नहीं थे,
1: वो पूरे संसार के लिए क्या थे।
0: एग्जैक्टली। और सिर्फ एक कलाकार भी नहीं थे वो, ही वाज सो मच मोर। तो एक थोड़ी सी समझ आ जाती है कि फिर आप इंसान को एक ही दायरे में ना देखे, उसके कई मायने हैं, और उन सारे मायनों में आपने देखना चाहिए इंसान को। तो ये आज भी मैं सीख रही हूँ उनसे, आज भी सिखा रहे हैं वो मुझे।
1: क्या बात है।
0: जैसे आज हम बातचीत कर रहे हैं तो मुझे लगा नहीं था मैं इतनी देर बात कर पाऊंगी, लेकिन जब एक एक एक एक एक एक आप पूछते गए, तो ऐसी भी काफी सारी चीजें मैंने कही जो आज तक मैंने कहीं पर नहीं कही थी।
1: बिल्कुल।
0: अर्थात आकाशवाणी घर ही है हमारा। अभी मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, इसीलिए मुझे लगता है कि हमने रुकना चाहिए।
1: गाना बजाते हैं, रहे ना रहे हम महका करेंगे।

0: रीमा जी, उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम ऐसा है जिसमें हम यादों के उजाले बिखेरते हैं। आपकी यादों में पिताजी किस तरह से सामने आए ये सुनते हुए और आपसे बातें करते हुए लगातार मुझे सदाशिव जी की बातें याद आ रही थी जो विविध भारती में उनके आने पर उन्होंने बताई थी और बहुत दिलचस्प बातें थी। तो अब तक आपने पिताजी के बारे में बताया, अब संग्रहालय से पिताजी की आवाज निकालते हैं और हम सब मिलकर सुनते हैं सदाशिव अमरापुरकर की बातें। और हाँ, ये बातचीत हमारी साथी कांचन प्रकाश संगीत ने सदाशिव जी से की थी बरसों पहले, तो संग्रहालय से ये आया ऑडियो।
1: अब देखिए ना, मेरे मन में ऐसी घटा छाई है, ये प्रश्नों की घटा है।
2: अच्छा।
1: और पता नहीं अब ऐसा लग रहा है कि कौन सा प्रश्न बरस पड़ेगा। बताइए ना कि कहाँ से शुरू करें, कि आज आपकी अभी यहाँ से निकल के किस शूटिंग में आप जा रहे हैं, यहाँ से शुरू करें और पीछे चले जाएं, या आप अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे?
2: नहीं, जो आपको अच्छा लगे वहीं से शुरू करें।
1: तो आप अपने बचपन की ही याद ताजा करें और कुछ बताएं कि कैसे थे वे आपके दिन।
2: मैं एक बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ जिसका नाम अहमदनगर, ना वो शहर है ना वो देहात था। तो ऐसे छोटे से गांव में जब मेरा जन्म हुआ और बचपन बहुत अच्छा गया, खेल कूद में गया, स्कूल में जाते थे, लेकिन सिर्फ पास होने तक के मार्क हमें मिलते थे। और हमारी पिताजी की एक ही इच्छा थी कि बेटे तुम कभी फेल मत होना, हमेशा पास होना और ग्रेजुएट होना, उसके बाद नौकरी की जरूरत नहीं है, हम कुछ भी व्यापार वगैरह कर लेंगे, लेकिन शिक्षा जरूर लेना। तो ये बात अच्छी थी क्योंकि सिर्फ पास होना था तो 40-50% हमें मार्क्स मिलते थे और बचा हुआ टाइम हम खेल कूद में हर चीज में गुजारते थे और हर मौसम का मजा लेते थे। इमलियों के दिन आते थे तो इमलियां खाते थे, आम के दिन आते थे तो बहुत आम खाते थे, चुराते भी थे, हमारा खेत भी था उसमें भी बहुत दौड़ धूप करते थे।
1: और जामुन खा के आपका गला नहीं बैठ जाता था?
2: सब कुछ होता था। सब कुछ होता था। और हमारे जो रिश्तेदार थे वो और भी देहातों में रहते थे, छुट्टियों के दिन हम उनके साथ गुजारते थे, तो उनके साथ जंगल में घूमते थे, प्राणी पंछी सब देखते थे, बकरियों से खेलते थे, उनका दूध पीते थे। गाय को बछड़ा जब होता है तो क्या होता है, ये अनुभव मैंने वहां लिया और मुझे एहसास हुआ कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारी माँ को कितनी तकलीफ हुई। तो इस तरह का बहुत अच्छा, बहुत जिसको हम समृद्ध कहेंगे, ऐसा मेरा जीवन बचपन का गुजरा है और उसका फल बहुत अच्छा है। आज जब मैं कहीं भी जाता हूँ, आउटडोर शूटिंग में जाता हूँ या किसी से मिलता हूँ, और जब उसको देखकर मुझे एहसास होता है कि ये कहाँ कहाँ से गुजरा होगा यह इंसान, यह आदमी, तो इंसान को समझना, इंसान को जान लेना और उसके बारे में सोचना, ये सब मुझे बचपन में मिला, ये संस्कार। मेरे पिताजी छोटे से व्यापारी थे तो हर तबके के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग हमारे घर आते थे। तो मैं मंदिर में खेला हूँ, मस्जिद में खेला हूँ, हमारे पीछे मस्जिद थी उसके पीछे आज भी चर्च है, तो वहीं उसी ग्राउंड पे खेला हूँ। तो मेरे लिए तो कभी धर्म की बात, जाति की बात आई नहीं, और ये एक बड़ा अच्छा संस्कार मेरे गांव ने मेरे ऊपर किया है।
1: तो अहमदनगर ही में आपका स्कूल का जो है पूरी पढ़ाई लिखाई वहीं पे हो गई और आप इर्द गिर्द जाते रहे हैं?
2: अहमदनगर में ही मेरी पढ़ाई हुई, स्कूल की, कॉलेज की, वहीं मैंने थिएटर किया, एक्टिंग की। मेरे गांव में पानी कम है, लेकिन मेरा गांव छोटा है, मेरे गांव के रास्ते गलत है, मतलब खराब है। हमारा गांव चांदबीबी के नाम गांव से पुकारा जाता है और मुझे तो लगता है कि आज भी अगर चांदबीबी आई तो बिना हिचक के उसी रास्ते पर अपने महल में चली जाएगी। उस जमाने के रास्ते वहां पर है
1: जी।
2: और क्रिएटिव है
1: जी।
2: और मुझे हमेशा

0: बात अच्छी लगी है कि मेरे जीवन के हर मोड़ पर मुझे ऐसे इंसान मिले जिसकी वजह से मेरा जीवन दिन ब दिन संस्कारित होते गया।
1: जी, ये जो आपका संस्कारित बचपन है वही आपका साथ आज भी दे रहा है
0: जी,
1: है ना सदाशिव जी। इसी बात पे आपकी पसंद का कोई एक गीत हम क्यों ना सुन लें।
0: जी जी, जरूर सुनते हैं। पिक्चर का नाम है पोस्ट बॉक्स नंबर 999।
1: अरे वाह, बहुत पुरानी फिल्म है ये। हाँ
0: हाँ, और उसके बोल है, मेरे दिल में है एक बात।

0: आप बता रहे थे कि नगर में रह के ही आपने अपना कॉलेज का भी पूरा जो जीवन है वहाँ पे आपका आपकी शिक्षा दीक्षा वहाँ हुई, और इसके साथ साथ वहाँ पे थिएटर भी आपने शुरू किया, वो सब बातें बताइए ना।
1: हाँ,
0: तो आप बहुत शरीर बालक रहे, बहुत शरारती रहे, तो कॉलेज में जाके क्या धमाके किए, क्या हंगामे किए?
1: नहीं, वैसे मैं शरारती तो स्कूल में था, मतलब पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, और मेरे दोस्तों को बताता था कि चलो यार घूमने चलते हैं। और मुझे याद है कि स्कूल में एक दिन मैंने पूरे स्कूल को मेरे साथ लेकर, मतलब हमारी पूरी जो कक्षा को लेकर मैं बाहर निकला था, और दिन भर हम घूमकर शाम को घर लौटे थे।
0: पिटाई नहीं हुई थी?
1: और घर दूसरे दिन जब हम स्कूल गए तो सब बच्चों ने कहा कि सदाशिव ने कहा इसलिए हम निकले, और मैं मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ गलती की है। मैंने कहा हाँ हम बहुत बोर हो गए थे, पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, तो ऐसा लगा थोड़ा घूमकर आए, इसलिए मैंने इनको कहा और ये सब मेरे साथ आए। हम बाजारों में घूमे, दुकानें देखी, फ्रूट्स देखे, फिर उसके बाद मिठाई की दुकानें देखी और शाम को घर लौटे, इसमें क्या बुरा है? लेकिन उस वक्त वो बहुत बुरा था, तो इसकी शिक्षा भी मुझे बहुत मिली। और स्कूल में मैं बहुत क्रिकेट खेलता था, मैं हमारी स्कूल की टीम में था, लेग स्पिनर था, बैटिंग भी करता था और

0: क्रिकेट में इतना मन लगा हुआ था कि मुझे लगता था कि मैं
1: क्रिकेटियर
0: बन जाऊंगा। और जैसे मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज के गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन होती है
1: जी।
0: आज भी चल रही है वो, और बहुत अच्छी चीज है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए हैं, महाराष्ट्र को दिए हैं। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही मतलब विद्यार्थी ही एकांकी लिखते थे, विद्यार्थी डायरेक्शन करते थे और सब विद्यार्थी मिलकर वो वन एक्ट प्ले करते थे। और इसकी कंपटीशन थी और उस जमाने में बहुत बड़ा प्राइज उसके लिए रखा गया था
1: जी।
0: मुझे मतलब रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। और उसमें मुझे एक काम करने का मौका मिला, हम कहेंगे कि वो बिच्छू एक्टिंग का उसी वक्त हमें काटा। और उसमें मुझे 10 रुपये का प्राइज मिला
1: उस समय।
0: हाँ, और तब से मेरा क्रिकेट छूट गया और मेरी एक्टिंग शुरू हो गई।
1: लेकिन बिच्छू ने काटा आपको और इसीलिए शायद आप विलेन बन गए, ऐसा तो नहीं हुआ?
0: नहीं नहीं, नाटक करता रहा, धीरे धीरे नाटक में इतना मन लगने लगा, उसके वजह से पढ़ने लगा, किताबें आईं, फिर किताबों में मन लगने लगा और दोस्त मिलने लगे। रात रात जागते रहे, बातें करते रहे। बहुत तूफानी दिन थे, हमारे पैर जमीन पर नहीं थे
1: जी,
0: हम मतलब हवा में दौड़ते थे।
1: और यूथ फेस्टिवल्स वगैरह में बहुत सारे प्राइजेस भी आपने जुटाए होंगे।
0: जी जी जी, यूथ फेस्टिवल में बहुत प्राइजेस लुटाए और हर बार हमारी एकांकी आती थी और उसको काफी प्राइजेस मिलते थे। और जब हमारी गैदरिंग होती थी तो हमें 20-25 प्राइज लेने स्टेज पर जाना पड़ता था और वो हमारे लिए सबसे खुशी की बात रहती थी
1: जी।
0: और इसी दौरान आज जो मेरी पत्नी है सुनंदा, वो तो स्कूल से हमारे साथ थी। प्रॉब्लम ये थी कि वो पहले बेंच पे बैठती थी, मैं लास्ट बेंच पे बैठता था क्योंकि वो बहुत होशियार थी और हम तो बस पिछड़े हुए जाति के लोग।
1: तो वो पलट के नहीं देखती थी?
0: उस वक्त उन्होंने नहीं देखा, लेकिन बाद में जब हम कॉलेज में इकट्ठा हुए तो धीरे धीरे उनका ध्यान हमारी तरफ गया, हमारे अंदर हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और बाद में हमने शादी भी कर ली। उस वक्त एक फिल्म आती थी जिसका नाम था आराधना और उसका गाना था मेरे सपनों की रानी कब आएगी। तो
1: आ तो गई। गीत सुन लेते हैं
0: जी।

0: लेकिन आप आगे ये बताइए ना, थिएटर की जो बात है वो वहाँ से आपकी शुरुआत हो गई, और कितने साल, मतलब जब आपके मन में ये सुगबुगाहट होने लगी थी कि मुझे ये सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, तो आपके मन ने ये भी ठान लिया कि आगे जाके एमए वगैरह नहीं करना है, कौन सा विषय था आपका?
1: नहीं, मैं बीए होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूंगा, प्रोफेसर बनूंगा, और प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में थिएटर करूंगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर तोरणमल थे जो प्रोफेसर थे और थिएटर भी करते थे, तो वही आदर्श मेरे सामने था, इसलिए मैंने सोशियोलॉजी लेके पुणे गया, पुणे यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, लेकिन उस वक्त भालभा केलकर के साथ पीडीए में नाटक करता रहा
0: जी।
1: रात भर जागते थे, पैदल यूनिवर्सिटी वापस आते थे, और एक दिन भी मैं क्लास में गया नहीं। उस वक्त हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विद्याधर पुंडलिक जी थे, तो एक दिन पीडीए का एक प्रोग्राम था, तो उसमें उनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था, तो मेरा नाम सुनकर उन्होंने कहा कि देखो मुझे आपका नाम कुछ याद आ रहा है। मैंने कहा यस सर, आप मुझे सिखाते हो। मैं सिखाता हूँ तुम्हें? मैंने कहा जी हाँ, लेकिन मैंने तो कभी क्लास में आपको देखा नहीं। हाँ बिल्कुल याद आया, मैं जो हर रोज ये लेता हूँ, हाँ रोल कॉल लेता हूँ, उसमें आपका नाम होता है, लेकिन आप कभी दिखे नहीं। तो मैंने कहा देखो ये पीडीए में मैं नाटक कर रहा हूँ, रिहर्सलें करता हूँ, 11 बजे खत्म होती है, उस तब तक वो पीएमटी की बस नहीं होती, फिर पैदल यूनिवर्सिटी तक जाना पड़ता है, तो रात को लेट सोते हैं, तो सवेरे लेट उठते हैं, तो आपका पीरियड हो जाता है। अरे बोले एक काम करो, नाटक करते हो अच्छा है, लेकिन बीच में कभी कभी आया करो, ताकि मैं आपका रोल कॉल में नाम लिख दूंगा। अच्छा लगा सुनकर। मैंने कहा सर क्या करूं, मैं नाटक के सिवा जी नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ये अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए। और थिएटर करने लगा, तो फिर उसके बाद उसी वक्त एक साल हुआ था, तो मुझे आपकी आकाशवाणी की तरफ से एज ए अनाउंसर नौकरी मिली।
0: वाह।
1: तो मैं परभनी में अनाउंसर था 6 महीने,
0: जहाँ पे कृषि विद्यापीठ है
1: जी, और फिर वो नौकरी छोड़ी मैंने क्योंकि तबीयत खराब हो गई।
0: आपको कैसा लगता था जब माइक्रोफोन के सामने, मुझे लगता है उस समय शायद पहली बार आप स्टूडियो में अकेले बैठ के बात कर रहे होंगे श्रोताओं के साथ, तो कैसा लगा था आपको?
1: नहीं नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन सामने पैक्स बैठते थे।
0: मतलब प्रोग्राम ऑफिसर
1: जी, और वो हमेशा ध्यान से सुनते थे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। और उस जमाने में गांव में हमें बड़ी इज्जत थी, नया होकर भी, क्योंकि वहाँ एक मराठी प्रोग्राम था आपली आवड़, और वो हम सुनाते थे,
0: मतलब जैसी आपकी फरमाइश पे जैसे जी, जी, होता है हेलो फरमाइश।
1: और उस वक्त हम अगर तेल लेने जाए किसी होटल में, चाय पीने जाए, तो वो होटल मालिक या तेल देने वाला या सब्जी देने वाला हमें कहता था साहब 2 रुपये कम दो, 1 रुपया कम दो, 8 आना कम।

0: दो, लेकिन हमारा नाम लो। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था, हम कहते थे नहीं नहीं भैया, पैसे क्यों कम लेते हो, मेहनत करते हो, ले
1: लेकिन
0: लो।
1: बहुत अच्छा लगता होगा नहीं ऐसा, जब समाज में लोगों से प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है। तो लेकिन आपने छोड़ तो दी वो नौकरी।
0: जी छोड़ दी, और उस वक्त मैंने वहां पर एक फिल्म आई थी प्यासा,
1: पुरानी,
0: बहुत पुरानी, गुरुदत्त जी की, और वो प्यासा फिल्म से मैं बहुत प्रभावित हुआ था।
1: ये प्यासा फिल्म से कौन सा गीत आपको बहुत अच्छा लगा?
0: मुझे सभी गीत अच्छे लगे।
1: अभी एक बहुत अच्छा काम करते हैं, जो आपकी पसंद का गीत हम सुनते हैं, और हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगेगा।
0: जी।
1: वो प्यासा फिल्म से आप कह रहे थे?
0: जी जी
1: जी।

0: तो ये सदाशिव जी की आवाज देखिए ना, इंसान चला जाता है, यादें रह जाती हैं, और विविध भारती में तो ऐसा होता है कि आवाजें रह जाती हैं, और कितनी ही आवाजों के उजाले हमारे स्टूडियो को और हमारे संग्रहालय को रोशन करते हैं। रीमा जी, बहुत सारी बातें हुई हैं, और अब वो वक्त है जहां आपको एक बहुत जरूरी काम करना है, और वो ये काम करना है कि एक बेटी होने के नाते कहना है कि इतने वर्ष बाद भी क्या हैं आपके पिता आपके लिए। हो सकता है कि ये एक ऐसी बात हो जो आप उनसे कभी ना कह पाई हो, अपने घर आकाशवाणी में आप कह पाएंगे।
1: एक बेटी होने के नाते मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि मैं बहुत बहुत बहुत नसीबों वाली हूँ कि पापा जैसे पिताजी मुझे मिले। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि वो बहुत बड़े कलाकार थे, मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि उन्होंने कभी भी हमें शब्दों में सिखाया नहीं। उन्होंने जो भी किया उसमें से वो चाहते थे और वो हमें खुला छोड़ देते थे कि तुम्हें जो सीखना है इसमें से सीखो। इसी वजह से आज भी, अभी उन्हें गुजरे हुए 11 साल हो गए, आज भी जब कोई घटना याद आती है, कुछ किस्सा याद आता है, तो जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे उसमें से जो मैं सीखती हूँ वो मैच्योर होता जाता है, वो नया नया मुझे सीखने को मिलता है। और जैसा मैंने कहा कि मैं लकी इसलिए भी हूँ कि ये आज़ादी उन्होंने मुझे दी, हम सब बहनों को इनफैक्ट दी, कि आपको जो करना है वो आप करो, सिर्फ सही करो, कभी भी कुछ

0: गलत मत करो जिससे किसी इंसान को दुख पहुंचे या कुछ गलत हो। उनका सिर्फ एक ही कहना होता था कि आप जो करते हो वो करने के बाद रात में जब आप घर पे आते हो और बिस्तर पर लेटते हो तो एक भी मिनट आपका ऐसा नहीं गुजरना चाहिए कि यार ये मैंने क्या किया। बिस्तर पर लेटते ही आपकी आंखें बंद हो जाए और आपको नींद आ जाए शांति से, ऐसा आपका बर्ताव पूरे दिन में हो, फिर वो आपके काम में हो, पर्सनल रिलेशनशिप्स में हो, कहीं पर भी हो। तो ये जो सीख है, ये जो पापा ने दी है, और ये उन्होंने, जैसा मैंने कहा कि शब्दों में नहीं, उनके खुद के बर्ताव से उन्होंने हमें सिखाई है। और साथ ही मैं ये कहूंगी कि उन्होंने जो लॉयल्टी उनके अंदर थी, वो उनकी बीवी के प्रति उनकी लॉयल्टी थी, उनके पिताजी के प्रति उनकी लॉयल्टी थी, हम बच्चों के प्रति उनकी लॉयल्टी थी, वैसी ही लॉयल्टी उनके काम के प्रति भी उनकी थी। जितना जितना वक्त गुजरता जा रहा है उतना उतना मैं ये समझ पा रही हूँ कि उनके जीने के और उनकी पर्सनालिटी के काफ़ी सारे ऐसे पहलू थे जो जब वो थे तब मैं समझ नहीं पा रही थी। तो मैं पापा से ये कहना चाहूँगी कि पापा, आपने जो भी करके रखा है एज एन आर्टिस्ट, एज अ फादर, वो शायद समझते समझते पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी, लेकिन आज भी रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा याद आता है, कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है आपके, कोई मीम हो या कोई रील हो, कि एक ऊर्जा मिलती है आगे जाने की। और ये ऊर्जा हमारे साथ इतने प्रकार से है आपके होने से, ये नसीब वालों को ही मिलता है। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड कि आप मेरे पापा थे। मैंने बहुत झगड़ा किया हुआ है पापा के साथ, काफ़ी बार हम काफ़ी झगड़ते थे, लेकिन वो भी एक फ्रीडम उन्होंने हमें दिया था, उनसे झगड़ा करने का फ्रीडम। बुरा लगता है कि मेरी बेटी उन्हें मिल नहीं पाई, खैर वो अलग अलग तरीके से उसे मिलते रहते हैं।
1: क्या बात है रीमा जी, पिताजी इतने मशहूर कलाकार थे और उनका कामयाबी का झंडा बहुत बुलंद था, जब आपके सामने करियर का सवाल आया तो उनके सामने जाके क्या ऐसा कुछ हुआ कि मैं भी इंडस्ट्री में?
0: हाँ, एक्चुअली जैसा मैंने कहा कि मैंने मास्टर्स इकोनॉमिक्स में किया है पूना से, कोकले इंस्टीट्यूट से, तो पापा एकदम सेट थे कि अभी सबसे छोटी बेटी है वो इकोनॉमिक्स कर रही है, वो शायद उसमें पीएचडी करेगी, हो गया, एवरीथिंग इज सेट। पर मैं जब पूना में जॉब कर रही थी तब पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ और तब जाके मैंने राशुमान देखी, अकीरा कुरोसावा की, और सिनेमा की ताकत जो है वो सडनली मुझे ऐसे लगा कि यार ये करना चाहिए। मैंने अगर पीएचडी किया तो मैं रिसर्च पेपर लिखूंगी, वो किसी मैगजीन में छप के आएगा, खत्म, ऐसा कुछ करना चाहिए। और मैंने जाकर पापा से ये कहा तो सबसे पहले तो पापा की रिएक्शन थी, पर तुझे तो इकोनॉमिक्स करना था। मैंने कहा हाँ करना था, लेकिन अभी मुझे ये करना है। तो फिर वो कहते थे फिर तू एक्टिंग कर ले। सर मुझे एक्टिंग नहीं करनी। क्यों एक्टिंग क्यों नहीं करनी? बिकॉज वो एकदम ऑफेंड हो गए कि एक्टिंग क्यों नहीं करनी तुझे। तब मैंने उन्हें वो औरंगाबाद वाला किस्सा याद दिलाया कि आपको याद है आप अजंठा नहीं देख पाए थे, तो मुझे कैमरा के सामने नहीं जाना है, मैं कैमरा के पीछे रह के जो भी करना है करूंगी। ओके
1: राइट।
0: तो फिर पापा ने कहा कि ठीक है, फिर आपको अगर करना ही है ये तो उसमें पहले आपको सीखना जरूरी है। फिर न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में मैं जाकर सीख कर आई, फिर मैंने असिस्टेंटशिप की और फिर मेरा करियर जैसे बनना था वैसे बना। पर अगेन जैसे पापा का सामाजिक एक ये रहता था, वैसा इनडायरेक्टली डायरेक्टली मुझ में भी है। तो मैं एनजीओस के साथ ज्यादा काम करती हूँ, कमर्शियली मैं थोड़ा कम काम करती हूँ।
1: बहुत सारी बातें पिताजी के बारे में हुई और कई ऐसे पहलू सामने आए जिनके बारे में शायद कभी किसी ने नहीं जाना था, तो इसीलिए सार्थक होता है ये कार्यक्रम जिसका नाम उजाले उनकी यादों के है। तो आपके जरिए यानी रीमा की यादों के जरिए पिताजी सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले आपने सजाए, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए और हमसे ये लंबी बातचीत करने के लिए।
0: थैंक यू सो मच। ऐसे होता है ना, कभी कभी डर लगता है कि हम बहुत ज्यादा उनकी बातें करेंगे तो रो देंगे, इसलिए कई बार हम खुद से भी दूर भागते हैं और बातें नहीं करते हैं। पर यहाँ बुलाकर वो पुराने दिन, किस्से, घटनाएं और पापा, उनको याद दिलाया, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इतनी देर बात कर पाऊंगी, लेकिन आपने जिस तरह से मुझसे बातचीत की है वो बहुत ही, मुझे, इट हैज बीन एन एनरिचिंग एक्सपीरियंस।
1: थैंक यू वेरी मच।
0: थैंक यू सो मच।

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की चौथी और अंतिम कड़ी। कार्यक्रम का संपादन नेहा शर्मा, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे किसी और मशहूर हस्ती की यादों के उजाले लेकर। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: उजाले उनकी यादों।

अभी हम विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 5 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। प्रायोजक हैं CF वन विभाग सरगुजा।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 58 है। ये खोड़, केसर, छतौली, इंजानी, बरपटिया, पुतकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वनमंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 16 है। ये मकनपुर, नवाडीह, पोड़िपा, पेंडारी, सिंघरा, भरदा, गौरा, मदननगर, गणेशपुर, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के राजपुर और रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 9 है। ये अखोरा, कुंदीकला, जामदोहर, सिधवा, गोपालपुर, मुरका, अतौरी, ठरकी, चिनिया, कनक पुर, डकिया, शिवपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के लुंड्रा, उदयपुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 9 है। ये पड़ौली, अमड़ी, किशुनपुर, मसगाड, सत्तीमुड़ा, लक्ष्मणगढ़, ससकालो, तेंदुटिकरा, मानपुर, बरिमा, कुदारीडीह, केसरा, सरभंजा, ललिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के दुलदुला, तपकरा, पत्थलगांव, कांसाबेल और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 33 है। ये धूरी अम्बा, करडेगा, केंदापानी, मधुटोली, सेमरताल, साजबहार, बामनमारा, जमुना, खड़ामाचा, हरदीझरिया, पीठा आमा, महेशपुर, चेटबा, मड़ियाझरिया, सोनाजोरी, झिक्की, परसाडाण, कुरडेग, सामरबार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 92 है। ये महाराजगंज, बंगरसूता, कुड़ेकेला, बोजिया, सिंघीछाप, बनहर, लोटान, कंचीरा, पोटिया, आमगांव, झगरपुर, सागरपाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वनमंडल के कुदमुरा में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये कटकोना और जिलगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। कटघोरा वनमंडल के केंदई, एतमानगर और जडगा में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये मड़ई, कोदवारी, भोड़ूपानी, कठमो

0: मुर्गा, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, जुनवानी, कुकरी कादर, बनिया, चोटिया, लालपुर, सेमरहा, बोकरा, मुड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 56 है। ये झिंगोल, तराईमाल, नागदरहा, पंडरीपानी, भैंसगढ़ी, बड़गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये कोठारी तालदादर पकरीत के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट और धवलपुर में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कुकरार, ताराझर, कुरवा पानी, खोला पारा, छिंदौला, लूठा पारा, फरसरा, बोडापाला, जारन डीह के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। प्रायोजक थे CF वन विभाग सरगुजा। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए सुनिए फिल्म जानवर से। स्वर दिया है अलका याग्निक और मनहर उदास ने। समीर की रचना है और संगीत है आनंद मिलिंद का।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। अब एक सूचना सुनिए। श्रोताओं, महिला सभा कार्यक्रम हेतु सूचना। कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण हर महीने के दूसरे मंगलवार को होता है। इस माह इसका प्रसारण 14 जुलाई 2026 मंगलवार को शाम 5:35 से किया जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग 13 जुलाई दिन सोमवार को दोपहर 3 बजे से 3:30 के बीच की जाएगी। आप हमें फोन करके डॉक्टर से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे कार्यक्रम की विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर सृष्टि चतुर्वेदी गुप्ता। आपसे चर्चा का विषय होगा मानसून में महिलाओं की सेहत, संक्रमण से सुरक्षा। आप हमें फोन कर सकते हैं इन नंबरों पर। बिलासपुर का एसटीडी कोड है 07752 और हमारे फोन नंबर है 2665592 और 310026। आपके फोन का हमें इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध है फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान।

0: ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: कार्यक्रम चित्रपट संगीत का अगला गीत लीजिए सुनिए, अलका याग्निक और शान की आवाजों में फिल्म कल होना हो से। जावेद अख्तर की बोल है, शंकर एहसान लाय का संगीत है।

0: कुछ यादें अतीत की।
1: आकाशवाणी गोरखपुर के बड़े मशहूर फनकार और आर्टिस्ट राहत अली खान साहब, जो कि रायपुर खूब आते रहे हैं रेडियो के भी प्रोग्राम्स में, मेरा नसीब था कि मुझे उनकी छाया मिली और उनसे दादरे, गजलें, सूफियाना चीजें खूब सीखी।
0: कुछ बातें वर्तमान की।
2: आज बस जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, गाने का आनंद ले रहा हूँ। रोज अपना 2-4 घंटे का रियाज सुबह मेरा होता है।
0: कुछ सपने भविष्य के।
3: अभी फिर जल्दी ही कुछ अच्छे बैनरों की अच्छी फिल्में और अच्छे गीत आपको सुनने मिलेंगे।
0: कुछ किस्से अनकहे।
4: जो भी एक्शन हो रही है फिल्मों में, जो हम देख सकते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, वो हमें हमारी आवाज के माध्यम से बोलना पड़ता है।
0: विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट जनों से मुलाकात, सुनिए इनसे मिलिए हर शुक्रवार सुबह 8:30 बजे आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से।
5: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए सुनिए, फिल्म बादशाह से। अभिजीत और अलका याग्निक की आवाजें हैं, समीर की रचना है और अनु मलिक का संगीत है।

श्रोताओं, महिला सभा कार्यक्रम हेतु एक सूचना सुनिए। साथियों, कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण हर महीने के दूसरे मंगलवार को होता है। इस माह इसका प्रसारण 14 जुलाई 2026 मंगलवार को शाम 5:35 से किया जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग 13 जुलाई दिन सोमवार को दोपहर 3 बजे से 3:30 के बीच की जाएगी। आप हमें फोन करके डॉक्टर से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे कार्यक्रम के विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सृष्टि चतुर्वेदी गुप्ता। आपसे चर्चा का विषय होगा मानसून में महिलाओं की सेहत, संक्रमण से सुरक्षा। आप हमें फोन कर सकते हैं इन नंबरों पर। बिलासपुर का एसटीडी कोड है 07752। हमारे फोन नंबर है 2665 92 और 3100026। आपका फोन का हमें इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए सुनिए, फिल्म अर्जुन पंडित से। हरिहरन और अलका याग्निक की आवाजें हैं, जावेद अख्तर की रचना और संगीत दिया है दिलीप सेन और समीर सेन ने।

फिल्म अर्जुन पंडित के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 5:35 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुनें।

ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम में सभी श्रोताओं को आरती का नमस्कार। साथियों, आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए सुनिए फिल्म धनवान से। सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, साहिर की रचना और संगीत दिया है हृदयनाथ मंगेशकर ने। इस गीत के लिए ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत कभाणकर, सरिता प्रिंस, एकांश कभाणकर, चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप, कालका से शुभ्रचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, अम्बागढ़ चौकी से हमारे श्रोता साथी हैं रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि, शीतल राजेश, पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक, सीमा साहू, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, डुमराव से वली उल्लाह अंसारी, महेंद्र, विक्रांत और इनके साथी हैं, कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित, हैप्पी रॉय, नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नभानकर, निर्मला, विशाल नभानकर, सौंगा मगरलोट से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार, हेयांश कुमार चंदन, श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश और जीविका दले, लोहारीडी जिला कवर्धा से अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी, खुशांत और निशांत साहू, रोहासी से मुकेश साहू, नंदनी, मनीष, मयंक, जानकी साहू, नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, सीता, गीता, जस्सी, जसवीर, चिरमिरी कॉलरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कालिंद्री लहरे, मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा, सरगांव से हमारे श्रोता साथी हैं राजेश वर्मा, हिरोमन पल्लवी और राजेश्वरी वर्मा, पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, यवतमाल से राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी, प्रियांशी मनवर, दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका भानु, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता, किसु, तासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद, कालेगांव जफराबाद से सुधाकर, राजे जाधव, प्रशांत, संचित, प्रथमेश,

देशमुख, प्रणाली देशमुख और सरवत देशमुख, दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना चैतन्य और मेघा मस्कीन। लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद पर कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म धनवान से।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ईमेल करेगी सुनी, आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम के अगले गीत के लिए ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं करनाल से सुधीर नूतन, संदीप जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा और माया कुमार, जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरुप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर, पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र, रौनक सेन, रसेड़ा से हमारे श्रोता साथी हैं मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या, कीर्ति, डिकेश, वासु, डॉली, पूर्वेश साहू, इंदौर से नारायण खर्चे, ललिता, गणेश, कार्तिक, परी खर्चे, स्वाति और प्रयाग चौधरी, बागबाहरा भदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू, तारा और कौशल सेन, अनिल बुरांडे, उषा, अनुश्री, धनश्री बुरांडे, ये है पांडर कवड़ा से, उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी करिश्मा, सुमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम हीरामणि और ऐश्वर्या पैकरा, भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत और राघवेंद्र साहू, दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, दिव्या भारती, उमा राज, छत्तीसगढ़ से प्रभा जाटव, डॉली, कबीर, देवशंकर, लोरमी से दुर्गेश मरकाम, निर्मला, दीपक, प्रीतम, धनराज मरकाम, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदयवान सिंह, जय हिंद, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल, अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद, गौरव मंदुरकर, आरव और अर्पिता, पैठन से सुरेश जाधव, अनीता, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल और सिया जाधव, पोड़ीभाटा अकलतरा से दिलीप चंदन, चोवाराम यदु, निखिल चंदन, वसुंधरा और प्रांजल चंदन। लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद पर फिल्म गूंज का ये गीत, स्वर दिया है हेमा सरदेसाई और बिंजू अली ने, शब्द है रविंद्र जैन के और संगीत है बिड्डू और राजेश भट्ट का। आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर फिल्म गूंज का ये गीत।

कार्यक्रम के अगले गीत के लिए ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं नागर कोहरा राजनांदगांव से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा और आराध्या साहू, महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश प्रज्ञेश, रितेश संघई, भागलपुर से कमल किशोर साह, अश्वनी अमरदीप, पशुपति, टिंकू और मुस्कान, दतरेंगी से हमारे श्रोता हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, शनि, रेयांश, कान्हा और आदित्य देवांगन, मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश और राहुल साहू, जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना आदेश कुमार काले और वसुधा वज्रसेन, ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण, लव्या और इनके साथी हैं, गुनौर से नसीमुल इस्लाम, फरदीन अब्बासी, दानिश गुनौरी, रायपुर से विनोद वंडलकर, वीणा विविधा वंडलकर, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला और ओम कुमार सुरलकर, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून, सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु और सोनाली नारंग, अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, जयप्रकाश, प्रियंका, गुरु किरत, गुरु शब्द राहुल, भिलाई से नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदुन, जिशान अहमद सिद्दीकी और शहनवाज अहमद सिद्दीकी, नानघाट कातलबोर से भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री, टिकेश्वर और ऋतु राजपूत, डोगरगांव से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका, अनिष्का और तन्मय गजबिये, कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल, विनीत, सोनम वर्मा, बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून और सुरीत और साथ में इनके साथी हैं, कैदीपुरा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा, ऋषभ सिंह, पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा, सुलोचना और चेतन भगत, सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, दिल्ली से आसमा परवीन, आमना परवीन, वली अंसारी, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान अब्बासी और अबान अब्बासी, गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, अहद, मिफ्रा नवाज, बिलासपुर से छन्नूलाल श्रीवास, अनीता, पुष्पा, अंजू, योगिता श्रीवास, साथ में हैं रजन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास वाधवानी, देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश, कमलेश, गन्नूलाल रजक, मुरली क्षत्रिय, सावतपुर से ऋषि सेन, रितेश कंचन और माही सेन, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू भाटिया, जालंधर से संदीप जटौलिया। लीजिए सुनिए श्रोताओं, आप सबकी पसंद पर फिल्म दहलीज का ये गीत, स्वर दिया है आशा भोसले और महेंद्र कपूर ने, हसन कमाल की रचना है और रवि का संगीत है।

फिल्म दहलीज के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम ईमेल करेगी सुनी का ये भाग अब यही समाप्त होता है। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे संध्या 6:20 और संध्या 7:00।

आइए श्रोताओं, अब आपको आज और कल प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। आज शाम 6:20 और शाम 7 बजे सुनिएगा कार्यक्रम ईमेल करेगी सुने। शाम 6:05 पर जिले की चिट्ठी और 6:30 पर कार्यक्रम कानून की बात हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे। कानून की बात में आज जानकारी का विषय रहेगा स्थायी लोक अदालत जनउपयोगी सेवा के प्रभावी संचालन तथा उनकी सुलह करने व निर्णय की भूमिका। जानकारी देंगे श्री गौरव सतपथी, अधिवक्ता जिला न्यायालय दुर्ग। शाम 7:20 पर ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा। इसमें आज बेरा के गोठ में आपसे बातों का विषय होगा जल संग्रहण भविष्य के आधार। साथ ही सुनिएगा फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम आप मन के गीत। रात 8 बजे सुगम संगीत कार्यक्रम में आज कलाकार होंगे ए हरिहरन। रात 8:15 पर आनंद लीजिएगा कार्यक्रम रजनीगंधा का। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे रात 9:15 से रात 11 बजे तक। समाचारों का अनुप्रसारण निर्धारित समय अनुसार किया जाएगा।

श्रोताओं, अब जानकारी देते हैं कल यानी सोमवार को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। कल प्रातः 6:05 पर सुनिएगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। 6:30 पर कल खेती की बात में जानकारी दी जाएगी, जैविक बागवानी, स्वास्थ्य मिट्टी, सुरक्षित फसल, बेहतरीन बाजार विषय पर जानकारी देंगी चित्रलेखा तिवारी।

कल प्रातः 6:45 पर नौविहान कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा प्रधानमंत्री गरीब किसान अन्न योजना। सुबह 8:30 पर कार्यक्रम अमराई में कलाकार होंगे आशाराम पोर्ते, अमचीरी बाई, जगदीश कुलदीप, राजकुमार अग्रवाल और इनके साथी। सुबह 10:00 सुनिएगा कार्यक्रम तुहर गोट हमर गीत। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का प्रसारण समय होगा दिन में 11:00। 11:30 से शाम 5:00 तक विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे। कल शाम 5:00 सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। शाम 5:35 पर कल आप सुनेंगे युवा श्रोता साथियों का कार्यक्रम युवा जगत। इसमें आज की बात में आपसे बातों का विषय होगा अपने व्यक्तित्व विकास के लिए सोचे। साथ ही सुनिएगा क्रम स्वास्थ्य पत्रिका, प्रस्तुति होगी नेमी चंद साहू की। शाम 7:20 पर ग्राम सभा सुनिएगा। इसमें कल बेरा के गोट का विषय होगा पशु मल्ला बरसात में टीका लगवाना है। साथ ही आप सुनेंगे भेंट वार्ता, आधुनिक कृषि में किसान क्रेडिट कार्ड की भूमिका। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर योगिता कश्यप, अतिथि शिक्षक कृषि महाविद्यालय कोरबा। शाम 6:20 और शाम 7:00 सुनिएगा कार्यक्रम ईमेल करें की सुने। रात 8:00 सुगम संगीत कार्यक्रम में कल कलाकार होंगे नुसरत फतेह अली खान। रात 8:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम रजनीगंधा। श्रोताओं

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 6:05 हुए हैं। थोड़ी ही देर में हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे कार्यक्रम जिले की चिट्ठी।

0: ये आकाशवाणी रायपुर है। जिले की चिट्ठी, इसमें सुनिए बस्तर जिले की चिट्ठी। आलेख है संतोष वर्मा का।
1: श्रोताओं नमस्कार। जिले की चिट्ठी के आज के अंक में हम लेकर आए हैं बस्तर जिले की चिट्ठी। इसके जरिए हम आपको अगले 5 मिनट में जिले में चल रही विभिन्न गतिविधियों से रूबरू कराएंगे। श्रोताओं, प्रदेश में अगले वर्ष से नया शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने लोक शिक्षण संचालनालय को पत्र भेजकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत देश के अन्य प्रमुख शिक्षा बोर्डों और मंडलों के समान ही अब छत्तीसगढ़ में भी नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा, 31 मार्च तक चलेगा। हालांकि छात्रों को मिलने वाले ग्रीष्मकालीन अवकाश में कोई कटौती नहीं की गई है। प्रदेश में 1 मई से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश पहले की तरह ही यथावत रहेगा। इस बीच राज्य सरकार ने आगामी शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के सभी स्कूलों में कक्षा पहली में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा 6 वर्ष निर्धारित कर दी है। ये नई व्यवस्था सभी शासकीय, अशासकीय और अनुदान प्राप्त विद्यालयों पर लागू होगी। श्रोताओं, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बीते 9 जुलाई को जगदलपुर के डिमरापाल में स्थापित कॉन्टिनेंटल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में बस्तर संभाग की पहली और छत्तीसगढ़ की दूसरी अत्याधुनिक कैथ लैब का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस सुविधा के शुरू होने से बस्तर सहित प्रदेश के हृदय रोगियों को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और अन्य आधुनिक उपचार अब स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगे। अब मरीजों को इलाज के लिए बड़े शहरों पर निर्भर नहीं रहना होगा, साथ ही उन्हें समय पर उपचार भी मिल सकेगा। श्रोताओं, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी रायपुर द्वारा बीते 27 जून को जगदलपुर में वार्तालाप मीडिया संवाद कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं और उपलब्धियों का लेखा जोखा साझा किया। उन्होंने कहा कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की कल्याणकारी नीतियों से बस्तर नक्सलवाद के अंधेरे से निकलकर विकास और विश्वास की नई राह पर आगे बढ़ रहा है। श्रोताओं, महतारी वंदन योजना के तहत पात्र हितग्राही महिलाओं के ईकेवाईसी के पंजीयन की तिथि 30 जून से बढ़ाकर 30 अगस्त कर दी गई है। बस्तर जिले के महिला और बाल विकास अधिकारी मनोज कुमार सिन्हा ने बताया कि जिले में लगभग 90% हितग्राही महिलाओं ने ईकेवाईसी करा लिया है। उन्होंने छूटी हुई हितग्राही महिलाओं से निर्धारित समय में ईकेवाईसी कराने की अपील की है। श्रोताओं, जिले के दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों में 141 बैंक सखियां गांव-गांव बैंकिंग सेवाएं पहुंचा रही हैं। माइक्रो एटीएम और आधार आधारित भुगतान प्रणाली के जरिए ग्रामीणों को नगद निकासी, जमा, बैलेंस जांच और धन अंतरण जैसी सुविधाएं गांव में ही मिल रही हैं। इसके साथ ही वे ग्रामीणों को डिजिटल भुगतान, सुरक्षित बैंकिंग और वित्तीय साक्षरता के प्रति भी जागरूक कर रही हैं, जिससे गांव में डिजिटल वित्तीय लेनदेन को लगातार हवा मिल रहा है। जून महीने में बैंक सखियों ने पेंशन, महतारी वंदन, मनरेगा और अन्य योजनाओं के साथ ही वीबीजी रामजी योजना के तहत हितग्राहियों को करोड़ों रुपए का भुगतान किया। इससे ग्रामीणों, खासकर बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगजनों को बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। श्रोताओं, बारिश के मौसम में बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। कंपनी ने कहा है कि बिजली के खंभों, टूटे तारों, ट्रांसफार्मरों और अन्य विद्युत उपकरणों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा इनमें किसी तरह की छेड़छाड़ न करें। यदि कहीं बिजली के तार या उपकरण क्षतिग्रस्त दिखाई दें तो इसकी सूचना तुरंत टोल फ्री नंबर 1912, मोर बिजली ऐप या निकटतम वितरण केंद्र को दें। श्रोताओं, जिले के बकावंड विकास खंड के अंतर्गत जैतगिरी, सरगीपाल, गिरोला, डुरका बेड़ा और बदलावंड गांव में

0: पिछले दिनों जल अर्पण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने जल संरक्षण और पानी बचाओ अभियान को सफल बनाने के लिए सहभागिता का संकल्प लिया। कार्यक्रम में जल जीवन मिशन की IEC ज्योत्सना सूना ने ग्रामीणों को जल के महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने जल स्रोतों के आसपास स्वच्छता बनाए रखने, जल संसाधनों की सुरक्षा करने, सोखता गड्ढों और किचन गार्डन की उपयोगिता तथा स्थानीय स्तर पर पौधरोपण करने की बात कही। श्रोताओं, जिले में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य विभाग ने अब तक 7,25,00,000 से अधिक मत्स्य बीज का उत्पादन किया है। मत्स्य पालन विभाग के उपसंचालक मोहन राणा ने बताया कि जिले में इस वर्ष 9,50,00,000 मत्स्य बीज उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ जिले की चिट्ठी का ये अंक समाप्त हुआ। अगले रविवार एक नए अंक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: जिले की चिट्ठी में अभी आप सुन रही थी बस्तर जिले की चिट्ठी। आलेख था संतोष वर्मा का। यह आकाशवाणी रायपुर है। अब सुनिए छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर ही छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग सोहेल खान यजदानी के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। देशभर में आज चलाएगी इस पौधारोपण अभियान। दिल्ली में आयोजित पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में शामिल होइन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। कालिले शुरू हुई छत्तीसगढ़ विधानसभा के 5 दिन के मानसून सत्र और दंतेवाड़ा और कांकेर जिला में कार्रवाई करत सुरक्षा बल बरामद करीस हथियार और माओवादी जिनिस। अब समाचार विस्तार ले। देशभर में आज पौधारोपण के बड़का अभियान चलाएगी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। हकीहीन की सरलक भविष्य सुनिश्चित करे खातिर और पर्यावरण संरक्षण खातिर पौधा लगाए जाना जरूरी हवे। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान हकीहीन की आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी के तापमान बढ़ेले चिंता में हवे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के 5 दिन के मानसून सत्र काली बिहनिया 11 बजे ले शुरू हो ही। यह सत्र 17 जुलाई तक चलही। इस सत्र के दौरान कुल 5 ठिन बैठक आयोजित करे जाही। सत्र के दौरान प्रश्नकाल और वित्तीय काम के संगे संग 8 ले ज्यादा संशोधन विधेयक मन ऊपर चर्चा और विचार करे जाही। यही बीच मानसून सत्र के तैयारी ला लेके नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के अध्यक्षता में आज रायपुर में कांग्रेस विधायक दल के बैठक चलत हवे। प्रदेश में मोरगांव मोर पानी अभियान के जरिया जल संरक्षण ला जन आंदोलन बनाए जावत है। विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत जम्मू जिला मन में रोजगार जल संरक्षण और हरित विकास के काम तेजी ले करे जावत है। यही कड़ी में मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के ग्राम पंचायत बरदर में जन सम्मेलन एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण और जन भागीदारी कार्यक्रम के आयोजन करेगी। कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल हा पौधारोपण करीन और कंटूर ट्रेंच के खुदाई कर जल संरक्षण के संदेश दीन। जानबा के मुताबिक ग्राम पंचायत बरदर में 52 एकड़ क्षेत्र में समेकित जल संरक्षण और हरित विकास मॉडल विकसित करे जावत है। यहाँ जल संरक्षण के संगे संग तकरीबन 2000 पौधा लगाए जावत है। मोरगांव मोर पानी अभियान के तहत करे गए काम ले ये क्षेत्र में तकरीबन 200 लाख मीटर भूजल रिचार्ज क्षमता विकसित हुए हवे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO हा माफी योजना 2026 शुरू करीन हवे। एकर तहत छूट मिले भविष्य निधि ट्रस्ट चलैया प्रतिष्ठान मनला अपन स्थिति नियमित करे के एक मुफ्त मौका दे गए हवे। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय हा बताइन कि ये योजना 6 महीना तक चलही। एकर लाभ ऐसन प्रतिष्ठान ला मिली जौन आयकर अधिनियम 1961 के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट के संचालन करत हवे। ऐसन ट्रस्ट में कर्मचारी भविष्य निधि के प्रबंधन सीधा EPFO के बजाय संबंधित प्रतिष्ठान अपन निजी ट्रस्ट के जरिए ले करते। राजधानी रायपुर के माना कैंप के शूटिंग रेंज में काली 25वीं छत्तीसगढ़ राज्य शूटिंग मीट के शुभारंभ करेगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश राइफल एसोसिएशन डहाले आयोजित यह राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेश भर के निशानेबाज मन हिस्सा लेवत हवे। प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला शामिल होइन। विशेष अतिथि के रूप में विंग कमांडर विवेक कुमार साहू शामिल होइन। ये राज्य शूटिंग मीट में मनखे और माइलोगिन वर्ग के संगे संग आने आने आयु समूह के मुकाबला आयोजित करे जावत हवे। नगरी प्रशासन विभाग हा प्रदेश के नगरी निकाय नगर निगम नगर

0: पालिका परिषद आउ नगर पंचायत ला वित्तीय आवंटन जारी करे हे। एकर तहत वित्तीय बच्छर 2026-27 खातिर महापौर अध्यक्ष निधि के संगे संग पार्षद निधि के पहली किस्त के रूप में 50% राशि हस्तांतरित करे के आदेश जारी किए गए हवाय। दोनों मदला मिला के कुल 104,54,25,000 रुपया के राशि बैंक के जरिया ले सीधा निकाय मन के खाता में भेजे जावत है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हवा।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा थन छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: आओ आओ अब आगू बढ़थन बाचे समाचार कोती। दंतेवाड़ा जिला में सुरक्षा बल मनहा नक्सली मंडहर ले लुका के राखे गए हथियार और विस्फोटक जिनिस बरामद करीन हवाय। ये कार्रवाई हालच में आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लहटीन माओवादी मन के निशानदेही में बारसूर थाना क्षेत्र के तोड़मा जंगल में करेगीस। सर्च अभियान में तकरीबन 16 लाख रुपया कीमत के 160 ग्राम सोना के बिस्किट 2 लाख रुपया नकद इंसास राइफल मैगजीन कारतूस बंदूक टिफिन बम पाइप बम हैंड ग्रेनेड वर्दी और आने आने जिनिस ला बरामद करेगीस। उन्हें कांकेर नारायणपुर सीमा क्षेत्र के ग्राम आलपरस और गुमचूर के बीच जंगल पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बल हा नक्सली मनले लुका के रखे गए डंप बरामद करीन हवे। पुलिस के मुताबिक कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र 11 जुलाई ले DRG BSF और BDS के मिले जुले टीम ढार ले सघन सर्चिंग अभियान चलाए जावत है। इस दौरान जमीन के भीतर लुका के रखे गए हथियार इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और नक्सली जिनिस बरामद हुए हैं। एमा दो ठिन 303 राइफल 32 राउंड कारतूस एक ठिन लैपटॉप एक ठिन टैबलेट 3 ठिन वायरलेस बैटरी रेडियो और नक्सली साहित्य शामिल हवे। मोहला मानपुर जिला में आज कोरकोट्टी मदनवाड़ा नक्सल हमला के 17वीं बरसीमा शहीद मनला श्रद्धांजलि देगीस। जिला के पुलिस रक्षित केंद्र मोहला में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में कलेक्टर पुलिस अधीक्षक ITBP के अधिकारी जनप्रतिनिधि और मनखे मन हा शहीद मनला श्रद्धा सुमन अर्पित करें। जिला के आने आने थाना और गांव में घलो श्रद्धांजलि सभा आयोजित करेगीस। ए मौका में मोहला और औंधी में रक्तदान शिविर घलो लगाएगीस। गौरतलब है कि 12 जुलाई 2009 के मदनवाड़ा क्षेत्र में हुए नक्सल हमला में ओबेरा के पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार चौबे समेत 29 जिन जवान शहीद हो गए रहीन। जसपुर में तपकरा थाना क्षेत्र के उड़ीसा कुनकुरी मार्ग में लावाकेरा के तीर में काली एक ठिन तेज रफ्तार हाईवा और कार के बीच जोरदार टक्कर होगी। टक्कर अतका भयंकर रहीस कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त होगी और उमा बैठे दूझिन लोगन मन के मौकच में मौत होगी। उति सरगुजा जिला के मैनपाटमा काली दूठिन मोटरसाइकिल के बीच हो इस टक्कर में 3 जिन मनखे मन के मौत होगी। उन्हें एक ठिन आने हादसा में अंबिकापुर सीतापुर राष्ट्रीय राजमार्ग 43 में सेदम के तीर मोटरसाइकिल ले जावत रहीस एक ठिन दंपत्तीला ट्रक हा बाजू पाछू ले टक्कर मार दिस जेखर ले महिला के मौत होगी और ओकर पति हा गंभीर रूप ले घायल होइस हवे। उन्हें जांजगीर चांपा जिला के बुछहरदी गांव में दूठिन मोटरसाइकिल के बीच हुए टक्कर में एक मनखे के मौत हो गए हवे। एक दुर्घटना में 2 लड़का समेत 4 जिन आने मनखे मन के घायल हो गए जयमल्ला बिलासपुर के अस्पताल में भर्ती कराए गए हवे। अब थोड़कुन समाचार सार में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग डहार ले सूबेदार उप निरीक्षक संवर्ग और प्लाटून कमांडर के भर्ती खातिर प्रारंभिक परीक्षा आज बिहनिया 10 बजे ले मंझनिया 12 बजे तक आयोजित करेगीस। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में भिलाई और भिलाई नगर के बीच कुर्सी पार रेलवे संपार फाटक में मरम्मत काम करे जाही। एकर चलत 14 जुलाई के बिहनिया 8 बजे ले 24 जुलाई के रतिहा 8 बजे तक ए फाटक में सड़क यातायात पूरा बंद रही। और जसपुर जिला के 4 ठिन वन परिक्षेत्र मन में ए बेरा लगभग 32 हाथी मन के दल किंजरत हवे। हाथी मन के गतिविधि ला देखत वन विभाग ह निगरानी बढ़ा दे गे हवय। वन

0: हाँ हाँ गांव वाला मनखे मन ले अपील करीन हे कि ओमन हाथी के किंजरैया क्षेत्र में झंझावे। आखिर मां प्रमुख समाचार एक घाव फेर। देशभर में आज चलाए गए इस पौधारोपण अभियान, दिल्ली में आयोजित पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में शामिल होइन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। काली ले शुरू हो ही छत्तीसगढ़ विधानसभा के 5 दिन के मानसून सत्र आओ दंतेवाड़ा और कांकेर जिला में कार्रवाई करत हुए सुरक्षा बल बरामद करीन हथियार और माओवादी जिनिस। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यह सिरावत है। जय जोहार।
1: अभी हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 6:20 हुए हैं। प्लीज ये प्रस्तुत है ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने का दूसरा भाग।

श्रोताओं, कार्यक्रम ईमेल करें की सुने में आप सभी का पुनः स्वागत है। कार्यक्रम के इस भाग का पहला गीत लीजिए सुनिए, फिल्म प्यार का मौसम से। स्वर दिया है मोहम्मद रफ़ी ने, मजरू सुल्तानपुरी की रचना है, आर डी बर्मन का संगीत है। इस गीत के लिए ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं तेलंगाना से मोहम्मद बुरहाउद्दीन, नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या, सविता भाकरे, नागपुर से वैशाली शैलेश गवहाणकर, प्रिंस एकांश, सुमित और ध्वनि गवहाणकर, जालंधर से मीना कौर और मन्नत कौर, यवतमाल से पंजाब रामटेके यशोधरा, श्राव्या रामटेके, भाटापारा से हमारे श्रोता साथी हैं बचकमल, मोतीलाल यादव, सियाराम, चुवाराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु, भुवन कामरी, भाटापारा से ही अनीता साहू, वीणा नेहा, मोनिशा साहू, खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और साथ में है राजेंद्र कटारी। जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक चंसौलिया, राजकोट से जूली, जगदीश, प्राची और प्रवीण, रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब, हासी से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी, जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक और गाविया मल्होत्रा, भाटापारा से प्रमोद साहू, देव साहू, नवीन, युवराज साहू, हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्डा, अलका मिड्डा, बठेना पाटन दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, निधि, निखिल, यश, प्रयाण, शिवम, रेखा और धनेश्वरी वर्मा। लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद पर फिल्म प्यार का मौसम का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अगले गीत के लिए ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, भिलाई से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला, आसमा श्याम कुंवर, टिकरी पारा गंडई से जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई, दीपक, जयश्री, ऋषभ और रिचा देवांगन, सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम, सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अल्तमश खत्री और इनके साथी हैं, लुथरा खमरिया से अकरम, अमीन, अर्श और आतिका, लोहगर ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज सिंह, रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, बुड़गहन से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला और शशिकांता प्रजापति, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक समर्थ नामदेव, तीव्रता डबरीपारा कोरबा से महेंद्र प्रताप मरकाम, जागेंद्र, गजेंद्र, जयंती, ममता, मनीषा, मंजू, मानसी, सुरेंद्र, मोहन सिंह, सहोदरी, मनमोहन सिंह, गिरजाबाई मरकाम, साथ में हैं चंद्रपाल मरावी और लक्ष्मी थदवानी, लुथरा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन और अपार ढींगिया, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा और चंद्रकांत वर्मा। लीजिए श्रोताओं, आप सबकी पसंद पर सुनिए फिल्म नौजवान का ये गीत। स्वर दिया है लता मंगेशकर ने, साहिर की रचना और धुन बनाई है एस डी बर्मन ने।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम ईमेल करेगी सुनी का ये भाग अब ही समाप्त होता है। इस कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे संध्या 7 बजे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 6:30 हुए हैं। थोड़ी ही देर में हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे कार्यक्रम कानून की बात। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी रायपुर से।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम कानून की बात। इसमें सुनिए स्थायी लोक अदालत की प्रभावी संचालन तथा उनकी सुलह करने व निर्णय की भूमिका विषय पर अधिवक्ता जिला न्यायालय दुर्ग श्री गौरव सतपथी द्वारा दी गई जानकारी।

0: श्रोताओं नमस्कार। कानून की बात कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत में कानून व्यवस्था अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है और कानून की व्यवस्था बनाए रखना सभी नागरिकों का कर्तव्य है। कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसके लिए हमें अदालतों या कानून के सेवकों के पास जाना पड़ता है और इसके निराकरण के लिए भी हमें एक प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ से भी ज्यादा है और ऐसी स्थिति में हमारे भारत में न्यायालयों की संख्या सीमित है और इन सीमित संख्या में ही हमें न्याय की उम्मीद रहती है। न्यायालयों से न्याय मिलता है लेकिन इसमें कभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देरी भी होती है और देरी होने की वजह से मामले लंबित हो जाते हैं। इन्हीं लंबित मामलों के निपटान के लिए स्थायी और अस्थायी लोक अदालतों की व्यवस्था की गई है। स्थायी लोक अदालत की बैठकें की जाती हैं और इनमें लंबित मामलों के निपटार की कोशिश की जाती है जिससे अदालतों का भार कम हो, लोगों को त्वरित न्याय मिल सके। इसके लिए लोगों को समय समय पर इसकी सूचनाएं दी जाती हैं और ऐसे लंबित मामलों के लिए उन्हें आमंत्रित किया जाता है इसके निपटारे के लिए। तो श्रोताओं, कानून की बात कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे स्थायी लोक अदालत के बारे में। स्थायी लोक अदालतें क्या होती हैं, इनका स्वरूप कैसा होता है और इन स्थायी लोक अदालतों में किन मामलों का निपटारा किया जाता है। स्थायी लोक अदालत, इसका प्रभावी संचालन और सुलह करने और निर्णय की भूमिका में स्थायी लोक अदालतों का क्या महत्व होता है, बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं गौरव सतपति जी जो अधिवक्ता है जिला न्यायालय दुर्ग में। तो गौरव जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: गौरव जी। जैसा कार्यक्रम में हमने बताया कि स्थायी लोक अदालत ये क्या होते हैं और इसकी भूमिका, इसके इतिहास के बारे में हमें बताएं।
1: जी सर। सर, स्थायी लोक अदालत का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22B के अंतर्गत किया गया था। इसका उद्देश्य जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों का शीघ्र समाधान करना है। यह विषय केवल कानून के विद्यार्थियों या अधिवक्ताओं तक सीमित नहीं है बल्कि आम नागरिक के न्याय पाने के अधिकार से भी सीधे जुड़ा हुआ है। हम सभी जानते हैं हमारे देश की अदालतों में लाखों मामले वर्षों से लंबित हैं। कई बार न्याय प्राप्त करने में इतना समय लग जाता है कि व्यक्ति न्याय मिलने से पहले ही निराश हो जाता है। ऐसी स्थिति में लोगों को सस्ता, सरल और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थायी लोक अदालत की व्यवस्था की गई।
0: जी, तो सरपति जी, जैसा अभी आपने बताया जनउपयोगी सेवाओं, तो जनउपयोगी सेवाओं से आपका क्या तात्पर्य है?
1: जी, जनउपयोगी सेवाएं क्या होती हैं, इसके बारे में अगर हम जाने तो इसमें आम जनता प्रतिदिन जिन विषयों को लेकर प्रभावित होती है जैसे कि बिजली, पानी, परिवहन, डाक, दूरसंचार, अस्पताल तथा बीमा आदि, इन सेवाओं से जुड़े विवादों का समाधान स्थायी लोक अदालत में किया जा सकता है।
0: गौरव सतपति जी, हम बात कर रहे हैं स्थायी लोक अदालत के बारे में। एक साधारण लोक अदालत होता है, एक स्थायी लोक अदालत, तो इन दोनों में क्या अंतर होता है?
1: जी, स्थायी लोक अदालत की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह केवल समझौता कराने तक सीमित नहीं रहती। पहले पक्षकारों के बीच समझौते का प्रयास किया जाता है। यदि समझौता हो जाता है तो विवाद वहीं समाप्त हो जाता है, लेकिन यदि समझौता नहीं हो पाता तो कानून के अनुसार स्थायी लोक अदालत स्वयं मामले का निर्णय दे सकती है। यही इसे सामान्य लोक अदालत से अलग बनाता है।

0: सामान्य लोक अदालत में यदि दो पक्षकारों के बीच का कोई विवाद है तो वो आपसी राजीनामे के तहत निपटारा किया जा सकता है। उक्त प्राधिकरण आपके पक्ष में कोई निर्णय नहीं दे सकती, परंतु स्थायी लोक अदालत में यदि दो पक्षकारों के मध्य विवाद का निपटारा नहीं होता तो स्थायी लोक अदालत एज अ कोर्ट, एक कोर्ट की भूमिका में आके वो किसी एक के पक्ष में दस्तावेजों और गवाहों के को मद्देनजर रखते हुए वो फैसला भी दे सकती है। वो एज अ कोर्ट काम करती है, ना कि सिर्फ एक राजीनामा करने का प्राधिकरण है।
1: जी गौरव सतपति जी, क्या स्थायी लोक अदालत में हर प्रकार के मामलों का निराकरण किया जा सकता है? हम ये जानना चाहते हैं कि स्थायी लोक अदालत में किन किन मामलों का निपटारा किया जा सकता है, कौन कौन से मामले इसमें शामिल हो सकते हैं?
0: जी, स्थायी लोक अदालत की भी कुछ सीमाएं हैं। यहाँ सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई नहीं होती, केवल जन उपयोगी सेवाएं से संबंधित विवाद ही इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। गंभीर आपराधिक मामले, जमीन से जुड़े मामले, चेक से जुड़े मामले, ऐसे सब मामलों का निराकरण केवल न्यायालय के थ्रू ही हो सकता है। स्थायी लोक अदालत में सिर्फ जो जनोपयोगी सेवाएं हैं जैसे बिजली, पानी, दूरसंचार, बीमा, इसी से संबंधित सेवाओं का यहाँ पे निराकरण किया जा सकता है।
1: जी गौरव सतपति जी, तो गौरव जी, स्थायी लोक अदालत में अधिवक्ताओं की क्या भूमिका होती है?
0: स्थायी लोक अदालत में सिर्फ अधिवक्ताओं के दृष्टिकोण से देखें तो स्थायी लोक अदालत न्याय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह केवल मामलों की संख्या कम नहीं करती बल्कि न्याय तक लोगों की पहुंच को भी आसान बनाती है। आज जब न्यायालयों पर लंबित मामलों का भारी बोझ है तब ऐसी संस्थाओं की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को न्याय का अधिकार देता है, लेकिन न्याय तभी सार्थक है जब वह समय पर कम खर्च में और प्रभावी रूप से उपलब्ध हो। स्थायी लोक अदालत इसी संवैधानिक भावनाओं को साकार करने का एक प्रभावी माध्यम है। महात्मा गांधी जी ने कहा था, विवादों का समाधान संघर्ष से नहीं संवाद से होना चाहिए। स्थायी लोक अदालत भी इसी विचार को आगे बढ़ाती है। यहाँ मुकदमेबाजी से पहले समझौते का अवसर दिया जाता है और आवश्यकता होने पर विधि के अनुसार निर्णय भी प्रदान किया जाता है।
1: गौरव जी, हम स्थायी लोक अदालत की बात कर रहे हैं तो इनके अधिकार क्षेत्र में क्या क्या होते हैं?
0: इनके सर, जैसे मैंने आपको बताया कि जितनी भी सुविधाएं हैं, जो जन उपयोगी सुविधाएं हैं जिनके लिए आम जनमानस रोज के प्रतिदिन की रोजमर्रा में जो वो फेस करता है, जिस समस्या का उसे सामना करना पड़ता है, जैसे पानी की समस्या हो गई, जैसे रोड की समस्या हो गई, जैसे विद्युत की समस्या हो गई, जैसे बीमा की समस्या हो गई, स्थायी लोक अदालत में इन सारे मामलों का निराकरण बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के, बिना किसी लंबन के यहाँ पे सॉल्व किया जा सकता है। स्थायी लोक अदालत हर जिले के जिला न्यायालय में और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में इनकी एक शाखाएं होती हैं, जिनमें अगर व्यक्ति जाए तो बहुत ही साधारण और सरल तरीके से अपनी समस्याओं का समाधान यहाँ पे किया जा सकता है।
1: जी, और गौरव जी, अगर हम बात करते हैं यदि आर्थिक तौर पे कोई विवाद हो तो स्थायी लोक अदालत का क्षेत्र कितना है कि कितने तक के आर्थिक मामलों की सुनवाई यहाँ की जा सकती है?
0: आर्थिक रूप से जो परेशानियां लोगों को सामना करना पड़ता है उसमें अगर वो जो उनका प्रॉब्लम है, जो उनकी समस्याएं हैं, वो अगर जनउपयोगी सेवाओं के अंतर्गत आएंगी तभी वो स्थायी लोक अदालत के क्षेत्राधिकार में आएगा। अन्यथा जैसे चेक से संबंधित मामले, जमीन से संबंधित मामले, रकम का लेन देन का मामला है, इन सारे मामलों के लिए उनको जिला न्यायालय या फिर अपने संबंधित प्राधिकरण में ही अपनी उपस्थिति देनी होगी। स्थायी लोक अदालत की जो सीमाएं हैं वो सिर्फ जनउपयोगी सेवाओं तक ही सीमित है।
1: जी जी, और गौरव जी, यदि स्थायी लोक अदालत में दो पक्ष हैं, दोनों पर निर्णय नहीं बन पाती है, दोनों के बीच कोई सुलह नहीं हो पाती, इस स्थिति में क्या किया जाए?
0: स्थायी लोक अदालत आम लोक अदालत से इसीलिए अलग है कि अगर दो पक्षकारों के बीच में कोई सुलह की स्थिति नहीं बनती है तो स्थायी लोक अदालत एक कोर्ट के जैसे पक्षकारों को सुनकर, उनके दस्तावेजों को देखकर, उनके साक्ष्य को देखकर निर्णय भी दे सकती है जो दोनों पक्षकारों के ऊपर बंधनकारी होगा।
1: और गौरव जी, अगर हम जानना चाहें कि स्थायी लोक अदालत में सुनवाई की शक्ति या पावर जो होता है वो किस प्रकार परिभाषित किया गया है, मतलब ये अधिकार किसको दिया गया है?
0: जिले में एक जिला न्यायाधीश होते हैं, उनके अधीनस्थ बहुत सारे एडिशनल जिला न्यायाधीश होते हैं जिनको हम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश बोलते हैं। एक अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश ही स्थायी लोक अदालत का पीठासीन अधिकारी होता है। स्थायी लोक अदालत आज के परिपेक्ष में बहुत अच्छी सुविधा का संचालन है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ADR के तहत इसका संचालन किया जाता है, जिसमें माननीय न्यायालय का यह दृष्टिकोण है कि आम जनमानस को ज्यादा परेशानियों से, ज्यादा लंबन से ना गुजरना पड़े और उनका न्याय उनको त्वरित मिले। जैसे मैं आपको एक उदाहरण

0: के तौर पर बताऊं, अगर किसी व्यक्ति का बैंक से संबंधित कोई अगर मामला है जिसमें उसने अपने ऋण की राशि का भुगतान कर दिया है, परंतु बैंक उससे फिर भी और राशि के भुगतान के लिए उसे नोटिस भेज रही है, समन भेज रही है, तो वो भी स्थायी लोक अदालत में जाकर अपना आवेदन दे सकता है, जिसमें स्थायी लोक अदालत के द्वारा बैंक को नोटिस जारी की जाएगी, बैंक से उनका पक्ष पूछा जाएगा और जो परिवादी है उससे ये पूछा जाएगा कि आपने कितने पैसे बैंक में जमा किए हैं। अगर वो पैसे उसके ऋण के राशि के बाबत जमा किए गए हों तो मामले का वही निपटारा करके उस व्यक्ति को, उस परिवादी को वहां से न्याय मिलने की उम्मीद रहती है। परंतु अगर वही व्यक्ति अगर न्यायालय जाए तो उसे अधिवक्ता का शुल्क देना होगा, उसे कोर्ट फीस देनी होगी, उसे मामले का लंबन सहना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी अदालतें हैं उसमें आज की डेट में भी इतने सारे मामले लंबित हैं कि आप जानती ही हैं कि उसमें बहुत ज्यादा समय लगने की संभावना रहती है। स्थायी लोक अदालत एक आपके पास वैकल्पिक ऑप्शन है जिसके द्वारा आप अपने मामलों का त्वरित निपटारा कर सकते हैं।
1: तो गौरव जी, जब स्थायी लोक अदालत की बात कर रहे हैं तो इसमें आपने बताया कि कोई शुल्क देय नहीं होता है।
0: जी जी।
1: और इसमें जो है मामलों को त्वरित और लचीले तरीके से निपटारा किया जा सकता है। तो यदि किसी व्यक्ति के पास कोई प्रकरण है या जो कोई परिवादी है तो वो जाता है कोर्ट में, तो वहां उसे किस किस दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी स्थायी लोक अदालत में आवेदन करते समय?
0: जिस व्यक्ति के पास कोई समस्या अगर आ रही है तो वो स्थायी लोक अदालत जाकर अपने प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेजों को लेकर अपने आवेदन के साथ वो स्थायी लोक अदालत में संपर्क कर सकता है। अगर उसे वहां भी किसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उसके मदद के लिए तत्पर रहती है। वहां के जो पैरालीगल वॉलंटियर्स रहते हैं या वहां के जो डिफेंस काउंसिल रहते हैं वो भी उसे मदद करने के लिए वहां पे त्वरित रहते हैं।
1: तो गौरव जी, कार्यक्रम में चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो स्थायी लोक अदालतें हैं ये किसी मामले के निपटारा करने या किसी प्रकरण को हल करने के लिए कितनी प्रतिबद्ध होती हैं?
0: जी, स्थायी लोक अदालत के 3 सदस्य होते हैं। इनका 3 लोगों का कोरम होता है जिसमें एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जिसको हम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के नाम से जानते हैं, इसके अलावा 2 सदस्यों का इसमें चयन किया जाता है जो कि राज्य सरकार करती है। इसमें जो भी व्यक्ति अपना परिवाद या अपना प्रकरण लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है उसके प्रकरण के समस्त दस्तावेज, समस्त साक्ष्य और सारे विधिक मामलों की जांच करने के बाद माननीय न्यायालय द्वारा उसमें अपना आदेश पारित किया जाता है।
1: गौरव सतपति जी, कानून की बात कार्यक्रम से चलते चलते हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को स्थायी लोक अदालत के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दें।
0: स्थायी लोक अदालत एक परमानेंट लोक अदालत के जैसे एक कोर्ट है जिसमें आप अपनी समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के लिए आप यहां पर अपने आवेदन के साथ उपस्थित हो सकते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लोक अदालत हर 3 महीने में देशव्यापी लगाया जा रहा है। इसी तारतम्य में दिनांक 18/7/2026 को भी लोक अदालत पूरे देश में लगाए जाएंगे जिसमें 138 चेक बाउंस के मामलों से संबंधित समस्त मामलों का निराकरण किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति कानून के बारे में सलाह लेना चाहता है या अपने किसी प्रकरण से संबंधित विधिक विमर्श लेना चाहता है तो नालसा के टोल फ्री नंबर 15100 पर संबंधित जानकारी ले सकता है। किसी भी प्रकार के विधिक परामर्श या विधि संबंधी परेशानी के निराकरण हेतु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में संपर्क करने के लिए आमजन आ सकते हैं।
1: श्रोताओं, कानून की बात कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे गौरव सतपति जी से, जो अधिवक्ता है जिला न्यायालय दुर्ग में, और बात कर रहे थे स्थायी लोक अदालत की प्रभावी संचालन और उनकी सुलह करने के निर्णय की भूमिका पर। गौरव सतपति जी, कानून की बात कार्यक्रम में आपने हमारे श्रोताओं को जो जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: कानून की बात कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।

कानून की बात। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रही थी स्थायी लोक अदालत जनोपयोगी सेवा के प्रभावी संचालन तथा उनकी सुलह करने व निर्णय की भूमिका विषय पर अधिवक्ता जिला न्यायालय दुर्ग श्री गौरव सतपथी से ली गई भेंट वार्ता।

0: इंटकर्ता थी रमा शंकर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रायपुर की प्रस्तुति थी। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा,
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
2: चलो,
1: कहाँ
2: एडमिशन कराने?
4: खाता हुआ एक्टिव।
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
8: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
7: तू अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
8: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
7: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
8: क्यों?
7: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
9: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
10: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
11: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
10: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
11: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
10: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
11: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
9: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
12: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
11: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
12: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
11: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
12: आकाशवाणी से।
9: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
0: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैशाली गुलाब।

0: और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। देशभर में आज चलाया गया व्यापक पौधारोपण अभियान। नई दिल्ली में आयोजित वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। कल से शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का 5 दिवसीय मानसून सत्र। नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश के नगरीय निकायों को जारी किया वित्तीय आवंटन। और दंतेवाड़ा और कांकेर जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए हथियार और विस्फोटक बरामद किए। अब समाचार विस्तार से। देशभर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया गया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है।
1: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों

0: का सामना करना पड़ेगा।
1: राज्य में मानसून के दौरान औद्योगिक इकाइयों द्वारा संचालित वृक्षारोपण कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए आज रायपुर में पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने बैठक ली। इस अवसर पर उन्होंने 31 जुलाई तक वृक्षारोपण के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए। श्री चौधरी ने कहा कि वृक्षारोपण की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाए तथा पोर्टल पर समयबद्ध प्रविष्टि अनिवार्य की जाए। छत्तीसगढ़ विधानसभा का 5 दिवसीय मानसून सत्र कल सुबह 11 बजे से शुरू होगा। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र के दौरान प्रश्नकाल तथा वित्तीय कार्यों के साथ ही 8 से अधिक संशोधन विधेयकों पर चर्चा और विचार किया जाएगा। इस बीच मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत की अध्यक्षता में आज रायपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक जारी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त

0: को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की अध्यक्षता में आज रायपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक जारी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एकमुश्त अवसर दिया गया है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि ये योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। इसका लाभ उन प्रतिष्ठानों को मिलेगा जो आयकर अधिनियम 1961 के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। ऐसे ट्रस्ट में कर्मचारी भविष्य निधि का प्रबंधन सीधे ईपीएफओ के बजाय संबंधित प्रतिष्ठान अपने निजी ट्रस्ट के माध्यम से करता है। नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश के नगरीय निकायों, नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों को वित्तीय आवंटन जारी किया है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए महापौर अध्यक्ष निधि के साथ ही पार्षद निधि की पहली किश्त के रूप में 50% राशि हस्तांतरित करने का आदेश जारी किया गया है। दोनों मदों को मिलाकर कुल 104,54,25,000 रुपये की राशि बैंकों के माध्यम से सीधे निकायों के खातों में भेजी जा रही है। प्रदेश में मोर गांव मोर पानी अभियान के जरिए जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाया जा रहा है। विकसित भारत जीराम जी योजना के तहत सभी जिलों में रोजगार, जल संरक्षण और हरित विकास के कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के ग्राम पंचायत बर्दर में जन सम्मेलन, एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण और जन भागीदारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पौधारोपण किया और कंटूर ट्रेंच की खुदाई कर जल संरक्षण का संदेश दिया। गौरतलब है कि ग्राम पंचायत बर्दर में 52 एकड़ क्षेत्र में समेकित जल संरक्षण और हरित विकास मॉडल विकसित किया जा रहा है। यहां जल संरक्षण के साथ ही करीब 2000 पौधे लगाए जा रहे हैं। मोर गांव मोर पानी अभियान के तहत किए गए कार्यों से इस क्षेत्र में लगभग 200 लाख लीटर भू जल रिचार्ज क्षमता विकसित हुई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे YouTube चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए हथियार और विस्फोटक बरामद किए हैं। ये कार्रवाई हाल ही में आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटे माओवादियों की निशानदेही पर बारसूर थाना क्षेत्र के तोड़मा जंगल में की गई। सर्च अभियान में लगभग 16 लाख रुपए मूल्य के 116 ग्राम सोने के बिस्किट, 2 लाख रुपए नकद, इंसास राइफल, मैगजीन, कारतूस, बंदूकें, टिफिन बम, पाइप बम, हैंड ग्रेनेड, वर्दी और अन्य सामग्री बरामद की गई। वहीं कांकेर नारायणपुर सीमा क्षेत्र के ग्राम आलपरस और गुमचूर के बीच जंगल पहाड़ी क्षेत्र में भी सुरक्षा बलों ने नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखा गया डंप बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र में DRG, BSF और BDS की संयुक्त टीम द्वारा सघन सर्चिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान जमीन के भीतर छिपाकर रखे गए हथियार, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और नक्सली सामग्री बरामद हुई है। इनमें 2 .303 राइफल, 32 राउंड कारतूस, 1 लैपटॉप, 1 टैबलेट, 3 वायरलेस बैटरियां, रेडियो और नक्सली साहित्य शामिल है। मोहला मानपुर जिले में आज कोरकोटी मदनवाड़ा नक्सल हमले की 17वीं बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। जिले के पुलिस रक्षित केंद्र मोहला में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, ITBP के अधिकारी, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। जिले के विभिन्न थानों और गांवों में भी श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की गई। इस अवसर पर मोहला और औंधी में रक्तदान शिविर भी लगाए गए। गौरतलब है कि 12 जुलाई 2009 को मदनवाड़ा क्षेत्र में हुए नक्सल हमले में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार चौबे सहित 29 जवान शहीद हो गए थे। जशपुर में जशपुर में तपकरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत उड़ीसा कुनकुरी मार्ग पर लवाकेरा के पास कल एक

0: तेज रफ्तार हाईवा और कार के बीच आमने सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। उधर सरगुजा जिले के मैनपाट में कल दो मोटरसाइकिल की आमने सामने से हुई टक्कर में तीन युवकों की मौत हो गई। वहीं एक अन्य हादसे में अंबिकापुर सीतापुर राष्ट्रीय राजमार्ग 43 में सेदम के पास मोटरसाइकिल से जा रहे एक दंपत्ति को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौत हो गई और उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं जांजगीर चांपा जिले के बुचहरदी गांव में दो मोटरसाइकिलों के बीच हुई टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इस दुर्घटना में दो बच्चों सहित चार अन्य लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें बिलासपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वन विभाग की टीम ने जांजगीर चांपा जिले में वन्य जीवों के अवैध शिकार और तस्करी के मामले में कार्रवाई करते हुए पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। बमनीडीह ब्लॉक के गोविंदा गांव निवासी इन लोगों पर संरक्षित वन्य जीव गोह का शिकार कर उसके नाखून निकालकर अवैध रूप से बेचने का आरोप है। सोशल मीडिया में वायरल एक वीडियो की जांच के दौरान जब वन विभाग की टीम गांव पहुंची तो शिवराम गोंड नामक आरोपी के घर संरक्षित वन्य जीव गोह बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि गो के नाखून निकालकर उसे ऊंचे दाम में बेचने की तैयारी थी। आरोपी के निशानदेही पर उसके अन्य साथियों को गिरफ्तार कर जांजगीर कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उन्हें जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। राजधानी रायपुर के माना कैंप स्थित शूटिंग रेंज में कल 25वीं छत्तीसगढ़ राज्य शूटिंग मीट का शुभारंभ किया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश राइफल एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेश भर के निशानेबाज हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ संजीव शुक्ला शामिल हुए। विशिष्ट अतिथि के रूप में विंग कमांडर विवेक कुमार साहू शामिल हुए। इस राज्य शूटिंग मीट में पुरुष और महिला वर्ग के साथ अलग अलग आयु समूहों में मुकाबले आयोजित किए जा रहे हैं। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा सूबेदार उप निरीक्षक संवर्ग और प्लाटून कमांडर की भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा आज सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की गई। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में भिलाई भिलाई नगर के बीच स्थित खुर्सीपार रेलवे संपार फाटक पर मरम्मत कार्य किया जाएगा। इसके चलते 14 जुलाई की सुबह 8 बजे से 24 जुलाई की रात 8 बजे तक इस फाटक पर सड़क यातायात पूरी तरह बंद रहेगा। खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले की पुलिस ने 8,65,00,000 रुपए से अधिक की ऑनलाइन साइबर ठगी के मामले में भिलाई के एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। और जशपुर जिले के चार वन परिक्षेत्रों में इन दिनों लगभग 32 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। हाथियों की गतिविधियों को देखते हुए वन विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है। वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे हाथियों के विचरण वाले क्षेत्रों में न जाएं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देशभर में आज चलाया गया व्यापक पौधारोपण अभियान। नई दिल्ली में आयोजित वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। कल से शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का 5 दिवसीय मानसून सत्र। नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश के नगरीय निकायों को जारी किया वित्तीय आवंटन। और दंतेवाड़ा और कांकेर जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए हथियार और विस्फोटक बरामद किए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा,
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री। चलो,
1: कहाँ
2: एडमिशन कराने?
4: खाता हुआ एक्टिव,
5: आरबीआई कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 7 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ईमेल करेगी सुनी का शेष भाग।

कार्यक्रम ईमेल करेगी सुने के इस भाग में सभी श्रोताओं का पुनः स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए सुनिए। फिल्म का नाम है स्वर्ग से सुंदर। स्वर दिया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने। आनंद बख्शी की रचना है। धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इस गीत के लिए ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं जाखोद से शंभुदयाल खट्टक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश, दीपक और पूजा खटक, लगान पंढरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुखमणि बघेल, साहिल, भारती बघेल, गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक, स्वाति जायसवाल, पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला, इंदु, पार्वती और हिमांशु गोदारा, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित और गर्वी चौहान, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित और तानिया नारंग, बुल्ढाना महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभा, दीपाली और श्लोक कुमार, जनकपुर पुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी, पर्ल और वेलिस डिकेस्ट्रो, बठेना से परमेश्वर साहू, राजपति, टोप सिंह, काजल, पूर्वी, हेजल, राजेश और रेशमा साहू, हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद और अलका मिड्डा, बोटसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली और प्रियांशु साहू, राजकोट से जूली और जगदीश, गुमला झारखंड से नजबुल होदा, एसएम जावेद, शगुप्ता, अंजुम, तेलंगाना निजामाबाद से शेख रहीम मुन्ना, शेख अल्लाह बख्श और राबिया शेख, तखतपुर से हमारे श्रोता साथी हैं मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल और नानक चंद मल्होत्रा। लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद पर फिल्म स्वर्ग से सुंदर का ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ई मेल करेगी सुने, आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम के अगले गीत के लिए ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं लोरमी चचेड़ी से कमल कांत मरावी, प्रमीला नेहा, पुष्पराज और ऋषभ मरावी, सौंगा जिला धमतरी से कोमल सेन, तोषण सेन, विनायक सेन, कोलगांव से पांडु चंदन, पांडुरंग कुंभार, उषा प्रतीक्षा, प्रथमेश चंदन, रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति, रितेश, राजेश्वरी, उत्कर्ष चौहान, पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, नवीन, सौरभ और साइना शर्मा, पटियाला से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर और मनु, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनीचा, पूनम, विशाल, प्रिया दिशानी, निमित आहूजा, धनौरी तेलीवारा से निसार सलमानी, नौशाद, आलिया और आयान, खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, नरगुड़ा से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, हिसार से राजकुमार, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार, सीतामणि बिहार से नुसरत जहां, साइना नाजिया और नूरी नाज, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोट के नंदा हनुमान, उत्तम जमदाड़े, बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जौड़ा, मंजीत कौर, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप एकम, दमन और अभिजोत, गुजरात से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश, वीरमगांव राजकोट से रुचि गुप्ता, ट्विंकल और उमा गुप्ता, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा और कपिल छिपा, साथ में है पूजा परिहार। लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद पर फिल्म अधिकार का ये गीत। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें हैं, रमेश पंत की रचना और आर डी बर्मन का संगीत है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ईमेल करेगी सुने, आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम का आखिरी गीत लीजिए सुनिए, फिल्म अभिनेत्री से। स्वर दिया है लता मंगेशकर ने, मजरू सुल्तानपुरी की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। इस गीत के लिए ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं रायगढ़ बिहार से उमा राज, पवन, संजय, दीपक, कमल, लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराजहाँ, अडार नानघाट से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी वर्मा, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा, रिमझिम गुप्ता, समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा, अदिति, राधे, दीपक, अंकुर, राघव गुप्ता, राजकोट से राजेश, कृष्णा, स्वाति और ख्याति कुमारी, सरगुजा से अजिता पाल, प्रभा रानी और प्रियांशी शर्मा, करजत मुंबई से अब्दुल कलाम राइन और अब्दुल सलाम राइन, पीपरलोड सरगांव से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति और शिवांश वर्मा, पहांदा पलारी से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत, लखनलाल, सावित्री देवांगन, खमरिया से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार, बलौदा से दिलहरन गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल, नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, आश्विन, मंगलाबेन शाह, साथ में हैं राजेंद्र शाह, लतरेंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि और लोखेलाल वर्मा, नांदूरा महाराष्ट्र से श्रीकृष्ण बाठे, संदीप और अमूल्य बाठे, पलारी से हमारे श्रोता साथी हैं प्रकाश वर्मा, प्रिंस, निखिल और यशस्वी वर्मा, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश राम मिस्त्री, नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम और वामिका, साथ में है वाणी थांदी। लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद पर फिल्म अभिनेत्री का ये गीत।

फिल्म अभिनेत्री के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम ईमेल करेगी सुने अब यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 7:20 हुए हैं। समय हो चला है कार्यक्रम ग्राम सभा का। आइए श्रोताओं, अब चलते हैं कार्यक्रम ग्राम सभा की ओर।

राम राम संगवारी हो। ग्राम सभा कार्यक्रम के सुनैया जम्मो किसान भाई बहनी मल्ला राजू भैया के राम राम जय जोहार। नांगर के जांगर मा चिखला भर गे, अजी नांगर के जांगर मा चिखला भर गे, बैला भैंसा करे जी का तानी नगरिया, और तय कैसे परे उतानी। भाई बहनी हो, ये समय देखियो तो किसानी के बुतहा भदरा है। फिर हमर जांगर पिरैया किसान भाई मन थोड़े ढेरिया ही, चाहे चिलकत घाम हो के लौकत बरसत पानी हो के ठिठर जार, हमर किसान भाई मन जांगर पेरे भर नहीं ढेरिया बयन। संगी हो, पाछू हफ्ता पानी गिरी से तो हमर किसान भाई मन के उमंग हा कई गुना बाढ़ गिरी से, पर दो तीन दिन होंगे पानी है नहीं गिरत है तो गोट बात शुरू हो जाते, कैसे करी पानी है गा गिर ही धन नहीं गा। तो भाई आस रखो, निश्चित रूप ले आस पूरा हो ही, और जिन पानी गिर रही से तेला आप मन अनुभव करे हो, कौन क्षेत्र में नदिया नरवा मन बढ़िया बुहात रही से और बुहा के समुद्र में पहुंच गए, वो पानी हम छेके नहीं पाएन, तो भाई हम सब ला पानी छेके के उद्यम लग करना चाहिए भाई बहनी हो। अब कई ठीक तरीका है, जैसे नार वाला खेत है और नरवा में जाते उनसे आप मन बंधा नहीं बांध दो, वो पानी के धार ला आप मन अपन गांव के तरिया डहर छेक दो, जिखले तरिया भर जाए और ओकर माँ मछली पालन के बूता कर सको, और पानी है भर जाए हमारे तरिया माँ तो ओकर ले हमन अपन धान आनी बानी के फसल सब्जी ओकर सिंचाई घलो कर सकबो। नलकूप के गड्ढा रथे संगवारी हो, आसपास माँ ओती पानी ला गिरा दो या कुआं हमा गिरा दो, और पानी बचत के उद्यम हमारे किसान भाई मन ला खचित करना चाहिए। सबले बढ़िया बात तो ये हो ही किसान भाई बहनी हो कि हम सब ला मिल के वृक्षारोपण के उपाय ला करना चाहिए। धान के फसल में सबले ज्यादा पानी रखते हैं भाई, और पानी ले है जिनगानी और बिन पानी सब सुन, ये बात ला चेत करके हम सब ला पानी ला रोके के उद्यम ला करना चाहिए। अब आप मन सुना वो फरमाइशी गीत के कार्यक्रम, आप मन के गीत आवा ओ इधर चलत हैं।

आप मन के गीत में मैं राजू भैया स्वागत करत हूँ। चर्चा ये करना चाहबो संगवारी हो, इसे धान के बुआई हो गए संगवारी हो, आप मन जानत हो खेत खार जात हो या फिर सड़क के तीर तीर मरेंगे हो, तो गाजर घास बहुत ज्यादा जामे है जी, जिन्हें हमार पर्यावरण के सबले बड़का दुश्मन है। इला अभी बढ़िया नींद के हमारे मर के सड़ा देथन भूमि में दाब देथन तो बढ़िया हो ही, लेकिन आप मन जानत हो यह जहरीला पौधा है, एमा पॉइजन ग्लैंड रहते, इसे कई के वैज्ञानिक मन कहे मतलब 20 ग्रंथि रहते, तो उखाने की बेरा सावधानी पूर्वक आप मन बोला उखाना दस्ताना लगा के उखानिया तो अच्छा हो ही। कार्यक्रम के पहली गीत सुनाबो हमन लक्ष्मण मस्तूरिया और अनुराग ठाकुर के स्वर में, पसंद करे हमर ए मयारू संगवारी मन। आप हो सिमगा ले हरदेवल लाल पारावाड़ ले संगवारी मन लिखे, रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सन्नी कोमल यादव, दत्नेगिर हमारे मयारू संगवारी है, विश्राम यदु, पार्वती लक्ष्मीना यादव, रोहासी ले डगेश्वर राम साहू, नूतन साहू, गौरव साहू, आफा हटौत बाजार लाहौद ले कमलनाथ पटेल, राकेश पटेल, समीर और राजकुमारी पटेल, बिलगहना शक्ति बहराले हमार मयारू संगवारी, श्याम शंकर मिस्त्री, बाबा विजय, रागनी गीता देवी, कैलाश चंद्रवती, कुसुम कांसी।

राधा परवार, आप हो मोती गार्डन भाटापारा ले, मोतीलाल झेरिया, कल्पना, बिट्टू कुमार, चिंटू, युग कुमार भाटापारा ले है, राम कुमार राउत, अमरीका गणेश, कार्तिक और युवराज ये संगवारी मंद है, नैला बोरसरा जांजगी ले, हेमदेव तिवारी, दुर्गा प्रसाद तिवारी, अमन तिवारी, मीनाक्षी, उमा, अंजुला, ठगिया देवी, विष्णु प्रसाद, मोंगरा देवी मिश्रा और प्यारे लाल मिश्रा, आप पहाड़ा अहिवारा जिला दुर्ग ले, पोषण बंसोर, चंद्र किरण, प्रीति और छाया बंसोर, चांदनी चौक, गंडई पंडरिया ले, हमर मयारू संगवारी है, पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू रविंद्र सेन और ये चले है रौनक सेन, बेमे तरल है हमर मयारू संगवारी, सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा हेमलता सारथी, भाई कमलकांत सारथी, वीरेंद्र ब्रिज कांत सारथी, उच्च भट्टी खोनिया सिपत ले हमर मयारू संगवारी है, उमेंद्र दास मानिकपुरी और गायत्री मानिकपुरी और सूर्यकांत मानिकपुरी, तो हम तो ही कहबो के हे धरती मैया परत हो तोर पैया, हे धरती मैया परत हो तोर पैया, तोर अचरा के छैया मा राख ले मुला, ए भामा आप न सुनाथन ये गीत ला सुनाऊं।

0: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
1: देश के युवाओं ने ठाना है भारत को आयुष्मान बनाना है। आज ही पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाकर उन्हें दे नए साल का उपहार। 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मिला 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का अधिकार। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें।

भाई बहनी हो, यही मौका है कि हमन आनी बानी के फूल ले धरती दाइला साजिन सवारिन औ जेखर सबले ज्यादा बजार में मांग रथे आठों काल 12 महीना चाहे सुख के बात हो के दुख के बात हो है फूल अन भाई तो काबर ना हम सब एकर रकबला बढ़ाए के बात ल करिन और माँ ध्यान दिन फिर फूल के खेती के बात करबो तो सबले ज्यादा हमर बिलासपुर अंचल में चंदनी गोंदा के होते गोंदा फूल के खेती है कतका झी किसान भाई मन ला रोजगार दे चांदनी गोंदा हो गए कलकतिया गोंदा हो गए एकर नर्सरी तैयार करे के बढ़िया ही बेर है संगवारी हो तो सावधानी पूर्वक एकर रकबा अपन बढ़ावा और कम रकबा में ज्यादा उत्पादन लेके अपन आमदनी ला बढ़ावा। कार्यक्रम के अगला गीत ला पसंद करे है हमारे संगवारी मन आप और दत्तरंगी भाटापाला ले नोखेलाल वर्मा हीरामणि पारसमणि वर्मा और पुष्पेंद्र मणि वर्मा पूरी लाफाले भैया विद्यानंद साहू त्रिवेणी रानी बबली सुमन मंटू मिष्टी सृष्टि दृष्टि गन्नू गणेश कान्हा कृष्णा और अंशु साहू आप हो कोटगढ़ अकलतरा ले रमेश कवर्थ राजकुमारी और सूरज सुरभि आरती कवर्थमन दगौरी उड़नताल हमर मयारू संगवारी है श्यामता प्रसाद गायकवाड़ हेमलता जागृति सरला पल्लवी शमीर गायकवाड़ पथरिया भरे वाले भैया चंदूलाल सिंगरौर नारायणी नोमेश नेहा और वान्या सिंगरौल मन आप हो बसी बार ले संगवारी है शिवनारायण नामदेव सविता देवी कुमारी आंचल कुमारी अंचल चांदनी विनय कुमार वर्षा और डॉक्टर मनोज कुमार कंवर मन शांति नगर पाली ले हमर संगवारी विष्णु कुराम श्रीमती संतोषी कुमारी आरती पूर्वा प्रतिभा योगेश नीलेश चंद्रशेखर और पूरा कुराम परिवार मन रिंगनी ले हमर मयारू संगवारी है दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा मन रशेड़ा अकलतरा ले मुरलीधर साहू लक्ष्मी देवी साहू योगेश कुमार साहू कीर्ति कुमार साहू संध्या साहू और डिकेश कुमार साहू इन्हें चलेहावा वासु डाली और पूर्वेश कुमार साहू मन आप हो हमर मयारू संगवारी नकुश्याम मोहम्मद अकरम मोहम्मद अजीज लुथरा खमरिया ले आप हो पोटिया कला दुर्ग ले संजय साहू सुजाता साहू शशांक साहू सीमा साहू मन आप जमो के पसंद में शुरुआबो आपला सुरेंद्र मधुकर और ज्योति चौहान के गाए गीत यही कहबो के आहू कही के मयारू दगा मत डारे आहू कही के मयारू दगा मत डारे सुरता सुरता मा मोला मार डारे यही भाव में सुना था ना आपला ये शुकर गीत सुनाओ

0: ए गीत ल गावत रिसे सुरेंद्र मधुकर, ज्योति चौहान और ओकर संगवारी मन। अब आवाज सुनत हन ये संदेश ला।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
3: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे,
6: RBI कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: धान कटोरा कई थे जेला अन्नपूर्णा के था तिला। धान कटोरा कई थे जेला अन्नपूर्णा के था तिला। घेरी बेरी बंदत हो मैं छत्तीसगढ़ के माटीला। भाई बहनी हो, हमर छत्तीसगढ़ के माटी अतका समृद्ध है, फिर लगातार रासायनिक खातो या दवाई के डारे देखियो तो हमर भुइयां घलो हा जहरीला बन गए। तेखरे सेती वैज्ञानिक मन कथे आवाज के जरूरत घलो है कि जैविक खेती करी, पारंपरिक खेती करी। जैविक खेती हा हमर माटी के संरचना ला बहुत बढ़िया बना जाते, और जैविक खातु के बात करबो तो ओमा गेंगरुआ घलो बढ़िया पनप जाते। पारंपरिक खेती तो खाली आओ बहुत बढ़िया है ना भाई, जिन खेती हमर पुरखा मन करत रही है, ना निदत रही ना गुड़त रही है ना भाई। पारंपरिक खेती अने जिन कांदी है, घास है और जिन बन खाद है, वो खेते माँ सड़ जाए और पारंपरिक खातु बन जाए। राहेर, तिवरा, जोंधरी, मूंग उड़द लगाओ तो कतका मीठा है। तो आज घलो हमन वाला कर सक संगवारी, जैविक खेती है निश्चित रूप ले, पारंपरिक खेती है निश्चित रूप ले, हम सब बर वरदान बन गए। कार्यक्रम में आगो बढ़वो। अगला गीत है उमेश साहू और सरस्वती साहू के स्वर में, पसंद कर रहे हमारी ये मरे मैं और संगवारी मन। आप हो शिवाजी चौक, राजीव ले, अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और क्रिश श्रीवास्तव मन। अमारपुर पेंड्रा ले हमर मैरू संगवारी दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, रुचि देवी, दिशा, दिव्यांश और लबी श्रीवास्तव मन। आप हो हमर मैरू संगवारी बंगला मटिया बलौद ले शिव।

0: कुमार अंगारे, अंजनी, त्रंबिका, लीना, अंशुमाला और आशुतोष अंगारे मन। ये संगवारी में धनगवा बरपाराले कैलाश चंद्रबाई और आप हो सुरेंद्र, संजना, श्याम शंकर, दरकेश, प्यारे लाल सोनवानी, मोनू कोटवार और प्रकाश दरकमन। ये संगवारी मन है महावीरवाड भाटापाराले श्रीमती अमृता यादव, पार्वती, श्रीमती ईश्वरी यादव, श्रीमती लक्ष्मी यादव, कुमारी प्रेरणा और डिम्मी यादव। हदबंद न्योधले हमारे मैरू संगवारे है श्रीमती दुलारी यादव, प्रियंका यादव, कुमारी प्रीति यादव, श्रीमती उमेश्वरी यादव और श्रीमती सुनती यादव मन। ग्राम पंचायत बठेना ले हमर मयारू संगवारी है बलकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा और चटौदा सारा गांव ले सुजान वर्मा, सहोदरा बाई वर्मा और आयुषी कृत वर्मा। जांजगीर मेहंदले हमार मयारू संगवारी है भैया राम नारायण कश्यप, कविता देवी कश्यप, कुसुमलता कश्यप, खुशबू कुमारी कश्यप। आप हो रुआ बांधा सनिचरा बाजार भिलाई ले सुशील जैन, कल्पना जैन, शैया जैन, सौरभ जैन, शौर्य जैन और शुभम जैन। तो आप सबके पसंद में सुना थन उमेश साहू, सरस्वती साहू के गाय ये
1: रंग मटा सीगा गुरमटिया के मोटहा चाऊ बजन मिठाते पासीगा गुरमटिया के।

गजब ताकत हावरे भाई, छत्तीसगढ़ के बासी और माटी के बातला हमार कलाकार संगवारी मन अपन गीत के माध्यम ले गावात्री से उमेश साहू, सरस्वती साहू और संगवारी मन संगवारी हो। यही मौका है कि हमन बारी कोला डहर ध्यान दी। हमार किसान भाई मन खेती तो करते लेकिन बारी डहर कम ध्यान देते और बारी हा हमला रोजगार के सबले बड़का रद्दा उपलब्ध कराते किसान भाई हो। ये बात ला आप मन मानव चाहे मत मानव, बारी माँ यही समय आनी बानी के साग भाजी ला आप मन लगा देवा। अच्छा हो ये हो ही कि बारी ला जोते के पहले साफ सफाई कांटा खुटी ला बीन लो, दूसर माँ ओमा अच्छा कस के सड़े घुरुआ के खातु वर्मी कंपोस्टर डाल देवा और तीन ले चार बाँह जोते के बाद आनी बानी के साग भाजी है इला लगा देवा। और बात करब हम नार वाले सब्जी फसल के, तो करेला है, कुंदरू है, तरोई है, डोंडका है, सेमी है, कोहड़ा है, तूमा है, लौकी है, एक हर खेती हमार किसान भाई मन बड़ा आसानी ढंग से कर सकते हैं। नार वाले अगर हमार किसान भाई मन खेती कर चुके हैं तो उमल्ला पौध संरक्षण के उद्यम हमार किसान भाई मन ला करना चाहिए, जिससे आप मन नार वाले फसल में कभी कभी देखे लाल रंग के जिन भृंग है वह बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और कतका बेर उमन अने नुकसान पहुंचाते, कतका बेर हमार फसल ला काटते पते नहीं कराए चले, जेखर ले हमार किसान भाई मन के बहुत ज्यादा नुकसान हो जाते हैं। तो संगवारी हो ये नुकसान हा आप मन के नो है बल्कि पूरा राष्ट्र के नुकसान है ना भाई। तो एकर ले बचाए बर आप मन डाइथेनम 45 नाव के जन दवाई है डब्बा में आप मन देखिया तो 35 ईसी लिखा रहते, वही दवाई ला एक स्प्रेयर में 10 ले 15 ml भरे के बाद आप मन बढ़िया छिड़काव कर सकत हो। दूसर माँ जी हाँ आप मन नार वाला जिन फसल कुंदरू करेला तरोई डोंडका सेमी लगा है कोहड़ा वो जगह में पानी निकासी के समुचित व्यवस्था हमारे किसान भाई मल्ला करना चाहिए। दूसर में निंदाई गुड़ाई के समुचित व्यवस्था हमारे किसान भाई मल्ला करना चाहिए। फिर देखिया अगर निंदाई गुड़ाई नहीं करबो तो आनी बानी के जिन बंद खादा है वो मन जाम जाते, गोर्रू है जम जाम जाते है भाई, बड़े बड़े भेजरा मन बांध जाते, कान मन जाम जाते, तो जिन पोषक तत्व हमारा नार वाले फसल मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाए, जेकर ले पौधा कमजोर हो जाते हैं। और सबले बढ़िया ये हो ही कि आप मन तरोई लगाया था कि डोंडका लगाया था कि कोहड़ा लगाया था आप मन ओला आधार देवा। कतको जी संगवारी मन ते मंडप विधि ले एकर खेती करते, उन्नत तकनीक ला अपना के व्यावसायिक खेती करते, जिन्हें निश्चित रूप ले उला बहुत बढ़िया रोजगार के रद्दा देते। कार्यक्रम मार अगला गीत है शादराम मरावी और संगवारी मन के स्वर में जे पसंद करे हमार ये मैं और संगवारी मन आप हो सिंगी ऋषि महानदी सिहावा पर्वतन चले बेलर गांव ले आपने लिखे हो मिथिलेश देवांगन मधु देवांगन हिमांशु अंकित देवांगन और संगवारी मन ये है हमारा मैं अरुष संगवारी तेली पारा बिलासपुर ले रजन साहू बेबी ईशानी साहू छन्नू ला श्रीवास और अनिता श्रीवास मन कतिया पारा जूना बिलासपुर ले हमार मयारू भैया सुशील देवांगन अखिलेश लोकेश आशीष रवि शनि देवांगन रेयांश कान्हा और आदित्य देवांगन मन बमहर चाटी डीले गंगा देवी देवांगन पूनम धनेश्वरी महेश्वरी कुमारी मिल्की मीनाक्षी और निधि देवांगन मन ये संगवारी मन है हमार बुड़गहन छत्तीसगढ़ ले राम दुलारी प्रजापति रामशरण प्रजापति चंद्रेश कुमार प्रजापति चंद्रकांता प्रजापति शशिकांता प्रजापति और संगवारी मन पेंशन बाड़ा रायपुर ले रोमनाथ यादव वंदना यादव सूर्य प्रकाश शीला कनक गुनगुन बेबी अदिति और तन्मय यादव और संगे संग भाठा पारा ले दान सिंह रावत दामनी रावत शुभम सौरभ रावत और नीरज रावत मन ये चिट्ठिया है हमार मयारू संगवारी के बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ ले रोशन देवांगन कौशल्या देवांगन हेमलता देवांगन डिंपल देवांगन के डोंगर गांव राजनंदगांव ले हमार संगवारी मन लिखे है राष्ट्रपाल गजभिये तन्मय बेबी अनिष्का और राधिका गजभिये बाग बहरा भदरसी ले हमार मयारू संगवारी है पन्नालाल सेन तारा सेन कौशल सेन खुशबू सेन और पूरा संगवारी मन दतरंगी ले भागवत वर्मा लेवाई ले गुलाब दास मानिकपुरी लछनपुर ले विश्वनाथ साहू और चर डोंगरी पिपरिया ले दुर्गा राम साहू। तो आप सबकी पसंद में हम आप सुनाथन साधराम मरावी के स्वर में गाय गीत कम लागत मा लगाबो हम करेला, कम लागत मा लगाबो हम करेला, कस के खाबो कस के कमाबो मिट जही परिवार के झमेला। तो हे भाव भाई आप सुनाथन ये गीत सुनाओ।

0: सर्दी है।
1: अब आप मल्ला मंडी और मौसम के जानकारी दे दिन मिले। जानकारी के अनुसार मौसम के बात करबो, अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, बादल छाए रही। सब्जी मंडी तिफरा के हमला भाव मिले, फूल गोभी के भाव 1800 रुपए क्विंटल, पपीता 2200 रुपए क्विंटल और दरमी के भाव 9500 रुपए क्विंटल, कटहर 1000 रुपए क्विंटल, करेला के भाव हमारे हाथ में है 3000 रुपए क्विंटल, लौकी 1000 रुपए क्विंटल, चुकंदर 3000 क्विंटल। कार्यक्रम के आखिरी गीत ला पसंद करे है हमर मयारू संगवारी मन देवरी भाटा पारा ले गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, मयाराम रजक, पुनेश्वर रजक, फनेश्वर रजक, मुकेश कुमार रजक, कुमारी हाब्या रजक, टानिया रजक मन। आप हो नवागढ़ कटेले नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामनी वर्मा मन। आप हो दरचूरा ले ददुआ साहू, भूरी साहू, संतोषी दुलौरी, रेखा, मोतीलाल साहू, कामेश्वरी कुमारी, प्रीतम कुमार साहू, दतरेंगी भाटा पारल, द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर ले भैया डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी, सूरज ठाकुर, सुजाला, ज्योति और रियांश ठाकुर मन। आप हो पीपर पारा पाल चुआ मुगेली ले भैया उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता दिवाकर।

तीन वंशी का दिवाकर और भानु प्रिया दिवाकरन। ये संगवारी मन है डोंगरिया मलाजखंड बालाघाट मध्य प्रदेश ले मुन्नालाल पटेल, माधुरी पटेल, याशना पटेल और दिव्यांशु पटेल मन। आप हो साहू पारा पौड़ी लाफा ले राम स्नेह साहू, मीना साहू, ब्रह्मानंद, परमानंद, संध्या, प्रियंका, हर्षुभ, प्रज्ञा, तन्मय, महिमा, शुमांश, आनंद साहू। आप सबो के पसंद में हम सुनाबो किस्मत बाई दीवार के गाये गीत ही कहत कि कस की कमाना है तो गोंदा फूल लगा, कस के कमाना है तो गोंदा फूल लगा, नानचुक भुइया मा ससन भर कमा, ससन भर कमा। यही भाव में सुना था ना आपला ये गीत सुनाऊं।

किस्मत बाई दीवार के गाए गीत के संग आप मन के गीत सिरा थे जात जात हम अपला आपला बता दीन हमर पता पता है आप मन के गीत ग्राम सभा अनुभाग पोस्ट बॉक्स नंबर 49 द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बिलासपुर पिन नंबर है 495006। एक संग आज के ग्राम सभा कार्यक्रम रे राजू भैया दविदा जय जोहार राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम सभा। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं हरिहरन के गाए गीत और गजलों को।

0: महिला सभा कार्यक्रम हेतु एक सूचना सुनिए। साथियों, कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण हर महीने के दूसरे मंगलवार को होता है। इस माह इसका प्रसारण 14 जुलाई 2026 मंगलवार को शाम 5:35 से किया जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग 13 जुलाई दिन सोमवार को दोपहर 3 बजे से 3:30 के बीच की जाएगी। आप हमें फ़ोन करके डॉक्टर से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे कार्यक्रम के विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर सृष्टि चतुर्वेदी गुप्ता। आपसे चर्चा का विषय होगा मानसून में महिलाओं की सेहत, संक्रमण से सुरक्षा। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं इन नंबरों पर। बिलासपुर का एसटीडी कोड है 07752। हमारे फ़ोन नंबर है 2665 92 और 3100026। आपकी फ़ोन का हमें इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। आज के कलाकार हैं ए हरिहरन।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
1: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।

हरिहरण के गाए इस गज़ल के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रजनीगंधा।

साथियों, हिंदी सिनेमा अनमोल रत्नों से समृद्ध है। ये अनमोल रत्न हैं फिल्मों के निर्देशक, कलाकार, गीतकार, संगीतकार और सुनहरे पर्दे पर काम करने वाले प्रतिभाशाली अनेकों लोग। श्रोताओं, आज कार्यक्रम में हम यादें और बातें लेकर आए हैं ऐसे ही प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक और निर्माता विमल रॉय की और जुबली कुमार के नाम से मशहूर राजेंद्र कुमार की। यादों, गीतों और बातों के साथ प्रस्तुत है कार्यक्रम रजनीकंधा।

पहली यादें और बातें विमल रॉय की। इनका जन्म आज ही के दिन 12 जुलाई 1909 में ढाका के सुआपुर गांव बांग्लादेश में हुआ था। उस समय ये पूर्वी बंगाल और असम प्रांत का हिस्सा था। विमल रॉय असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने सिनेमा जगत में कैमरा असिस्टेंट के रूप में शुरुआत की, बाद में फिल्म निर्देशक और निर्माता बने। वे मनोरंजन के साथ साथ अपनी फिल्मों में महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों को दिखाते थे। 2 बीघा जमीन, परिणीता, विराज बहु, देवदास, मधुमति, सुजाता, परख, बंदनी उनकी बेहतरीन फिल्में थी। उन्होंने अपने कैरियर में 11 फिल्म फेयर पुरस्कार और 2 राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार जीते थे। फिल्म मधुमति ने 1958 में 9 फिल्म फेयर पुरस्कार जीतकर एक इतिहास लिखा। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।

विमल रॉय ने कई बंगाली और हिंदी फिल्मों का निर्माण किया। उन्होंने 1936 में मनोवीणा रॉय से विवाह किया। विमल रॉय की फिल्मों के अधिकांश गानों का संगीत सलिल चौधरी और एस डी बर्मन द्वारा दिया गया। उनकी फिल्मों के गाने खूबसूरत और यादगार हैं। विमल रॉय की फिल्में भारत, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में प्रदर्शित होती रही है। उनके द्वारा निर्देशित सभी फिल्में कामयाब रही। उनकी फिल्मों में कला और व्यवसाय दोनों का संतुलन रहा। उनकी फिल्में समाज में रीति रिवाज और उनमें बदलाव को दिखाती थीं।

महान निर्माता निर्देशक विमल रॉय का निधन। 7 जनवरी 1966 को 56 वर्ष की आयु में कैंसर बीमारी के कारण हुआ। कई वर्षों बाद उनके सम्मान में 8 जनवरी सन 2007 को इंडिया पोस्ट द्वारा उनके चेहरे वाला डाक टिकट जारी किया गया। उनकी याद में विमल रॉय मेमोरियल ट्रॉफी 1997 से हर वर्ष फिल्म उद्योग में नए कलाकारों और उत्कृष्ट युवा फिल्म निर्माताओं को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। आज 12 जुलाई को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देते हुए सुनते हैं उनकी फिल्म बंदनी का ये गीत।

श्रोताओं, अभी हम याद कर रहे थे प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक विमल रॉय को। साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा, आकाशवाणी बिलासपुर से। अब यादें भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेता राजेंद्र कुमार की। जुबली कुमार के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र कुमार ने अपने 4 दशक के लंबे कैरियर में 80 से अधिक फिल्मों में काम किया। इनका जन्म 20 जुलाई

27 को सियालकोट पंजाब में हुआ था। वहीं 12 जुलाई 1999 को 71 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। आज इनकी पुण्यतिथि पर इन्हें याद करते हुए इनके बातों और गीतों की ओर आपको ले चलते हैं।

राजेंद्र कुमार ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत 1950 की फिल्म जोगन से की, जिसमें उन्हें दिलीप कुमार और नरगिस के साथ अभिनय करने का अवसर मिला। 1957 में उन्होंने फिल्म मदर इंडिया में नरगिस के बेटे की भूमिका अदा की। 60 के दशक में उन्होंने कई शानदार फिल्में दी। कई बार ऐसा हुआ कि उनकी 6-7 फिल्में एक साथ सिल्वर जुबली हफ्ते में होती थी, इस कारण उनका नाम जुबली कुमार पड़ गया। अपने फिल्मी जीवन में उन्होंने कई सफल फिल्में दी, धूल का फूल, दिल एक मंदिर, मेरे महबूब, संगम, आरजू, प्यार का सागर, गीत, गहरा दाग, साथी, सूरज और तलाश जैसी फिल्में थीं।

राजेंद्र कुमार तुली, जिन्हें फिल्मी जगत में पहचान मिली राजेंद्र कुमार नाम से। इनका जन्म सियालकोट पाकिस्तान में हुआ था। विभाजन के समय इनका परिवार भारत आ गया। उन्होंने फिल्मों में आने के लिए काफ़ी संघर्ष किया। कई वर्षों बाद उन्हें निर्देशक H.S. रावल के सहायक के रूप में काम करने को मिला। राजेंद्र कुमार का विवाह शुक्ला कुमार से हुआ। उनके पुत्र कुमार गौरव भी एक अभिनेता है। उन्होंने अपने पुत्र के लिए लव स्टोरी और नाम जैसी सफल फिल्मों का निर्माण किया। भारत सरकार ने फिल्मों में उनके योगदान के लिए 1969 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया।

राजेंद्र कुमार को हिंदी सिनेमा का एक सदाबहार सितारा माना जाता है, जिन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी से करोड़ों दिलों पर राज किया। उनकी 35 से ज़्यादा फिल्मों ने लगातार 25 से 50 हफ्ते सिनेमाघरों में चलने का रिकॉर्ड बनाया था। उनकी हिट फिल्मों के कारण सिनेमाघरों में उनके पोस्टर महीनों तक नहीं उतरते थे, जिसके कारण उन्हें जुबली कुमार की उपाधि मिली थी। कैंसर की बीमारी होने के कारण 12 जुलाई 1999 को उनका निधन हो गया। ऐसे महान कलाकार को श्रद्धांजलि देते हुए सुनते हैं उन पर फिल्माएं कुछ गीतों को।

श्रोताओं, इन्हीं गीतों, बातों और यादों के साथ दीजिए अनुमति अपने साथी आरती को कार्यक्रम रजनीकंधा से। नमस्कार श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रजनीकंधा। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है। थोड़ी ही देर में समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा।

भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा होर्मूज जलडमरू मध्य सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार।

0: वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर जोरेव का मैच जारी। अरब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। ये बयान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। उन्होंने कहा कि ईरान का होर्मुज जलडमरू मध्य पर कोई नियंत्रण नहीं है और सुरक्षित पारगमन मार्ग खुले हैं। इससे पहले ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला करने और उसे आग लगाकर चालक दल को जहाज छोड़ने के लिए मजबूर करने के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हवाई हमले किए। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फूकवाक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन होंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है।
2: इन बयानों में 12 जुलाई 2016 को हेग में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के तहत स्थापित न्यायाधिकरण के मध्यस्थता निर्णय का जिक्र किया गया है। उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय को अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी बताया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए इसे अमान्य बताया। उसने कहा कि इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। चीन ने दोहराया कि वह इसे न तो स्वीकार करता है और न ही मान्यता देता है। एक वर्ष पहले विवादित जल क्षेत्र में तनावपूर्ण गतिरोध के बाद दक्षिण चीन सागर तनाव का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहां चीन और फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान के बीच बार बार क्षेत्रीय गतिरोध होते रहते हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक

0: पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया।
1: कार्यक्रम के दौरान जनभवन की नक्षत्र वाटिका में कुल 29 चंदन के पौधे लगाए गए। पौधारोपण अभियान में जनभवन के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ बालिका गृह की लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। इस अभियान में कई मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों, विभिन्न विभागों के लोगों, विद्यार्थियों और आम जनता ने भी भाग लिया। ये अभियान राज्य के 75 जिलों में चलाया गया। राज्य ने इस वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 करोड़ से ज्यादा पौधे भी लगाए। उत्तर प्रदेश में इस साल अब तक कुल 40 करोड़ 29 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। ये अभियान 27 विभागों के आपसी सहयोग से चलाया गया, जिसमें वन विभाग ने 15.5 करोड़ पौधे लगाने का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा किया। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रेशमा तिवारी।

0: 29 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। ये अभियान 27 विभागों के आपसी सहयोग से चलाया गया, जिसमें वन विभाग ने 15.5 करोड़ पौधे लगाने का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा किया। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रेशमा तिवारी।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्य भर में 21 लाख पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
2: जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर जीडीपी में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। यह आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसको मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा। और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। हमारी संवाददाता ने बताया कि गृहमंत्री ने 2029 के चुनाव तक निर्वाचन क्षेत्रों में पौधे लगाने की गतिविधि को 20% तक बढ़ाने की दीर्घकालिक पर्यावरणीय रूपरेखा पर बल दिया।
3: गृह मंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने चीन के ओर्डोस में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। भारतीय महिला टीम ने 4x400 रिले में स्वर्ण पदक जीता, जबकि भाला फेंक में भारत के आनंद सिंह ने स्वर्ण और शिवम लोहाकरे ने कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय पुरुष टीम ने 4x400 रिले और महिला टीम ने 4x400 मीटर रिले में रजत पदक जीते। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का फाइनल मुकाबला इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के बीच जारी है। इससे पहले चीन की गुओ हानयू ने और फ्रांस की क्रिस्टीना मिलाडेनोवा की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल्स में कनाडा की गैब्रियला डाब्रोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी को 6-3, 7-5 से पराजित किया। उधर लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट में 457 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में तीसरे दिन इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 23 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन की बना सकी। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक की सीमित समस्या संबंधी दावे का खंडन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर वायरल फर्जी तस्वीर में ऐसा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है।

निर्धारित मानकों के अनुरूप होने पर इथेनॉल और पेट्रोल पूरी तरह से घुलनशील हैं। नई पीढ़ी के प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधारों के विषय पर दो दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन कल से मेघालय के शिलांग में शुरू हो रहा है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा मेघालय सरकार इसका आयोजन कर रखे हैं। ये सम्मेलन देश भर के नीति निर्माताओं, प्रशासकों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और शासन से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाएगा ताकि वो लोक प्रशासन और डिजिटल गवर्नेंस के भविष्य पर चर्चा कर सकें। सम्मेलन में 300 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने निर्माण क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल तकनीक अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के 172वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी भवन या संरचना के निर्माण के दौरान उसकी मजबूती से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो भारतीय उद्योग जगत के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और टिकाऊ विकास पर विशेष ध्यान देते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल कल स्पेन पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 16 तारीख को आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। वो नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के माध्यम से भी ऑनलाइन अपने सुझाव दे सकते हैं। नागरिक 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर और SMS से प्राप्त लिंक का अनुसरण करके सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव इस महीने की 24 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया मंगलवार को देशभर में लगभग 668 करोड़ रुपए लागत वाली 7 कर्मचारी राज्य बीमा ESI स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा होर्मुज जल डमरू मध्य में सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में हम सब उस्ताद हैं फिल्म का गाना। गीत असद भोपाली ने लिखा है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का,

कार्यक्रम के अंत में सुनिए स्वयंवर फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में, गीत गुलजार का है, संगीत राजेश रोशन का।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर कर

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

विमल रॉय के पिता हेमचंद्र रॉय की पूर्वी बंगाल के सुआपुर में जमींदारी थी, जो आज के बांग्लादेश का हिस्सा है। बचपन की पढ़ाई लिखाई हुई थाना धामराय के अरमानी टोला स्कूल में। बचपन में विमल दा को चित्रकारी करने और वायलिन बजाने का शौक था। उन दिनों सुआपुर की जमींदारी में दुर्गा पूजा के मौके पर मंचित किए जाने वाले नाटकों में भी विमल रॉय भाग लिया करते थे। इन्हीं में से एक नाटक था मिस्र कुमारी। 1957-58 में इसी कथा को विमल दा ने सेल्यूलॉयड पर उतारा था। यह फिल्म थी यहूदी।

बिमलदास जिन दिनों ढाका के जगन्नाथ कॉलेज में पढ़ रहे थे, पिता हेमचंद्र रॉय का देहांत हो गया। जमींदारी की देखभाल करने वाले मैनेजर ने अमानत में खयानत करते हुए जमीन जायदाद हड़प ली और बिमलदास का परिवार सब कुछ लुटाकर खाली हाथ कोलकाता चला आया।

0: बिमल दा रोज ही न्यू थिएटर्स और अन्य स्टूडियोज के चक्कर काटने लगे। बस किराए के पैसे बचाने के लिए पैदल चलते। खैर, न्यू थिएटर्स में बिमल दा संपर्क में आए प्रमथेश बरुआ के, जिन्होंने बिमल दा को फिल्म अधिकार की स्टिल पब्लिसिटी से संबंधित काम की जिम्मेदारी सौंपी। न्यू थिएटर्स में बिमल दा फिर नितिन बोस के सहायक हो गए और न्यू थिएटर्स में ही उन्होंने सिनेमेटोग्राफी के साथ साथ निर्देशन की बारीकियां सीखी। सिनेमेटोग्राफर के रूप में काम करते हुए बिमल दा ने न्यू थिएटर्स की जिन फिल्मों को सेल्यूलॉइड पर उतारा वो थी गृहदाह, माया, मुक्ति, बड़ी दीदी, अभिनेत्री और प्रमथेश चंद्र बरुआ निर्देशित देवदास।
1: दुख के

0: अब दिन
1: न्यू थिएटर्स के श्रेष्ठतम छायाकारों में शामिल बिमल दा अपने अनुभवों के आधार पर फिल्म निर्देशन में अपनी प्रतिभा को आजमाना चाहते थे। जल्द ही उन्हें मौका मिला और उन्होंने न्यू थिएटर्स के लिए निर्देशित की फिल्म उदयर पौथे। फिल्म की नामावली में स्थापित नाम थे कंपोजर आरसी बोराल और तत्कालीन बांग्ला रंगमंच के नामी कलाकार विश्वनाथ भादुड़ी के। कई लोगों ने इस फिल्म के बुरी तरह फ्लॉप हो जाने की भविष्यवाणी कर डाली। फिल्मों से जुड़े लोगों और समीक्षकों ने भी इसके विरोध में ही विचार व्यक्त किए। 1 सितंबर 1944 को फिल्म उदय पौथे कोलकाता के चित्रा सिनेमा घर में रिलीज हुई और इस फिल्म ने न्यू थिएटर्स की पहले की सभी फिल्मों की कामयाबी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। चित्रा सिनेमा घर में यह फिल्म एक वर्ष तक हाउसफुल चली। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए इसका हिंदी संस्करण बनाया गया हमराही। इसके बाद बिमल दा ने जो दो और फिल्में निर्देशित की वो बुरी तरह असफल रहीं। फिल्में थीं अनजानगढ़ और मंत्रमुग्धा। न्यू थिएटर्स के लिए उन्होंने आखिरी फिल्म निर्देशित की पहला आदमी, जिसके प्रीमियर के लिए बिमल दा जब मुंबई आए तो दादर के चेतना सिनेमा में उनकी मुलाकात हुई अपने मित्र हितेन चौधरी से, जिन्होंने सावक बाचा और अभिनेता अशोक कुमार को बिमल दा के नाम की सिफारिश की फिल्म निर्देशन के लिए। और इस तरह मुंबई में बिमल दा ने बॉम्बे टॉकीज के लिए पहली फिल्म निर्देशित की मां। यह फिल्म जिस अमरीकी फिल्म से प्रेरित थी वो थी ओवर द हिल्स। लीला चिटनिस को दी गई मुख्य भूमिका और रोमांटिक लीड में अनुबंधित किया गया तब की एक जूनियर आर्टिस्ट मीना कुमारी को, जिनके बदले बाद में श्यामा को रख लिया गया और उनके नायक बनाए गए भारत भूषण। मुंबई में अपनी इस पहली फिल्म के लिए बिमल दा को मिले कोई 25,000 रुपए। इस बीच अभिनेता अशोक कुमार बॉम्बे टॉकीज से नाता तोड़ चुके थे। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय

की कृति परिणीता के अधिकार उनके पास थे। अशोक कुमार यानी दादा मुनि ने परिणीता के निर्देशन के लिए बिमलदा को अनुबंधित कर लिया। यह फिल्म बेहद कामयाब रही और बिमलदा की प्रतिभा को मिला सम्मान और सराहना।

0: भारतीय महानगरों में यूरोपीय सिनेमा की चर्चित फिल्में भी दिखाई जाने लगी थी, जिनके माध्यम से भारतीय फिल्मकार परिचित हुए। डी सिका, रोजेलिनी और कुरुसावा जैसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के फिल्मकारों की कृतियों से एक दिन बिमलदा, ऋषिकेश मुखर्जी और एक दो अन्य साथी मुंबई के इरोस थिएटर में फिल्म रोशमोन देखकर बेस्ट की डबल डेकर बस से मालाड लौट रहे थे। सब खामोश थे। ऋषिदा के मन में सवाल उठ रहा था, ऐसी फिल्म हम क्यों नहीं बना सकते। उन्होंने बिमलदा से अपने मन की बात कही। बिमलदा ने फौरन कहा, लिखेगा कौन। खैर, आपसी बातचीत के बाद तय हो गया कि ऐसी एक फिल्म बनाई जाएगी और इस तरह रोशमोन की प्रेरणा से बेस्ट की डबल डेकर बस में जन्म हुआ बिमल रॉय प्रोडक्शंस का। इस बैनर की पहली फिल्म थी दो बीघा जमीन। फिल्म दो बीघा जमीन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की इसी शीर्षक की एक कविता से प्रेरित थी, जिसे लिखा था सुप्रसिद्ध संगीतकार सलिल चौधरी।
1: तक तक तक तक तक तक गिन गिन रे। जग जग जग जग जगन जगन गिन गिन रे।
2: जग जग जगिन जग जग जगिन जग जग।

सन 1953 में यह फिल्म केवल 4 हफ्तों के लिए मुंबई के मेट्रो थिएटर में रिलीज की गई, जहां इसके प्रीमियर में आए फिल्म इंडस्ट्री के नामी गिरामी सितारे। फिल्म के प्रीमियर के आंखों देखा हाल की रेडियो के लिए कॉम्पेयरिंग कर रहे थे बलराज दत्त यानी जाने माने अभिनेता सुनील दत्त।

में भी इस फिल्म को सराहा गया। 1954 में कान फिल्म महोत्सव में इसे सोशल प्रोग्रेस के लिए मिला कार्लोवी वेरी पुरस्कार। ब्रिटिश अखबार मैनचेस्टर गार्जियन और न्यू क्रॉनिकल में भी समीक्षकों ने इस फिल्म की भूरी भूरी प्रशंसा की। निरूपा रॉय और बलराज साहनी के अभिनय, शैलेंद्र के गीतों, सलील चौधरी के संगीत और बिमल दा के निर्देशन ने 2 बीघा जमीन को बना दिया हिंदी सिनेमा का एक मास्टरपीस।

लेकिन नौकरी असफल रही। बिमलदा अपने बैनर के भविष्य को लेकर चिंतित हो गए। 1954 में बिमलदा ने अपने दोस्त हितेन चौधरी के लिए फिल्मांकन किया विराज बहू का। अपने बैनर के लिए बिमलदा ने शरद बाबू के उपन्यास देवदास के अधिकार प्राप्त कर लिए। इसी उपन्यास पर प्रमथेश बरुआ की फिल्म का छायांकन बिमलदा ने ही किया था, जिसमें नायक थे कुंदनलाल सहगल।

अपने बैनर तले निर्मित की जाने वाली फिल्म देवदास में पारो और चंद्रमुखी की भूमिकाओं के लिए विचार किया गया नरगिस और मीना कुमारी के नामों पर, लेकिन चुना गया सुचित्रा सेन और वैजयंती माला को। नायक की भूमिका के लिए चुने गए दिलीप कुमार। चुन्नीलाल की भूमिका दी गई मोतीलाल को। गीतकार थे साहिल लुधियानवी और संगीतकार सचिन देव बर्मन।

0: 1958 में निर्मित पुनर्जन्म पर आधारित फिल्म मधुमती बेहद कामयाब रही और मधुमती ने बिमल रॉय प्रोडक्शंस को गहरे आर्थिक संकट से निकालकर किनारे पहुंचा दिया।
1: मैं तो

1959 में निर्मित बिमलदा की फिल्म सुजाता एक और बेहद खूबसूरत और मासूम सी फिल्म है। सुनील दत्त और अभिनेत्री नूतन की जोड़ी के काम को इस फिल्म में बहुत पसंद किया गया। फिल्म सुजाता बिमलदा की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिनी जाती है।

0: बंदिनी बिमलदा की एक और बेहतरीन कृति है। नूतन अशोक कुमार और धर्मेंद्र अभिनीत ये फिल्म हिंदी सिनेमा की अनमोल धरोहर है। इसी फिल्म से बतौर गीतकार शुरुआत की थी गुलजार ने।
1: मोर

विमलदा ने बाहर के जिन बैनरों की फिल्में निर्देशित की वो थीं अनजानगढ़, मंत्रमुग्धा, जिसमें उनके सह निर्देशक थे सुदीश घटक, इनके अलावा पहला आदमी, माँ, परिणीता, विराज बहु, बाप बेटी और यहूदी। बतौर कैमरामैन और सहायक कैमरामैन उनकी डॉक्यूमेंट्रीज थी हाउ केरोसिन टिन्स आर मेड, ग्रैंड ट्रंक रोड और बंगाल फैमिन। बतौर कैमरामैन विमलदा ने जिन कथा फिल्मों का छायांकन किया उनके नाम हैं मीरा, गृहदा, नाला थांगल, देवदास, माया, मुक्ति, चंबे दी गली, बड़ी दीदी, अभिनेत्री, उदयर पौथे और हमराही। हमराही उदय पौथेर का ही हिंदी संस्करण थी। विमलदा की अधूरी फिल्म सहारा को उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने चैताली नाम से पूरा किया। विमलदा एक और फिल्म बनाना चाहते थे, अमृत कुंभेर सौंधाने, लेकिन यह फिल्म एक सपना बनकर ही रह गई। 8 जनवरी सन 1966 को विमलदा की जिंदगी की रील चलते चलते थम गई। जिंदगी मौत की बंदिनी बन गई। विमलदा नहीं रहे, लेकिन अपनी महान कृतियों के रूप में वो जो कुछ छोड़कर गए हैं उसके लिए सिनेमा उनका सदैव ऋणी।

0: विख्यात टैगोर की कृति पर बिमल दा ने बनाई एक और मर्मस्पर्शी फिल्म काबुलीवाला।
1: मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े

0: अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

की उड़ान धरती और आसमान के परे है, मन की उड़ान शहरों, समंदरों, पहाड़ों और घाटियों के पार जाती है। खींचा चला जाता रहा मन तुम्हारी तरफ, तुम्हारे आने से बहुत पहले से, बहुत पहले से तुम्हारा था ये मन तुम्हारी तरफ, खींचा चला जाता रहा सदियों से, सदियों के सफर में तुम हो हमारे।

तुम्हें देखना सिर्फ तुम्हें देखना नहीं है, जब तुम्हें देखते हैं हम तो अपने सपनों को जीते जागते देखते हैं। हम देखते हैं तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारे बिखरे बालों की अदा, तुम्हारा अपने ख्यालों में खो जाना, तुम्हारा गुनगुनाना, होठों में उंगली दबाकर दूर कहीं देखते

कुछ कहना नहीं होता है, न ही कुछ सुनना जरूरी है। किसी बुजुर्ग ने जब कहा था लफ्ज बातचीत का सबसे कमजोर जरिया है, तब शायद ये बात समझ में नहीं आई थी। पर वक्त के साथ समझ गए हम कि सब कुछ भाषा में नहीं कहा जा सकता, सब कुछ होठों पर लाना जरूरी नहीं है। एक अदृश्य सा पुल है जो एहसास बनाते हैं, और इससे खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता।

तुम्हारे साथ मौसम सुहानी हो जाती है, तुम्हारे साथ बारिश गुनगुनाती है, तुम्हारे साथ ठंड बहुत अलग है और तुम्हारे साथ गर्मियां भी चमकीली हैं। ये बारिश तुम्हारे बिना बस बरसता हुआ पानी है। पानी और बारिश में फर्क होता है।

कहीं कोई आवाज नहीं हुई, कुछ टूटा जरूर पर बेआवाज। दिल टूटने की आवाज नहीं होती, दिल बेआवाज टूटता है। चेहरों पर नकली मुस्कान का लेबल चिपकाए जीते रहते हैं लोग, एहसास नहीं होने देते कि उनका दिल टूटा है।

समय सिकुड़ जाता है कभी और कभी फैल जाता है। विज्ञान इसे भली न माने, पर देखो ना, तुम्हारे साथ के लम्हे कितने कम हैं और तुम्हारे बिना कितना लंबा हो जाता है वक्त। वक्त का ये सिकुड़ना और फैलना बेचैन करता है हमें, पर थाम भी तो नहीं सकते हम वक्त को। ये वो मुसाफिर है जिसे बस चलते ही जाना है।

0: दुनिया की रीत है प्यार की राहों में दुनिया अड़चने खड़ी करती है, पर प्यार करने वाले तमाम रास्तों रस्मों और तरीकों से अलग अपने नए रास्ते तैयार करते हैं। प्यार की राहें बस राहें होती हैं उनके लिए, इन पथरीली राहों पर सुनहरी जिंदगी उनका इंतजार करती है।
1: ओरे माझी

0: अभी हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजे हैं। समाचारों का अनुप्रसारण थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य जहाजों को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
2: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है, ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमेरिकी सेंट्रल कमान ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया कि होर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमेरिकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जल डमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमेरिकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर भी हमला करने का दावा किया। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरा होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास

वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फूसकॉक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन हंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। देश भर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विरासत परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्य भर में 21 लाख पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की योजना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मेघालय सरकार के सहयोग से कल शिलांग में नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। भारत ने चीन के ऑर्डोस में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।